FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 जुलाई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस समय 5:57 हो रहे हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू साधुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125 ए के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन की निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हे परमपिता परमात्मा, हे सर्वेश्वर, ये शरीर नश्वर है और किसी न किसी दिन इसे उसी मिट्टी में मिल जाना है जिससे इसका निर्माण हुआ है। हे प्रभु, हम आपके भक्त आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस शरीर में निवास करें और इसके द्वारा सत्कर्मों को संपन्न कराएं।

0: संवेद स्वरों में मातृभूमि के इसी वंदन के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यही होता है संपन्न। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने जिन कलाकारों को सुना वो थे पंडित भीमसेन जोशी, चित्रा सिंह, हरिओम शरण और अनुराधा पौडवाल। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन बिंदु के अंतर्गत आज का विचार आवश्यकता और संतोष। आलेख मोहन स्वरूप भाटिया का है, वाचन कर रही हैं पुष्पा शर्मा।
1: किसी भी मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। इनमें न्यूनतम आवश्यकता होती है खाने के लिए रोटी, तन ढकने के लिए कपड़े और रहने के लिए मकान की। ये आवश्यकताएं इच्छाओं के अनुसार बढ़ती जाती हैं। इच्छाएं असीमित होने पर आवश्यकताएं भी असीमित हो जाती हैं। एक सरल और साधारण व्यक्ति रूखी रोटी और नमक, पहनने को मोटा कपड़ा और रहने को झोपड़ी से संतुष्ट हो सकता है, किंतु इसके विपरीत ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पूड़ी, कचौड़ी, कई तरह के साग, रायते, सौंठ चटनी, पापड़ और विभिन्न प्रकार की मिठाइयों से भी मन नहीं भरता। ऐसे भी लोग हैं जो तन ढकने के लिए हजारों रुपए मीटर

का कपड़ा लेते हैं और हजारों रुपए सिलाई के देते हैं और कुछ समय बाद न फटने पर भी उसे उतार देते हैं और उन पर कपड़ों के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं। यही स्थिति मकान के संबंध में है। समृद्ध लोग उठने बैठने, पढ़ने, भोजन करने, भोजन बनाने आदि के लिए कई कई मंजिले कमरे बनवाते हैं और उनमें सभी सुख सुविधा होने पर भी हेर फेर करवाते रहते हैं। असीमित इच्छाओं और असीमित आवश्यकताओं के विपरीत अत्यंत सीमित आवश्यकताओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किंचित भी चिंतित न रहने वाले एक विद्वान थे पंडित रामनाथ। उनके पास बस एक चटाई थी, दो जोड़ी कपड़े थे, कुछ पुस्तकें और लेखनी थी। उनकी पत्नी भी बड़ी धैर्यशीला थी। वह मूंज से रस्सी बनाकर बेचती और उसी से दाल रोटी का प्रबंध करती थी। एक बार किसी दूसरे राज्य के विद्वान पंडित रामनाथ के यहाँ आए और उनकी यह दयनीय स्थिति देखी तो राजा से भेंट होने पर इसकी चर्चा की और कहा कि जहाँ विद्वान और पवित्रात्मा व्यक्तियों को कष्ट मिलता हो वहाँ के राजा को इसका पाप लगता है। यह सुनकर राजा चिंतित हुआ और अगले ही दिन पंडित के यहाँ जा पहुँचा। राजा ने पंडित जी से कहा कि आपको खाने पीने या रहने सहने का कोई कष्ट तो नहीं है? पंडित जी ने उत्तर दिया कि ईश्वर कृपा से मुझे तो कोई कष्ट नहीं है और घर बार की बात तो मेरी पत्नी को पता रहती है। तभी पंडित जी की पत्नी भी वहां आ गई। राजा ने उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा कि आपको कोई कष्ट हो, किसी बात की कमी हो तो मुझे सेवा का अवसर दीजिए, यदि आपको कष्ट रहा तो उसका पाप मुझे लगेगा। पंडित जी ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी से बोले कि हमारे कारण यदि राजा पर पाप पड़ता हो तो चलो हम तुरंत यहाँ से

0: राजा ने यह सुना तो वह पंडित जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि मेरा यह आशय नहीं था, मैं तो आपकी कुछ सेवा करने का आकांक्षी था। पंडित जी ने कहा, मुझे तो किसी सेवा की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि पंडितायन को कुछ आवश्यकता हो तो इनसे पूछ लीजिए। राजा ने पंडितायन से सेवा करने की आकांक्षा व्यक्त की। उन्होंने राजा को उत्तर दिया कि महाराज, मुझे भी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर कृपा से सभी कुछ सुलभ है। सूर्य से हमें प्रकाश मिल रहा है, नदी कुओं और झरनों से जल मिल रहा है, वायु से जीवन में चेतना मिल रही है। परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा से हमें किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। घर में अभी एक समय के लिए अन्न शेष है, एक दो दिन के लिए लकड़ी भी है, मिर्च मसाले भी हैं। जीव जंतुओं और पक्षियों को तो अगले क्षण तक के भोजन का भी पता नहीं होता और वह भी जीवित रहते हैं, इसलिए हम ही क्यों चिंता करें। राजा यह सुनकर दोनों के प्रति नतमस्तक हो वहां से लौट लिए। अतः स्पष्ट है, आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेने मात्र से सभी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। यदि मन में संतोष हो तो सब कुछ सामान्य दिखाई देगा।
1: चिंतन बिंदु के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आज का विचार, आवश्यकता और संतोष। आलेख मोहन स्वरूप भाटिया का था, वाचन कर रही थी पुष्पा शर्मा। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

प्रभु की लीला और माया का अद्भुत दृश्य उपस्थित है अयोध्या में, जो सर्वत्र व्याप्त निरंजन अर्थात माया रहित निर्गुण और अजन्मा ब्रह्म है। वह भक्ति और प्रेम के वश होकर माता कौशल्या की गोद में नन्हा शिशु बनकर खेल रहा है। नील कमल और जल से भरे मेघ के समान इस बालक के शरीर में करोड़ों कामदेवों का अनुपम मनोहारी रूप है। चरण के तलवों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह अंकित हैं। नन्हे नन्हे पांव से पैंजनी की ध्वनि मुखरित होती है तो मुनियों का मन विमोहित हो जाता है। लाल कोमल होंठों से उच्चरित मधुर तोतले शब्द बहुत प्यारे लगते हैं। चिकने घुंघराले बालों को माता ने कई प्रकार से बनाया संवारा है। ऐसी ही मनोहारी छवि है पीली झंगली में लिपटे शरीर के हाथों और घुटनों के बल चलने की। बाल लीला देखने और उसके सुख का भागी होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो रहा है जिन्होंने प्रभु के चरणों में प्रीति जोड़ी है। भगवान शंकर पार्वती को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं, इस प्रकार जगत के माता पिता अवधपुर के निवासियों को सुख दे रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान से आज का संगीतबद्ध प्रसंग। स्वर रंजना जोगलेकर का था, संगीतकार थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती। रात्रि 10 बजे का समय रहेगा संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का। संध्या 5:10 पर होगा कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

प्रातः 6:50 पर होंगी खेती की बातें, विषय होगा यूरिया ब्रिक फीडिंग का पशु प्रजनन में महत्व। प्रातः 7:00 आनंद लेंगे भूले बिसरे गीतों का। 7:31 पर ब्रज माधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा हास्य रूपक बूढ़े को ब्याह, साथ ही आनंद लेंगे लोकगीतों का। प्रातः 8:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। विकास पथ के अंतर्गत सुनिएगा भेंट वार्ता, नगर निगम द्वारा संचालित वृक्षारोपण एवं वेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम के विषय में। राकेश कुमार त्यागी सहायक नगर आयुक्त मथुरा से भेंट करेंगे ओपी सिंह, समय रहेगा प्रातः 9:00। प्रातः 9:30 का समय होगा कार्यक्रम ब्रज दर्पण का। हम और हमारी अरण्य संस्कृति, ये रूपक आप सुन सकेंगे प्रातः 10:00। प्रातः 10:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस होगा 12:00। ब्रज बिहारी अनंत के गाए हुए ब्रज लोकगीत आप सुन सकेंगे 12:30 से। बहनों का कार्यक्रम घर अंगना होगा 1:15 से। कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा फलदार और औषधीय वृक्ष लगाकर बनाए आत्म

निर्भर परिवार और विश्व सहकारिता दिवस। साथ ही सुनिएगा वार्ता दैनिक आहार में फल और सब्जियों की उपयोगिता। वार्ताकार होंगी अंजना आचार्य। साथ ही आनंद लेंगे ब्रज लोकगीतों का और जानेंगे कुछ घरेलू टिप्स। दोपहर 2:30 पर होगा सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत। 3 बजे होगा हमारी प्रथम सभा का समापन। संध्या 5:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। आज की बात होगी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और वृक्ष लगाएं पर्यावरण बचाएं, साथ ही गुलजारीलाल नंदा की जयंती के विषय में। संध्या 6:15 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा पशुपालन के लिए चारा देने वाले वृक्षों का महत्व और बरसात में पशु प्रबंध। साथ ही सुनेगा वार्ता पशुओं के परजीवी रोग, जानकारी देंगे डॉक्टर दयाशंकर। कार्यक्रम के अंतर्गत होगी भेंट वार्ता पशुपालन और टीकाकरण। वार्ताकार होंगे डॉक्टर नरेंद्र नारायण शुक्ल। इनसे भेंट करेंगे दीपक कुमार गोस्वामी। भक्तिपरक गैर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन हम आपके लिए लेकर आएंगे संध्या 6:45 से। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा में आज आप सुनेंगे भस्मासुर चरित्र। कथाकार होंगे देवी चरण शर्मा। समय रहेगा संध्या 7:05। श्रोताओं के संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी होगा संध्या 7:31 से। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 8:30 से। रात्रि 11:10 पर होगा हमारी दूसरी सभा का समापन। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। यूरिया ब्रिक फीडिंग का पशु प्रजनन में महत्व, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं विजय सिंह नौलखा।
1: किसान भाइयों, आज हम यूरिया ब्रिक फीडिंग का पशु प्रजनन में महत्व विषय पर चर्चा करेंगे। भारत में पशुपालन के कार्य में ग्रामीण क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा लघु कृषक, सीमांत कृषक या भूमिहीन मजदूरों द्वारा पशुपालन कर पूर्ण किया जाता है। इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के कारण इनके द्वारा पाले गए पशु भी कुपोषण का शिकार होते हैं। पशुओं को संतुलित आहार उपलब्ध न होने के कारण इनका शारीरिक विकास मंद रहता है, इनकी प्रजनन क्षमता अधूरी रहती है, पशु देर से प्रजनन योग्य होता है, गर्मी के लक्षण भी प्रदर्शित नहीं होते, गर्भाधान के उपरांत पशु गर्भित नहीं होते हैं तथा ब्याने के बाद कम दूध उत्पादन होता है, काफी समय तक गर्मी में नहीं आते और विभिन्न प्रजनन व्याधियों का शिकार हो जाते हैं। अब जानते हैं कि ये यूरिया मोलेसिस मल्टी न्यूट्रिएंट ब्लॉक यानी UMMB आखिर है क्या। यह यूरिया फीडिंग का एक बहुत ही सुरक्षित तरीका है। इसके साथ ही इसमें भोजन के लिए अन्य आवश्यक तत्वों का मिश्रण भी इसे और उपयोगी बनाता है। यूरिया पशुओं के पेट में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा प्रोटीन में परिवर्तित हो जाती है, साथ ही इसमें मिनरल आदि भी पशु को सीधे ही प्राप्त हो जाते हैं। इसकी फीडिंग से पशु स्वस्थ रहता है, दुग्ध उत्पादन व प्रजनन क्षमता में वृद्धि होती है। जो पशुपालक कम संख्या में पशु पालते हैं तथा पशुओं में पोषण तत्वों की कमी होने पर UMMB यानी यूरिया मोलेसिस मल्टी न्यूट्रिएंट ब्लॉक फीडिंग काफी लाभदायक तथा आर्थिक रूप से उपयोगी सिद्ध हुई है। यूरिया ब्रिक को पशु के बांधने के स्थान पर रख देते हैं तथा पशु को उसे चाटने देते हैं। इसकी फीडिंग से अनेक लाभ हैं। बछिया व पड़िया इसके प्रयोग से कम समय में प्रजनन योग्य हो जाती हैं। गर्भित अवस्था में प्रसव के उपरांत इनके प्रयोग से दुग्ध उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है तथा पशु शीघ्र गर्मी में आता है। पशुओं को गर्मी में लाने में विशेष उपयोगी है। गर्मी में लाने के अन्य उपचारों के असर को भी यह बढ़ाता है। सामान्य उससे कम दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं की खली की आवश्यकता को भी काफी हद तक कम कर देता है तथा पशु प्रजनन संबंधी अन्य व्याधियों से भी पशु को मुक्त रखता है। अब बात आती है कि इसे

0: बनाने की क्या विधि है। इसको बनाने की विधि अत्यंत सरल है। किसी बड़े उपकरण अथवा संयंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। पशुपालक एकल रूप से या समूह में सम्मिलित होकर इसको बना सकते हैं। ग्रामीण बेरोजगार इसे रोजगार के तौर पर अपना सकते हैं। UMMB यानी यूरिया मोलेसिस मल्टी न्यूट्रिएंट ब्लॉक की एक ब्रिक का आकार सामान्यतः एक ईंट के आकार का बनाया जाता है। इसके लिए ईंट बनाने के ढांचे में थोड़ा फेरबदल कर उपयोग में लाया जा सकता है। इसका औसत वजन 3 किलोग्राम होता है। इसके लिए विभिन्न सामग्रियों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। इसके निर्माण में जिन सामग्रियों को मिलाया जाता है वो इस प्रकार से है। मिनरल मिक्सचर लगभग 450 ग्राम, शीरा 900 ग्राम, नमक 200 ग्राम, यूरिया 300 ग्राम, सरसों या मूंगफली की खली 300 ग्राम, चावल की भूसी 300 ग्राम, आटा आप गेहूं का, मक्का का या बाजरे का कोई एक आटा ले सकते हैं 450 ग्राम, चूना 125 ग्राम। स्थानीय उपलब्धता के आधार पर खली व अनाज को बदला जा सकता है। आवश्यकता के अनुरूप अन्य तत्वों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। चूने को छोड़कर अन्य सामग्री को पीसने के उपरांत मिला लेते हैं, फिर इस सामग्री में चूना मिलाते हैं तथा वजन करते हैं। इसके बाद सांचे में सामग्री को भरते हैं, दबाते हैं तथा 2 दिन छाया में सुखाते हैं। इसके बाद पॉलिथीन में लपेटकर भंडारित करते हैं। यह कभी खराब नहीं होता है। इसे नमी से दूर भंडारित किया जाना चाहिए। यद्यपि यूरिया फीडिंग एक सुरक्षित विधि है, फिर भी कुछ सावधानियां इसमें आवश्यक है। 6 माह से कम आयु के बच्चों को यह नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके पाचन तंत्र का विकास इसके लिए उपयुक्त नहीं होता।
1: खेती की बातों के अंतर्गत अभी आप ले रहे थे जानकारी यूरिया ब्रिक फीडिंग का पशु प्रजनन में महत्व, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे विजय सिंह नौलखा। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: गीता दत्त के स्वर में अभी आपने सुना ये गीत, फिल्म थी साहिब बीवी और गुलाम। शब्द शकील बदायूनी के थे, संगीत दिया था हेमंत कुमार ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के हैं। फिल्म का नाम है सच्चा झूठा।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

सबक फिल्म से अभी आपने सुना ये गीत मुकेश के स्वर में। शब्द सावन के थे, संगीत दिया था उषा खन्ना ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है सफर। स्वर मुकेश का है, शब्द रचना इंदीवर की है, संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। आपात स्थितियों में उपचार सुनिश्चित करने को स्थापित होगा प्रदेश व्यापी एकीकृत ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकादमी के नवीन परिसर का किया लोकार्पण, कहा जनहितकारी नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करना प्रशासन का काम। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसवाले ने कहा दोषियों को मिलना चाहिए कठोर दंड। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श पशु चिकित्सालय की स्थापना करेगी सरकार, सघन उपचार के लिए पशुओं को भर्ती करने की भी होगी सुविधा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और विभिन्न विशेषज्ञों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर उत्तर प्रदेश राज्य कैंसर टास्क फोर्स तथा उत्तर प्रदेश ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क UPTEN द्वारा प्रस्तुत कार्य योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में प्रत्येक जिले तक कैंसर उपचार सुविधाएं विकसित करने तथा सड़क दुर्घटनाओं व अन्य आपात स्थितियों में गोल्डन आवर के भीतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशव्यापी एकीकृत ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क स्थापित करने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
3: उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से कैंसर उपचार सुविधाओं का विकास किया जाए तथा प्रत्येक मंडल में आधुनिक कैंसर केंद्र स्थापित किए जाए। मरीजों की स्क्रीनिंग से लेकर उपचार और फॉलोअप तक की पूरी व्यवस्था डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ी जाए। बैठक में बताया गया कि ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क के अंतर्गत एकीकृत चिकित्सा इकाइयों का विकास किया जाएगा। इसके माध्यम से प्रदेश की लगभग 95% आबादी को 60 मिनट के भीतर विशेषज्ञ आपात चिकित्सा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। समाचार कक्ष से रितेश।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 464 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंधन अकादमी की नवीन परिसर का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन में नवाचार और उत्कृष्टता का भाव होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर जनहित

0: सारी नीतियां बनाई गई हैं, उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना प्रशासन का काम है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रहित की भावना से काम करेगा तो विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत की आधारशिला जरूर बनेगा।
1: संवेदनशील प्रशासन को प्रोत्साहित करना होगा। विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत की आधारशिला बने, ये जज्बा हम सब के लिए हमारे मन में हो कि पंच संकल्प जब हम लेकर के चलेंगे परिणाम आएंगे। याद रखना, विकसित भारत की आधारशिला यूपी तब बनेगा जब यूपी का हर गांव, यूपी का हर कस्बा, हर वार्ड आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित बनेगा। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 3 दिवसीय आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के मैंगो टूरिज्म को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए आम की सभी किस्मों की जीआई टैगिंग कराई जाएगी। महोत्सव में 50 ग्राम के अंगूर दाना आम और 5 किलो तक के वजन वाले गजानन आम आकर्षण का केंद्र रहे। प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए सोलर आवर्स में 20% टैरिफ छूट की व्यवस्था लागू की गई है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा है कि इससे स्वच्छ और हरित ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। टैरिफ में यह छूट सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मिलेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी की दूसरे दिन की परीक्षा कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। 3 दिवसीय परीक्षा को पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा के दौरान शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की एआई कैमरों से निगरानी सुनिश्चित की गई है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि यूपीटीईटी परीक्षा के अंतिम दिन आज एक पाली में परीक्षा आयोजित होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में हुई अनियमितता की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड मिले, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि न्यास से उम्मीद है कि वह व्यवस्था और संचालन की सभी कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।
2: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए, ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे।
0: वहीं इस मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला को पुलिस ने कल रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पूछताछ के आधार पर पुलिस उसे लेकर कौशलपुरी कॉलोनी स्थित योग आश्रम गई, जहां वह कुछ समय के लिए अपने भाई के साथ रहता था। पुलिस की टीम ने आश्रम की तलाशी ली। भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना नहीं बंद करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
3: India's position on the Indus Waters Treaty.
4: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान की लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: श्री अमरनाथ जी यात्रा कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में श्रेष्ठ कार्य करने वाले बैंकों, बैंक कर्मियों और बैंक मित्रों को कल लखनऊ में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक प्रवेश कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 1,47,00,000 लोग अटल पेंशन योजना से जुड़ चुके हैं। उन्होंने बैंकों से इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रसार प्रसार कर इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया है कि राज्य सरकार प्रत्येक

0: विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श पशु चिकित्सालय की स्थापना करने जा रही है। इन चिकित्सालयों में पशु को सघन उपचार के लिए भर्ती भी किया जा सकेगा। बनने वाले प्रत्येक आदर्श पशु चिकित्सालय में 2 पशु चिकित्सा अधिकारी और पर्याप्त संख्या में अन्य स्टाफ की तैनाती की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। राज्य के कई जनपदों में कल भारी बारिश से मध्यम वर्षा दर्ज की गई, जबकि कुछ जिलों में उमस भरी गर्मी का दौर बना रहा। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और कहीं कहीं बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी हो सकती है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आपात स्थितियों में उपचार सुनिश्चित करने को स्थापित होगा प्रदेशव्यापी एकीकृत ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकादमी की नवीन परिसर का किया लोकार्पण, कहा जनहितकारी नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करना प्रशासन का काम। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा दोषियों को मिलना चाहिए कठोर दंड। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श पशु चिकित्सालय की स्थापना करेगी सरकार, सघन उपचार के लिए पशुओं को भर्ती करने की भी होगी सुविधा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ, यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुनवे बारे हमारे सभी श्रोता साथियों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भैया, या समय या ब्रज मंडल

में दर्शन झांकी को बड़ो सुंदर महत्व चल रो है, क्योंकि ये धरा धाम तो है ही हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल और इनकी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी को। यों तो वर्ष भर यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मनोरथ हुआ करे हैं, लेकिन यह समय क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडो है गो है, तो श्रद्धालु को दर्शन करवे में बड़ो आनंद आ रो है। ठाकुर जी को विभिन्न प्रकार के जलाभिषेक, जल यात्रा, नौका विहार, इनके मनोहारी दर्शन श्रद्धालु को प्राप्त है रहे हैं और वे अपने आप अनुग्रहित महसूस कर रहे हैं। और अब भैया आज के कार्यक्रम को आरंभ करें हैं सर्वप्रथम अपनी प्यारी दुलारी श्री राधा रानी जी के या लोकगीत सो जाए स्वर दियो है डोरी लाल।

करवे में बड़ो आनंद आए रहो है। ठाकुर जी को विभिन्न प्रकार के जलाभिषेक, जल यात्रा, नौका विहार, इनके मनोहारी दर्शन श्रद्धालु उनको प्राप्त है रहे हैं और वे अपने आप है अनुग्रहित महसूस कर रहे हैं। और अब भैया आज के कार्यक्रम को आरंभ करें हैं सर्वप्रथम अपनी प्यारी दुलारी श्री राधा रानी जी के या लोकगीत सॉन्ग जय स्वर दियो है डोरी लाल गोला ने।

करुणामयी कृपामयी राधे। डोरीलाल गुला के सुर में अब भैया आपने सुना यह लोकगीत, और आओ भैया अब आनंद लें या हास्य रूपक को, जाको आलेख है श्याम सुंदर शर्मा सुमन को और प्रस्तुति है टी एन शर्मा की, और नाम है जाको बूढ़े को ब्याह।

0: संतिया, तू ये बुढ़ापा वो इंसान है, कछु मतलब को ना रहन दे, न कछु सुनाई दे, न कछु दिखाई दे। चश्मा, अरे चश्मा ना पारो, अरे बिटिया संतिया।
1: फारे डाल रहे हो?
0: तो मेरा हेला दे बहु तो अब गरा फार वो लगे। अरे बिटिया, मेरा चश्मा, मेरा चश्मा कितकू पड़वाने के देख दीजिए बेटी। अरे हम बस सात माता कर भाई लग रहे
1: टर्रेटर, कहूं चश्मा ना पावे तो कहूं हुक्का का चुगन, कहूं लौटी ना आए जिसे तो कहूं तिहारी सामे बच्चिया तिहारी धोबती चबाए डाले।
0: जी उम्र ये सी हो है बिटिया, जब तू मेरी उम्र निकी होगी तो सब सल पड़ जाएगी बिट्टो।
1: भगवान ना करे कि मैं तिहारी उम्र को होना पड़े, मो भी अब ना होए तो यारी ठहरता हूं।
0: तुम लोगन को कमाए कमाए के खबामत रहे हो। तेरे बापे भैया के ठिया पे बेटा मान तो रहो, हाथी पे बैठार के तेरे बाप को बरात सजाई हती मैंने बिटिया। तो सूले गामन की जोन आर करी हती मैंने। आज वो ना भैया रहो और ना वो बहू, सिंह संग छोड़ के चलो से, अब तू घर बार की है गई।
1: तो काल काल मेरे लिए बहू आ जाएंगे। ताने देने के तो तुमने मेरे कान पर आए दीने ताऊ। एक दिना तो मन ने मेरे बाप की बारात हाथी पर सजाई हती, तो आज तुम अपनी बारात हाथी पे ना आए तो ऊंट पे ही सजाए लो।
0: कह तो तू साच रही है, पर जा उम्र में मोते ब्याह को कर सकत है।

0: पातरिया के नगर पार माऊ एक
1: हाँ,
0: गांव है
1: अच्छा,
0: जाको नाम झिंगुर की नगरिया है।
1: झिंगुर की नगरिया
0: हाँ,
1: हाँ,
0: वहाँ की भुल्लो बुआ अब तोली कुआरी है तब।
1: अच्छा,
0: बाकी उम्र तो 50 से ज्यादा ना है, चल चलत है तो कमरिया 100-100 वाल खावे बताओ वहाँ की।
1: तो बुन्नो बुआ, अरे राम राम राम राम, नौ बातें बुआ कह गया बा, ब्याह को नाम सुन के सास की जीभ लपट गई। आ तो का वो मोते ब्याह रहता लेगी।
0: तुम ते रसीला बुढ़ाऊ वाकु मिलेगा कितकु, झुर्रीन ते भरे भरे रूप बारे चौक टाकू निहार के वो वाली वाली है जाएगी ताओ। गड्ढियन में धसी भाई अखियन की झीलन के पानी में जब वो अपने रूप को स्नान करवावेगी तो धन्य है जाएगी ताओ।
1: इतना सुंदर लगत हूँ काम है, तब तो बेग ब्याह की चर्चा चल भी चलनी चाहिए। रही घोड़ा की बात तो बरा चढ़ावे को सो धनसु नंबरदार को घोड़ा दुआ देना के लिए मांग लंगो। तो का भयो बिटिया, घोड़ा के लंगड़े भय थे का होते बुल्लो बुआ, अरे राम राम राम राम, फिर जीव रपट गई। फिर बा बुआ कह गयो बुल्लो के घर तोरी तो पहुंचा ही देगा वो लंगड़ो घोड़ा। जे कासियु दमन आलन देत निकरवा लंगो मुहूर्त बा काले पंडित से
0: कतो नावत बजन देवताऊ।

0: மங்களாஷ்டகம் இதம் கங்கா சாகர சங்கம फेरन को समय भी तो जाय रहो है तुरंत ही कन्या को मंडप में ले आऊ नगदा नमः।
1: मैं अपराणी मंडप में आ गई हूँ महाराज।
0: तुम्हारी अवई जरूरत ना है दादी मैया, कन्यादान के समय तिहाई जरूरत होएगी, अवई तो कन्या को बेग भेज दो चो के फेरन को समय भी तो जाय रहो हूँ।
1: मोड़ा सहा के बोला पंडित जी, मैं दादी मैया कहे तो, अरे मैं ही तो कन्या हूँ जाको ब्याह है वे वारा है।
0: तो ब्याहते पहले कन्या को मोड़ो फकीर के निया, या तरिया निर्लज्जता तीना घूमनो चाहिए, बर के बगल में बैठ जाओ। अरे कन्या के ताई कन्या के बाप को बुलवा लो, जो आई करके कन्यादान कर सके। ओम
1: मेरे बाप की उम्र तो जे मेरी बगल में बराई बैठो है ना, हो तो जाई तो कन्यादान करवा दो।
0: राम राम राम, कैसी अशुभ बात मोड़े तीन निकास दी तुमने, रे तुम तो कन्या हो और बगल में बैठवे वारो त्योहारो बर है, तुम या की बदू हो। अरे काउ और व्यक्ति को बुलवाई करके नैया कन्यादान को जो है समय बीत रहो, जल्दी करो मुहूर्त निक सोन जाय रहो। कन्यादानम महादानम सर्वदाने सुदुर्लभम ओम नगदाय नमः।
1: तो पंडित जी मेरा कन्यादान तुम ही ले लो।
0: मैं त्यारो कन्यादान कैसे ले सकतू, अरे तुम तो मेरी मैया के दाखिल हो। राम राम राम राम, तुम तो

0: मैया के समान
1: मेरा कन्यादान ना ले सको तो मेरा मैया दान ही ले लो। जल्दी करो पंडित जी, नहीं तो मुहूर्त भी तो जा रहे हो।
0: तो तुम दोनों बरवधू मिलकर के नैया अग्नि के चारों तरफ फेरा लगाए दाओ। ओम यानी यानी च पापानी क्रियन्ते जन्म जन्मना तान दान विनश्यन्ति प्रदिक्षण एम पदिम पदे। और या प्रकार से जो है काय फिर जाओ, बर को जो है चश्मा गिर गयो है, बुल्लड़ खड़ा है रहे हो है, याते पहले वाकी आखन पे चश्मा चढ़ाए दियो। ओम नगदायन अरे लगे है दोनों रचो नाम तुए है। अरे भैया तेरे जो है फेरा मेरे चारों लंग चौन लगाए रे हो। अरे अग्नि के चारों लंग पर कम्मा कर जाओ। यानी यानी ज पापानी क्रियन्ते जन्म जन्म ना तान तान विनश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे वदे। ओम नगरान नमः।
1: याव अच्छी तरह पढ़वाइयो पंडित जी, मैं अपनी मैया की इकलौती बेटी हूँ, जो कहूँ बर के संग मेरे गन न मिले तो याद रखियो तुम्हारा पिंड ना छोड़ूंगी हम मैं तो कहिया।
0: मेरी दक्षिणा मत मुरे यो बिटिया ना ना ना वो मैयो। अरे बिटिया मैयो विदा है वीते पहले पूरे 7 रुपया और 62 पैसा गिनवाए लंगू।
1: 62 पैसा की जगह 65 पैसा दूंगी, पर मेरा ब्याह अच्छी तनिया पढ़वाइयो। अरे अग्नि कुंड में अग्नि तो जरा ही ना है, तो हम चकवा चकवीन तो चक्कर काय को लगाए रही हो पंडित जी?
0: अग्नि अरे अरे अग्नि बात तो जी है कि अग्नि तो जल्दी जल्दी में मिली ना है। जा मारे मैंने अग्नि की ठिया पे अपनी टॉर्च जराए दई है, या की रोशनी अग्नि त्यू ज्यादा तेज है। सो जा मारे जी मैंने अंग्रेजी अग्नि जराए दई है।
1: फिकर मत करो पंडित जी, मैं तुमको अंग्रेजी दक्षिणा दूंगी।
0: चो नहीं तो भी ठीक कह रही है।

0: आया पसंद है मेरे मन मंदिर का घूरा तो है बुल्लो।
1: बहुत मन भावन है तुम्हारे मन मंदिर को मैं है खूंटी पर टंगे हुए जो अंगर खा पर झालर कौन न काढ़ी है
0: संतिया ने काढ़ी है कहा करू बाकी लुभैया आगे और बा लुभा लेगी ना तो तेरी परिया पे ऐसी झालर करवा देता कि देखत रह जाती।
1: जोर है देखो बोलो तुम्हें तो खांसी बेग बेग आ जाए तुम्हारी सी खांसी मेरे मैकू क्यों है रही है
0: मैकू
1: जब वो खांसे तो तुम्हारी तनिया बा को मोड़ो पिचके ही ना है पिचकवे के ठिया पे वो उल्टा सेब का सलाल है जाए कैसा निको लगे मुए मेरा मैकू कितना प्यारो है।
0: अरे मैंने तो बुढ़ापे में ब्याह करके वैसे ही अपनी माटी किरकिरी कराई
1: तो मैंने बुढ़ापे में अपना कारपन उतरवा के कौन सा ध्रुव तारा तोड़ के अपने बारन में लगा लियो
0: को है जो मैकू कौन लगे वो तेरो
1: तुम इतने भेमियो जो मोह सलना हाथी जो पूछो कि मैकू मेरा कौन ना लगे वो तो मेरा सब कछु लगे हम तो
0: कही मुझे ना चलाती कि तू ऐसी निकलेगी साफ साफ कह कि तेरा कहाँ लगे वो कहाँ संबंध है तेरा
1: बातें तो मेरा खून का रिश्ता है मेरे ब्याह पे आए वे की कह गयो पर भज मारो जब को गयो है अब तोली बगदा ही ना है कन्हैया की तरह चलिया निकलो हम तो कही है।

0: مولا عبي ما صادت انا وانت بيعن عكر امه
1: تتن ساعد جران توني بيعن عكر وجه और मैं बुढ़ापे में आप कब ब्याह ना करूंगी और न का हुआ ब्याह करवे की सलाह दूंगी।
0: कहा कही बुढ़ापे में अब तक स्वयं भी ब्याह ना करेगी तो का भगवान अब तक कछु और सलाह थी का
1: सलाह सलाह सलाह काहे की है बुढ़ापे में तिहारी बुद्धि तो सठियाई रही दिशे
0: तो बता चौना जे कि कहा लगे बोते हो
1: तो सुनो भूल लगे मेरा
0: हाँ देख बता कहा लगे बोते रात कहा लगे तो मेरे
1: अरे

तो भैया भाई आपने सुनी ये बूढ़े को ब्याह हास्य रूपक, या को आलेख है तो श्याम सुंदर शर्मा सुमन का, प्रस्तुति रही टी एन शर्मा की। और आ भैया अब आनंद लें शालिनी शर्मा के स्वर में या लोकगीत को।

तो भैया शालिनी शर्मा के सुर में अभी सुनो आपने ये लोकगीत, और याई के संग आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम यही हुए है संपन्न। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी, ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, तत्पश्चात मॉर्निंग न्यूज होगी। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में मियामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां

0: एमएस आनंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक सीजी सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
2: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन

0: मतगणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के दो दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों के ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की, तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन, टैंक, मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट बीएमएस जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर

0: और पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने तीन तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला तीन तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ न करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है। अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लॉन्च सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान एंड गुजरात टुडे टू इनॉग्रेट कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन बालोतरा। Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Center reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across country due to El Nino. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals. And men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today to inaugurate and lay the foundation stone of several development projects. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project, worth 480 crore rupees, is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. These projects span multiple sectors, including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. Prime Minister Modi will also lay the foundation stone for Phase 2 of the Jaipur Metro Rail project, which has a total cost of over 13,000 crore rupees. More from our correspondent.
3: The refinery and petrochemical complex is expected to open new avenues for investment, employment and industrial growth in the state's western districts. The Rajasthan refinery project will also boost sectors such as MSMEs, packaging, textiles, auto components and agri-films, providing a fresh boost to the state's economy. Built on Rajasthan's challenging desert terrain, the project is a remarkable feat of engineering. The second phase of Jaipur Metro Rail project will develop the north South Corridor, significantly enhancing the city's multimodal connectivity. The corridor will integrate metro services with the airport, railway station and bus terminal, providing seamless and more convenient public transport for citizens. Jitendra

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म पाकीज़ा में। शब्द रचना कमाल अमरोही की थी, संगीत दिया था गुलाम मोहम्मद ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म कारवां से। स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के हैं, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है, संगीत दिया है आर.टी. बर्मन ने।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दी,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म चुपके चुपके में। शब्द आनंद बख्शी के थे, संगीत दिया था एस डी बर्मन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार के। स्वर मुकेश और लता मंगेशकर के हैं। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है। संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में अभी सुना आपने आसपास फिल्म का ये गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि यहीं होता है संपन्न। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: लीजिए प्रस्तुत है विकास पद के अंतर्गत भेंट वार्ता। नगर निगम द्वारा संचालित वृक्षारोपण एवं वेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम। राकेश कुमार त्यागी सहायक नगर आयुक्त मथुरा से भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह।
5: श्रोताओं, वृक्ष का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वृक्ष जो पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं, पर्यावरण संरक्षण में मदद करते हैं, या कहें कि मानवीय जीवन को अच्छा बनाने में वृक्ष एक मित्र की तरह है। जब भी जुलाई का महीना आता है या बारिश का महीना आता है तो हम वृक्षारोपण को एक महोत्सव के रूप में लेते हैं और अब तो एक परंपरा सी हो गई है कि 1 से 7 जुलाई के बीच में हम वन महोत्सव पूरे प्रदेश में मनाते हैं। तो अब ये समय चल रहा है। नगर निगम इस संदर्भ में कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जो वृक्षारोपण को लेकर के अपनी गतिविधियाँ संचालित कर रहा है? मथुरा वृंदावन की मैं बात कर रहा हूँ। इस संदर्भ में आज हमारे साथ हैं श्री राकेश कुमार त्यागी साहब, आप सहायक नगर आयुक्त हैं मथुरा वृंदावन नगर निगम में। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार।
6: नमस्कार आपको और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार
5: जी। तो ये जो वृक्षारोपण का एक पुण्य कार्य है, पवित्र कार्य है, बल्कि महत्वपूर्ण कार्य है, इसमें नगर निगम इसको किस तरह संचालित कर रहा है अपने एरिया में? कोई जो कार्यक्रम हो रहे हों, चल रहे हों, किस तरह से आगे की योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए।
6: बिल्कुल, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि ये वन महोत्सव का ये 1 जुलाई से 7 जुलाई का समय चल रहा है और शासन के निर्देशों के क्रम में सभी विभाग इसमें वृक्षारोपण में सक्रिय हैं, लगे हुए हैं। नगर निगम मथुरा वृंदावन के द्वारा भी अपनी तैयारी की गई है। इसमें हमारे द्वारा मथुरा और वृंदावन में जो हमारी कुछ भूमि चिन्हांकित की गई है जहाँ पे हम लोग वृक्षारोपण का कार्य करेंगे। और इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ये यमुना किनारे यहाँ मथुरा में और वृंदावन में काफ़ी बड़ी संख्या में हम लोगों ने स्वयंसेवी संस्थाओं को लेकर के और पिछले कुछ सालों में भी लगातार हमने वृक्षारोपण किया है। तो हम लोग देखेंगे जयसिंहपुरा के पीछे वाला एरिया है, आप जानते हैं वहाँ काफी बड़ी संख्या में लगभग 20,000 पेड़ पिछले 5-7 सालों में लगे हैं। इसके अलावा फिर हम घाटों की तरफ आते हैं, ध्रुव घाट वगैरह की तरफ है, वहाँ भी काफी संख्या में पेड़ लगे हैं। इसी तरह से वृंदावन में लगे, यमुना के किनारे किनारे काफी पेड़ लगाए गए हैं।
5: कुछ ऐसी चीजें चिन्हित की हो जो नगर निगम का एरिया पिछले 5-6 सालों में जब नगर निगम बनाया तो उसका विस्तार दिया था, करीब 50-55 गांव जो है उनको शहर में हम लेकर के आए। तो वहाँ बहुत सारी जमीन सरकारी पड़ी हुई है, बहुत सारे एरिया पहले से ऐसे जहाँ घने पेड़ पौधे हैं, तो कुछ ऐसा किया होगा कि भाई कुछ बन नहीं तो उपबनी हम बनाने लगा लें कुछ ऐसी चीजों को?
6: बिल्कुल, जैसे मैं बताऊं कि जहाँ भी हमारा प्रतिवर्ष का जो लक्ष्य रहता है वृक्षारोपण का, वो हम लोग जो खाली जमीन होती है, सरकारी जमीन है हमारी, बंजर है, ऊसर है या वृक्षारोपण की भूमि है, उस पर हम लोग वृक्षारोपण करते हैं। इसमें कुछ विशेष योजनाएं हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 उपवन नगर निगम बना रही है। एक तो गोवर्धन रोड पे है।

0: उधम चौराहे से लगभग 3-4 किलोमीटर आगे एक भूमि है,
1: जी
0: लगभग 1 हेक्टेयर के
1: सतुआ गांव के
0: आसपास।
1: आसपास,
0: जी जी
1: जी
0: जी
1: जी
0: सतुआ के
1: सतुआ करके,
0: आसपास।
1: जी
0: और एक भूमि है, ये राया रोड की तरफ जाते हैं, ईसापुर पड़ता
1: जी
0: है, वहाँ भी
1: ईसापुर
0: लगभग
1: गांव है।
0: सवा
1: जी
0: हेक्टेयर भूमि उपवन के लिए। तो वो उपवन अच्छी तरह से सौंदर्यकरण के साथ और अच्छे प्रकार के पौधे लगा करके, जिससे लोगों के सुबह शाम घूमने के लिए और मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत अच्छा बन सके, ऐसा हम लोग बना रहे हैं। वहाँ पे गोवर्धन रोड वाला लगभग हमारा तैयार होने वाला है और ईसापुर वाले पे भी हमारा काम चल रहा
1: मतलब
0: है,
1: खाली जो जमीन पड़ी है उसका सदुपयोग भी हो जाए, और
0: सदुपयोग हो
1: ऐसा
0: रहा है।
1: सदुपयोग हो जाए कि उस एरिया के रहने वाले बासिंदों को सुविधाएं मिल जाए, सुबह शाम के टहलने की व्यवस्थाएं हो
0: जी
1: जाए।
0: जी
1: इसमें अब जैसे मथुरा वृंदावन का जो क्षेत्र है, यहाँ खारी पानी है, तो इसमें कुछ ऐसी प्राथमिकता आप रख रहे हैं कि जो ब्रज से जुड़े हुए पौराणिक पौधे हैं, जो यहाँ की मिट्टी पानी में जलवायु में सर्वाइव कर जाए आसानी से, जैसे कदम है, तमाल है, तो
0: बिल्कुल
1: इन चीज़ों को शासन प्राथमिकता दे रहा है उसमें।
0: बिल्कुल, जैसे कि उपवन वाली जो योजना है, इसमें जो इस प्रकार के पौधे रखे गए हैं, जैसे कदम है, तमाल है, जैसे आपने बताया,
1: जी
0: जो यहाँ के स्थानीय रूप से हैं, और यमुना किनारे, क्योंकि वहाँ पे पानी सही रहता है, काफ़ी मात्रा में रहता है, तो वहाँ पे सभी प्रकार के पौधे हैं, खासकर जैसे बरगद के हैं,
1: जी
0: पीपल
1: जी
0: के हैं, जामुन के हैं, अर्जुन के हैं, इसी तरह के वहाँ पे पौधे लगाए गए हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि नगर निगम की तरफ से मियावाकी वन भी जो है लगाया जा रहा है।
1: जी जी
0: मियावाकी जो एक जापानी टेक्निक थी, एक जापानी वैज्ञानिक थे मियावाकी, उन्होंने ही एक खाली जमीन पे शीघ्रता से वन उगाने की एक तकनीक का आविष्कार किया था। उसी प्रक्रिया पे शासन के निर्देशों के क्रम में हम लोग भी यहाँ पे लगा रहे हैं। यहाँ बाद गांव में मियावाकी के लिए हमने जमीन चिन्हांकित की है और अब वहाँ पे काम शुरू हो रहा
1: तो
0: है
1: वहाँ
0: हमारा।
1: मियावाकी में क्या कुछ लेयर्ड पौधे रहते हैं,
0: जी,
1: छोटे बड़े बीच के?
0: उसमें
1: जी
0: जैसे वन होता है तो
1: हाँ
0: वन में आप देखेंगे कि वहाँ घास भी है, छोटे पौधे हैं, फिर उससे बड़े हैं और फिर विशाल का पेड़
1: जी
0: है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: उसी तरह से 4 प्रकार के वहाँ पे पौधे जो है लगाने का प्रयास रहता है। जैसे घास तो अपने आप हो जाती है, या जो घास वाले पौधे हैं, फिर छोटे पौधे हैं जिनकी ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती है, तेज़ी से बढ़ते हैं, और इसी तरह से फिर थोड़े से मध्यम आकार के हैं पौधे, उनको लगाया जाता है। फिर जो विशाल हैं, जैसे बरगद है, पीपल है, ऐसे पेड़ जो है लगाए
1: जी
0: जाते हैं, तो उसमें कुछ ही सालों में अगर उनकी केयर की जाती है तो कुछ ही सालों में बहुत
1: एक
0: अच्छा
1: अच्छा रूप ले
0: अच्छा
1: लेता है,
0: आकार
1: सघन
0: है।
1: रूप ले लेता है
0: जी
1: उसमें। सर, इसमें जैसे वृक्षारोपण तो हम हर साल करते हैं और होता भी रहा है उसमें, लेकिन वृक्ष लगा देना ही सिर्फ एक काम नहीं है,
0: जी
1: उसकी
0: जी
1: देखभाल भी हो, वर्ष पर्यंत हो, क्योंकि जो ब्रज एरिया है आप देखते हैं उसमें कि एक ही साल में 3 ऐसे मौसम आते हैं कि जब हम 4 से 0
0: जी,
1: डिग्री टेम्परेचर की
0: बिल्कुल
1: तरफ भी जाते हैं, और एक
0: बिल्कुल
1: 40+
0: बिल्कुल
1: में 50 की तरफ भी
0: बिल्कुल,
1: चले जाते
0: मथुरा का वातावरण
1: हैं।
0: बिल्कुल जो है उसको छूता है, गर्मियों
1: जी
0: में
1: जी
0: तीव्र
1: जी
0: गर्मी
1: तो
0: होती
1: देखभाल,
0: है।
1: हाँ, बड़ा वैसा प्रश्न है। तो इसमें कुछ एनजीओ को, कुछ और स्वयंसेवी संस्थाओं को, कुछ एक जन अभियान करके अगर हम कर लें, तो ऐसा भी लेकर के चलना है नगर
0: बिल्कुल,
1: निगम
0: हम
1: प्लान को।
0: इसमें 2 प्रकार से देखभालों का प्रयास करते हैं। एक तो हमारे नगर निगम के ही अपने कर्मचारी हैं जो जैसे कि पार्कों में और जो मेन रोड है उसमें जो डिवाइडर पे हम लोग गमले या पौधे लगाते हैं, उनकी केयर करना उनका काम रहता है, उनको प्रतिदिन जो है पानी देना या केयर करना, क्योंकि बड़े स्तर पर ये हम लोगों ने स्वयंसेवी जो संस्थाएं हैं,
1: जी
0: ऐसी जो पर्यावरण के लिए कार्य कर रही हैं, वृक्षारोपण के लिए कार्य कर रही हैं, उनके सहयोग से, जैसे यमुना किनारे हमने काफ़ी बड़ी संख्या में पेड़ लगाए हैं, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 50,000 के आसपास पेड़ लगे हैं वृंदावन
1: जी
0: और मथुरा में, और उनके पिछले 5-7 सालों में काफ़ी बड़ा आकार भी हो गया है, बहुत अच्छा उपवन तैयार हो गया है। और इसके अलावा जो पार्क वगैरह हैं उनमें भी हम लोग स्थानीय जो हाउसिंग सोसाइटी है उनके माध्यम से कोशिश करते हैं कि बाद में वृक्षारोपण के पश्चात भी उनकी
1: मतलब देखभाल
0: देखभाल हो
1: होती
0: सके।
1: रहे इसमें।
0: बिल्कुल
1: अभी
0: बिल्कुल,
1: ये तो वृक्षारोपण की बात थी जो समसामयिक है, चल रहा है, आप
0: जी जी
1: काम करवा भी रहे।
0: जी
1: थोड़ा सा बिंदु जो समाज से, सोसाइटी से जुड़ा हुआ है और नगर निगम के बहुत मतलब मुख्य कार्यों में आता है, वो है शहर की साफ सफाई, कूड़े निस्तारण का, उसका
0: जी जी
1: मैनेजमेंट
0: जी
1: का, ये
0: जी
1: भी
0: जी जी
1: जीवन का एक बड़ा पक्ष है। तो इस संदर्भ में भी नगर निगम की कुछ योजनाएं जो
0: जी
1: आप चला रहे हो,
0: बिल्कुल, इसमें
1: इस पर थोड़ा
0: जो
1: सा
0: इसमें
1: बताइए।
0: जैसे कि जो कूड़ा निकलता है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है, तो उसमें जो इस तरह का प्लास्टिक है, प्लास्टिक वाला कचरा है, कागज़ वाला

0: कचरा है वो काफी बड़ी मात्रा में होता है, क्योंकि रैपर है, खाली पॉलीथीन वगैरह है, ये काफी बड़ी मात्रा में निकलती है, और वो जो है वेस्ट जो होता है वो खत्म भी आसानी से नहीं हो पाता, उसको समाप्त होने में भी सालों लगते हैं। तो उसमें नगर निगम ने एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है और कंपनी उस कूड़े में से ये प्लास्टिक और ये कचरा निकाल करके, कागज वगैरह निकाल करके, और उससे बेंच बना रही हैं, जो बैठने की बेंच होती हैं, गमले बना रही हैं, और जो टी गार्ड होता है जो वृक्ष के चारों तरफ
1: सुरक्षा देने के लिए शुरुआत में जी,
0: तो ये लगातार इसमें काम हो रहा है, और लगभग काफी बड़ी संख्या में 1000 के लगभग हमारी बेंच बन चुकी हैं, गमले बन चुके हैं, टी गार्ड बन चुके हैं, जिनको हम लेकर के और यहाँ पूरे क्षेत्र में लगा भी रहे हैं।
1: जी जी,
0: एक चीज और हम लोग प्रयास कर रहे हैं किचन गार्डन के रूप में, कि जैसे कि जो प्रत्येक घर में से जो गीला कूड़ा होता है, जिसमें ज्यादातर जो ऑर्गेनिक कूड़ा होता है, जैसे कि सब्जियों के या फलों के छिलके हैं, इसी तरह का जो वेस्टेज है, उसका खाद आसानी से बन जाता है, वो वेस्ट जो है जल्दी से खाद बन जाता है। तो हम लोगों का प्रयास है कि किचन गार्डन के रूप में हर घर में शुरू किया जाए। हमारी नगर निगम की टीम है, ICC टीम है, वो जाकर लोगों को थोड़ा सा बताती हैं, समझाती हैं कि घरों से निकलने वाले इस तरह के कूड़े को घर में ही खाद बना करके
1: जी, जी।
0: और घर में ही पौधों में उसको दिया जाए, तो ये बहुत सरल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। केवल कुछ जैसे बाल्टी या ड्राम जैसी चीज लेकर के उसमें डाल करके, अगर कच्ची जगह भी नहीं मिल पाती है
1: जी, जी,
0: और
1: जी।
0: उसमें कुछ इस तरह की मिट्टी या अन्य चीजें
1: मिला करके लेयर बना करके,
0: बिल्कुल
1: उसमें,
0: बिल्कुल
1: जी, जी।
0: तो
1: उसकी मतलब एक टेक्निकल ऐसे डालें, इतनी लेयर में डाल दें, इतना मिट्टी डाल दें, इतना सूखा कूड़ा डाल दें, तो उसमें घर में जो खाद हम बना सकते हैं,
0: बिल्कुल बना सकते हैं, और उसका बड़ा अच्छा उपयोग हो जाता है।
1: जी जी,
0: और अपने घर में एक पौधों के लिए अच्छा खाद मिल जाता है, तो वो भी हम लोग को कोशिश करते हैं कि इस तरह से हो जाए।
1: जी जी जी, तो मतलब जो कूड़ा उठाने के साथ साथ कूड़े को घर में ही कैसे निस्तारित किया जाए, और कैसे उपयोगी बनाया जाए, और घर के जो छोटे आसपास की जो जगह है वहाँ कैसे उसको उपयोगी तरीके से कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण का संरक्षण भी हो जाए। और कुछ प्लांट अगर आपके आसपास रहते हैं तो उसमें सिर्फ साफ सफाई नहीं बल्कि मन को जो सुकून मिलता है, तो व्यक्ति एक मतलब जो कहते हैं ना, स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का नहीं होता, मन का भी होता है। तो एक ऐसी व्यवस्था कि हम जहाँ शहर में रहें, घर में रहें, वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट में जो आती है वो निकल करके आए।
0: बिल्कुल, देखिए ये प्रकृति में ये है ही कि जो हमारा वेस्टेज है, इस तरह का ऑर्गेनिक वेस्टेज है, हमारा ऑर्गेनिक कूड़ा है, जो ठोस कूड़ा नहीं है, प्लास्टिक कचरा या लोहे की ऐसी चीजें नहीं है, ऑर्गेनिक को बस हमें प्रकृति तक पहुंचाना है, तो जल्दी से मिट्टी के माध्यम से या अन्य चीजों के ऑर्गेनिक के माध्यम से वो खाद के रूप में परिवर्तित और पौधों के लिए वो बहुत उपयोगी होता है।
1: जी जी जी जी, तो ये वृक्षारोपण का कार्य और वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य नगर निगम लोगों के सहयोग से उन्हीं के तरीके से करने की कोशिश कर रहा है। कुछ चलते चलते और कहना चाहें?
0: बस मैं ये श्रोताओं से,
1: नागरिकों से
0: मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा, ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि पर्यावरण में एक जिम्मेदार नागरिक की तरह से भाग लेकर के कोशिश करें कि वृक्ष लगाएं, वृक्षों की देखभाल करें, कम से कम एक परिवार एक वृक्ष लगाए।
1: जी जी,
0: तो ये भी बहुत अच्छा है। और किचन गार्डन की तरफ थोड़ा सा आए कि हम अपने गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा को अलग करते हुए और गीले कूड़े से थोड़ा सा खाद बना के और एक किचन गार्डन की जो है परंपरा शुरू करें। नगर निगम ऐसे नागरिकों को, ऐसे परिवारों को सम्मानित भी कर रहा है।
1: जी जी,
0: और ये एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है,
1: एक आज की आवश्यकता है ये।
0: अगर आपके मोहल्ले में एक परिवार या एक व्यक्ति भी ऐसा कार्य करता है तो अन्य लोगों पर भी उसका अच्छा प्रभाव होता है। तो धीरे धीरे वही चीज, किचन गार्डन, गार्डन पौधों के साथ रहना और घर में पौधे रखना, और फिर उसमें घर के ही ऑर्गेनिक कूड़े को खाद के रूप में बदल के उसमें इस्तेमाल करना,
1: ये एक अच्छा कार्य है उसमें। तो श्रोता बंधु, आप थे श्री राकेश कुमार त्यागी साहब, सहायक नगर आयुक्त मथुरा वृंदावन, और जानकारी दे रहे थे जो वृक्षारोपण का पावन पुनीत कार्य हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारे संस्कारों में है, मूल्यों में है, उसको करना है। पौधे लगाने ही नहीं है, उनकी हमें देखभाल भी करनी है, और जो कूड़ा हमारे आसपास घर परिवार में डे टू डे निकल रहा है उसका निस्तारण कैसे कर सकते हैं। नगर निगम तो उसमें आगे आ ही रहा है, बहुत सारी तरीकों से कूड़ा उठा भी रहा है, घर में हम भी उसका उपयोग कर सकते हैं।

0: जो हमारे पास पुरानी बाल्टियां हैं, टब हैं, या जो प्लास्टिक के छोटे मोटे कंटेनर हैं, उनमें हमारे आसपास सूखी पत्तियां हैं, मिट्टी है, फिर वो हमारा घर का कूड़ा जो किचन में निकलता है उसका इस्तेमाल कर लें, तो कंपोस्ट बना करके अन्य पौधों को भी हम खाद पानी दे सकते हैं और उनको बड़ा करने में सहयोग कर सकते हैं। त्यागी जी, आप आए, जानकारी दी, अपने विचार और वाणी से हमारे श्रोताओं से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, नगर निगम द्वारा संचालित वृक्षारोपण एवं वेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम। राकेश कुमार त्यागी, सहायक नगर आयुक्त मथुरा, से भेंट कर रहे थे ओपी सिंह। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 9:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए उन्नाव और हापुड़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं उन्नाव जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास शुक्ला का।
2: जनपद उन्नाव में बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सदर विधानसभा के ग्राम पंचायत डीह में 570 करोड़ की लागत की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम में पहुंचकर सर्वप्रथम सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया गया तथा बाल विकास सेवा एवं पोष्टाहार विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल पर पहुंचकर दो गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर पोषण पोटली भेंट की गई व दो नवजात शिशुओं का अनुप्राशन कर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को डेमोचेक प्रमाण पत्र व आवास की चाबी देकर सम्मानित किया। जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्नाव आध्यात्मिक साहित्य व क्रांति की धरा है। उन्होंने कहा कि आज जनपद उन्नाव हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, विकास की हर योजना उन्नाव में लागू है। आज यहाँ की कनेक्टिविटी हर तरफ से फोर लाइन हो गई है। गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए उन्नाववासी लखनऊ को बाईपास कर सीधे दिल्ली प्रयागराज जा सकते हैं। कानपुर के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बन रहा है। उन्नाव व कानपुर की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए गंगा नदी में अतिरिक्त ब्रिज की भी मांग पूरी की गई है। उन्नाव को पिछड़ने नहीं देंगे। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर व गंगा एक्सप्रेसवे पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित करने के लिए जमीन अधिग्रहण हो चुका है। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के लिए लगभग 700 एकड़ और 200 एकड़ लैंड इंडस्ट्रियल क्लस्टर के लिए उन्नाव जनपद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। चारों ओर रिंग रोड बनेगी। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की तैयारी चल रही है। सरकार 100 वर्ष की कार्य योजना को लेकर कार्य कर रही है।
3: यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप हो सके, इसके लिए भी हम लोगों ने उन्नाव जनपद में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी कर दी है और तेजी के साथ नए उद्योग अब उन्नाव जनपद में लगेंगे। यहाँ के नौजवानों को यहीं पर रोजगार प्राप्त होगा।
2: जिले के पुलिस लाइन ग्राउंड परिसर में राज्य ललित कला अकादमी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा व जिलाधिकारी घनश्याम मीना की उपस्थिति में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों, समाज सेवियों द्वारा सामूहिक योग अभ्यास किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि योग को मानव जीवन में महत्व के बारे में कहा कि योग स्वास्थ्य संतुलित एवं तनावमुक्त जीवन का आधार है। उन्होंने सभी नागरिकों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए आह्वान किया। जिले में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सोरामू में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। इस अवसर पर उन्होंने निराश्रित 108 बालिकाओं से संवाद किया। इस दौरान राज्यपाल ने बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन और उनके भविष्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जानकारी ली। उन्होंने बालिकाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि समाज के प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित और बेहतर वातावरण प्रदान करना सरकार और समाज दोनों का ही सामूहिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर राज्यपाल ने निराश्रित बालिकाओं की सुरक्षा, देखभाल और सुविधाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों एवं स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बालिकाओं के समुचित पालन पोषण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कार्य करने पर जोर दिया। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि बालिकाओं को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराए।

0: जाए, जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया। जिला अस्पताल परिसर से शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को संचारी रोगों से बचाव के प्रति जागरूक करना। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकालकर स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा का संदेश दिया। जागरूकता रैली में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बच्चों ने हाथों में संचारी रोगों से बचाव संबंधी संदेश लिखी तख्तियां ले रखी थी। उन्होंने नारे लगाकर लोगों को अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई बनाए रखने की अपील की। छात्र छात्राओं ने लोगों को जल भराव से होने वाली खतरे के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि घरों के आसपास पानी जमा होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं।
1: उन्नाव जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हापुड़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रविंद्र कुमार का।
2: इस सरकार की एक जनपद एक उत्पाद ODOP और वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन पहल के तहत हापुड़ के पेठे को आधिकारिक तौर पर शामिल किए जाने से हापुड़ के पेठा निर्माताओं और जनता में काफी हर्ष है। हापुड़ के पेठे को आगरा के समान राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी। वर्तमान में जनपद हापुड़ में 6 इकाइयां स्थापित हैं, जो तरह तरह के पेठे बना रही हैं। सरकार की इस पहल के तहत हापुड़ जनपद में लगभग 150 नई पेठा इकाइयां लगाई जाएंगी, जिससे पेठा उद्यमियों और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक इकाई 10 लाख रुपए तक का अनुदान सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। अब हापुड़ के पापड़ के बाद हापुड़ के पेठे को भी नई पहचान मिल रही है।
3: ये जो ODOC में हापुड़ के पेठे को जो शामिल किया गया है, इससे न केवल प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे भी पेठे की पहचान बढ़ेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार का, जिन्होंने हमारे हापुड़ के पेठे को भी ODOC में लिया।
2: विश्व योग दिवस के अवसर पर हापुड़ जनपद में जगह जगह योग शिविर आयोजन किए गए, जिसमें लोगों ने योग के माध्यम से स्वस्थ रहने के गुर सीखे। योग क्रियाओं को करके स्वस्थ रहने और योग को अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लिया। हापुड़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह पहुंचे, जिन्होंने योग क्रियाओं को करके योग से होने वाले लाभ के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक नई पहचान दी है। वहीं हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण ने अवैध भूमाफियाओं की कमर तोड़ने का भी काम किया है। जिले में हजारों वर्ग मीटर में हो रही अवैध प्लाटिंग पर HPDA ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। HPDA की कार्रवाई से अवैध प्लाटिंग माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। प्राधिकरण ने ऐसे कॉलोनाइजर को चिन्हित भी किया है, जो अवैध प्लॉटिंग कर सरकार के राजस्व को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे थे। HPDA क्षेत्र में कई जगह भू माफियाओं द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी और बिना मानचित्र स्वीकृति प्लॉटिंग की जा रही थी, जिससे प्रदेश सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। साथ ही राजस्व को ऐसे भू माफिया चूना लगा रहे थे, साथ साथ लोगों को भी धोखा दिया जा रहा था, जिसकी सूचना के आधार पर HPDA के अधिकारी और कर्मचारी ने मौके पर पहुंचकर ऐसी अवैध प्लॉटिंग को चिन्हित किया, जो राजस्व को चूना लगा रही थी। प्राधिकरण के अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि ऐसी किसी भी कॉलोनी या जगह पर प्लॉट न खरीदें जिसका मानचित्र स्वीकृत न हो, और ऐसे लोगों को से भी सावधान रहें जो लोग मानचित्र स्वीकृति का वादा करके लोगों के साथ धोखाधड़ी कर प्लॉट बेचने का काम करते हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों ने यह भी अपील की है कि अप्रूव्ड कॉलोनी में ही प्लॉट खरीदें ताकि सुरक्षित रह सकें। जनपद हापुड़ में आयुष्मान योजना लोगों के स्वस्थ रखने में वरदान साबित हो रही है। आयुष्मान योजना से लोगों को स्वस्थ होने का वरदान मिला है। 15 जून से आयुष्मान कार्ड के लाभ के लिए विशेष शिविर आयोजन किया जा रहा है। जनपद में कार्ड धारक इसका लाभ ले रहे हैं। अस्पतालों में आयुष्मान वार्ड बनाए गए हैं, जिनमें आयुष्मान कार्ड धारकों को प्राथमिकता के आधार पर भर्ती किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान कार्ड का लाभ देकर जन जन को स्वस्थ रखने का काम किया, जिसके लिए जनता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रही है। हापुड़ जनपद में पल्स पोलियो अभियान के तहत 692 बूथों पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। जनपद हापुड़ में जिला अधिकारी कविता मीना के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर किशोर कुमार आहूजा के नेतृत्व में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 692 पोलियो बूथ का सफल आयोजन किया गया। अभियान के दौरान 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर किशोर कुमार आहूजा ने बताया कि जनपद में कुल 274,600 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। 15 जून से जनपद में आयुष्मान केंद्रों, CHC, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत सहायकों के द्वारा ऐसे लाभार्थियों के कार्ड बनाए जा रहे हैं जो कार्ड बनवाने से छूट गए थे। ऐसे लोगों को कार्ड बनवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जनपद हापुड़ में मुहर्रम के पर्व पर ताजिया जुलूस और मातमी जुलूस निकाला गया। जनपद हापुड़ में अंजुमन हुसैनी के रजाकारों ने करबला के शहीदों को इस शहादत को याद करते हुए खिराजे अकीदत पेश की। आगामी मानसून एवं संभावित बाढ़ की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य

0: से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हापुड़ द्वारा ब्रजघाट गंगा गढ़मुक्तेश्वर में व्यापक बाढ़ आपदा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों को परखना था, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण किया गया।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल में आज आपने सुनी उन्नाव और हापुड़ जिलों की खबरें।
3: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आबोहवा के अंतर्गत वार्ता मानव का पर्यावरण से संबंध। वाचन कर रही हैं डॉक्टर सुचिता जैन।
4: पर्यावरण जीवन का स्रोत है। अनादिकाल से पृथ्वी पर मानव एवं संपूर्ण जीव जगत को न केवल प्रशय देता रहा है अपितु विकास के प्रारंभिक काल से वर्तमान तक अस्तित्व में बनाए रखने का आधार रहा है और भविष्य का जीवन भी इसी पर निर्भर करता है। वायु, जल, भूमि, जीव जंतु तथा वनस्पति पर्यावरण के मूल घटक हैं, जिनकी क्रिया प्रतिक्रिया से संपूर्ण जीव मंडल परिचालित होता है। सामान्य अर्थ में पर्यावरण उस सकल दृश्य अदृश्य तत्वों के लक्षणों व प्रभाव को कहते हैं जो किसी स्थान पर वस्तु या वहां के जैव स्वरूप के निकट से घिरे हुए अथवा बांधे हुए हैं एवं उसकी कार्यप्रणाली को प्रत्यक्षता प्रभावित करते हैं। जीव मंडल में जीवन का उद्भव, विकास एवं विलुप्त होना इस तथ्य पर निर्भर करता है कि प्रकृति अथवा प्राकृतिक वातावरण के साथ उसका कितना समन्वय एवं सामंजस्य है। भौगोलिक पर्यावरण से तात्पर्य ऐसी दशाओं से है जिनका अस्तित्व मनुष्य के क्रियाकलापों से अप्रभावित है, अर्थात यह पर्यावरण मानव रचित नहीं है, जो कि बिना मनुष्य के अस्तित्व एवं कार्यों से प्रभावित हुए स्वतः स्वरूपित एवं परिवर्तित होते हैं। मनुष्य के संबंध में भौगोलिक पर्यावरण से अभिप्राय भूमि या मानव को चारों ओर से घेरे उन सभी भौतिक स्वरूपों से है जिनमें वह रहता है, जिनका उसकी आदतों एवं क्रियाओं पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के स्वरूपों में भूमि का धरातल, उसके भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी की प्रकृति जैसे कि उपजाऊपन या जल की उपलब्धता, उसकी स्थिति जैसे कि महाद्वीपीय है, द्वीपीय है, तटीय या अंतर्देशीय, जलवायु, वनस्पति, खनिज संपदा, जलथल का वितरण, पर्वत, मैदान, वनस्पति एवं खगोलीय शक्ति, सौर ताप आदि जो कि पृथ्वी पर घटित होती है एवं मानव को प्रभावित करती है। पर्यावरण एवं मानव का सहसंबंध भौगोलिक अध्ययन का मूलाधार है, क्योंकि इसी संबंध से सांस्कृतिक एवं आर्थिक दृश्यावली का निर्माण होता है। वास्तव में मानव पर्यावरण का संबंध एक गहन विषय है जो मानव की विकास यात्रा का परिचायक है तथा अनेक पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है, क्योंकि मानव अपने विकास हेतु पर्यावरण का उपयोग करता है। जब तक यह उपयोग सामंजस्यपूर्ण होता है, पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है, किंतु जैसे ही प्राकृतिक तत्वों के शोषण में वृद्धि होती है व पृथ्वी की वहन क्षमता से अधिक भार डाला जाता है, इस संतुलन में व्यतिक्रम आता है जिसके कारण अनेक पर्यावरणीय समस्याएं जन्म लेती है। आज का मानव बना है दानव, प्रकृति का करता विनाश, नाम दिया उसी को विकास। न होंगे प्राकृतिक संसाधन, न होगा पर्यावरण संतुलन, कर बैठेगा स्वयं के अस्तित्व का हनन। मेरे विचार से प्रकृति की प्रत्येक इकाई महत्वपूर्ण है, एक दूसरे पर निर्भर भी है व एक दूसरे की पूरक भी। यदि छोटी से छोटी इकाई, चाहे कोई छोटा सा जीव जंतु हो या कोई अन्य बड़ा जानवर, लेकिन जो कड़ियां बनी हुई होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है, वो एक छोटी से छोटी कड़ी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक बड़ा जानवर या प्राणी या कोई भी अन्य घटक जो कि पूरे जैविक स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए प्रकृति का दोहन कर रहा है। अतः हम

सबका यह नैतिक दायित्व है कि प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकताओं को सीमित करते हुए सामंजस्यपूर्ण उपभोग करना चाहिए व पर्यावरण संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए।

आबो हवा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता मानव का पर्यावरण से संबंध, वाचन कर रही थी डॉक्टर सुचिता जैन। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज दर्पण। प्रस्तुति दे रहे हैं जितेंद्र सिंह।

शिक्षा, सूचना और मनोरंजन से भरपूर आपके अपने कार्यक्रम ब्रज दर्पण में आप सभी श्रोता मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, दिन की शुरुआत अगर अच्छे प्रेरणादायक विचार के साथ की जाए तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव हमारे पूरे जीवन में, हमारे आचरण, हमारे व्यवहार और हमारी सफलता पर भी पड़ता है। और आज का हमारा विचार है कि स्वयं को जीतें, संसार जीतें, यानी बात है आत्म संयम की। जीवन में हर व्यक्ति सफलता पाना चाहता है। कोई पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहता है, तो कोई खेल में, कोई व्यवसाय में या किसी अन्य क्षेत्र में अपना नाम कमाना चाहता है। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी जीत बाहर की दुनिया को हराने में नहीं बल्कि खुद को जीतने में होती है। यही कारण है कि कहा गया है कि जिसने खुद को जीत लिया वही असली विजेता है। खुद को जीतने का मतलब है कि अपनी कमजोरियों, अपने डर, अपने अंदर छिपे हुए आलस्य और नकारात्मक सोच पर काबू पाना। कई बार हमारे सामने बड़ी बाधा कोई और नहीं बल्कि हम खुद होते हैं। हमारे अंदर ऐसी आदतें होती हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। हम टालमटोल करते रहते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं या अपने मन में डर बना लेते हैं। जब कोई व्यक्ति इन आदतों को पहचान कर इन्हें सुधारने की कोशिश करता है तभी वो सच्ची जीत की ओर आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र रोज पढ़ाई करने का संकल्प लेता है लेकिन आलस्य के कारण उसे टालता रहता है तो वह अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। लेकिन जब वही छात्र अपने आलस्य पर विजय पा लेता है और अनुशासन के साथ पढ़ाई करने लगता है तब वह वास्तव में खुद को जीत लेता है। यही जीत उसे आगे चलकर बड़ी सफलता दिलाती है। खुद पर नियंत्रण रखना ही असली सफलता है। इस विचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी है कि हमारे अंदर गुस्सा, ईर्ष्या, अहंकार जैसे भाव होते हैं और ये हमें गलत रास्ते पर भी ले जा सकते हैं। जो व्यक्ति इन भावनाओं को समझकर उन्हें नियंत्रित करना सीख लेते हैं वो मानसिक रूप से मजबूत बन जाते हैं और यही मजबूती उन्हें जीवन में कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। इसलिए प्रयास करें कि अपने अंदर छिपी हुई इन सभी कमियों को दूर करके आत्मसंयम को अपनाएं और खुद पर नियंत्रण करें, अपनी बुरी आदतों पर विजय हासिल करें, तभी आप सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हो।

0: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान। भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वृक्ष और हमारे वन ये हमारे जीवन का आधार है और इनके बिना जीवन की कल्पना भी कठिन हो जाती है। इसी को लेकर हर वर्ष दिनांक 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं हमारे जनपद मथुरा के जिला वन अधिकारी वेंकटा श्रीकर पटेल जी। आज वन महोत्सव को लेकर हम आपसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम ब्रज दर्पण में हार्दिक अभिनंदन।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: जैसा कि हर वर्ष की भांति हम वन महोत्सव मनाने जा रहे हैं, तो बताएं कि इस वर्ष जो वन महोत्सव की थीम है वो क्या रखी गई है और वन महोत्सव मनाए जाने का क्या उद्देश्य है?
4: इस साल हर साल पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हम लोग इस बार 40 करोड़ वृक्षारोपण प्रदेश पूरे प्रदेश में कर रहे हैं और जो मथुरा जनपद है इसमें हम लोग सारे विभाग मिलकर 35 लाख के करीबन वृक्षारोपण कर रहे हैं। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोग ब्रज क्षेत्र की हरियाली बढ़ाएं और यहाँ पे हम लोग ऐसा पौधे लगाए जिससे जैव विविधता बढ़े, जहाँ पर हर प्रकार के जीव जंतुओं को उनका आहार मिले और जो श्रद्धालु है उनको छाया मिले और हरियाली में वृद्धि हो।
3: ये बताएं कि वृक्षारोपण के लिए किस प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे?
4: हम लोग मुख्य रूप से ऐसे पौधे लगा रहे हैं जो फलदार हो एवं फूलदार हो, जिससे हमारे शहर की शोभा बढ़े। और फलदार पौधे इसीलिए ताकि जीव जंतुओं को उनका आहार मिले। हमारा इसमें यह भी है कि हम लोग नहर के किनारे हम लोग छायादार वृक्ष लगाए, जिस कारण जो है

0: पानी में भी ठंडक बनी रहे और सड़क किनारे भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक मिशन छाया का एक प्रोग्राम शुरू किया है, जहाँ पे ऐसा सामने आया है कि जिन सड़कों के किनारे कोई पौधे होते नहीं है, वहाँ पे जो तापमान है वो 8 डिग्री जो है अधिक रहती है। तो इसको कम करने के लिए हम लोग मिशन छाया के रूप में बाकी विभागों के द्वारा, जैसे आपका लोक निर्माण विभाग हो गया, नगर निगम हो गया, ग्राम्य विकास हो गया, इन सब से हम लोग मिलकर सड़क के किनारे भी पौधे लगा रहे हैं, जिससे सड़कों पे छाया बनी रहे।
1: तो इसके लिए कोई विशेष पौधे रहेंगे? पिछली बार पापड़ी के, नीम के इत्यादि पौधे लगाए गए, तो इस बार कौन से विशेष पौधे रहेंगे?
0: इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शहतूत के भी लगे, और जैसे पिछले साल लगे हैं पापड़ी के भी लगेंगे, कट सागवान के लगेंगे, गुलमोहर के लगेंगे और बेर के लगेंगे, नीम के लगेंगे। हमारा ये उद्देश्य है कि छाया ज्यादातर बनी रहे यहाँ पे।
1: वन महोत्सव मनाए जाने का उद्देश्य यह है कि लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति और वृक्षारोपण के प्रति जागरूक किया जाए और इसमें जन भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। जन भागीदारी को इसमें बढ़ाने के लिए क्या कुछ कार्यक्रम वन विभाग की ओर से रहेंगे?
0: मथुरा वन प्रभाग के द्वारा हम लोगों ने जन प्रतिनिधियों को आमंत्रण दिया है, ताकि उनके भागीदारी से बाकी जो जनमानस है उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले कि वो भी इसमें भाग ले, वृक्षारोपण में भाग ले, और सिर्फ जनपद स्तर पर विभाग के अतिरिक्त लोग भी सामने आकर और ज़्यादा वृक्षारोपण करें, हमारा ये उद्देश्य है। जैसे जैसे अभी वन महोत्सव का एक बार डेट्स आ जाएंगे, पे हम लोग जन प्रतिनिधियों को बुलाकर हम लोग प्रोग्राम्स करेंगे और लोगों में एक संदेश पहुंचाएंगे कि वो भी वृक्षारोपण में भाग लें।
1: क्या इसमें स्कूल के विद्यार्थियों को भी जोड़ा जाएगा?
0: हाँ, इसमें स्कूल के विद्यार्थियों को भी जोड़ा जा रहा है, उनको सेंसिटाइज करने के लिए मैं अपने लेवल से भी और मेरे जो अधीनस्थ स्टाफ है वो भी स्कूल में जाकर बच्चों को प्रोत्साहन करेंगे और उनके द्वारा हम लोग पौधारोपण भी करवाएंगे।
1: आज हम जिस प्रकार से नगरीकरण की ओर और आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए वृक्षारोपण का हमारे जीवन में कितना महत्व है?
0: जो जलवायु परिवर्तन है एवं हीट आइलैंड इफेक्ट है, ये नगरीकरण के कारण ही है। जहाँ पे आबादी बसने के कारण वहाँ पे हरियाली जो है काफ़ी कम हो गई है, और ऐसा भी है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के एवं कार्बन सिंक बनाने का कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने एक प्रतिज्ञा की है। तो इससे यह है कि हम लोग जो प्रदूषण हो रहा है, जो कार्बन हम लोग एटमॉस्फेयर में एमिट कर रहे हैं, उनको हम लोग पौधों के रूप में उनको अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, एक कार्बन सिंक बनाया जाएगा, जिससे जलवायु परिवर्तन में जो है काफ़ी हम लोग काफ़ी उसमें रोकथाम कर सकते हैं।
1: वन महोत्सव को लेकर पौधों के वितरण की किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी?
0: हमारे पास जो है मथुरा जनपद में 18 पौधशालाएं हैं, जिनके प्रभारी हमारे वन दरोगा हैं एवं वन रक्षक हैं, उनके कांटेक्ट नंबर हमने, संपर्क करने का जो नंबर है वो हमने जनपद स्तर पे प्रचार प्रसार को भी और सूचना अधिकारी को दे रखी है। तो जो भी जनता वृक्षारोपण या पौधारोपण करना चाहती है वो उन नंबर के द्वारा उनसे संपर्क करे और पौधों का जो वितरण है वो वहाँ से प्राप्त करे। कई बार मुझे भी डायरेक्ट कॉल्स आते हैं कि हमें पौधे लगाने हैं तो उपलब्ध कराइए, तो मैं अपने स्तर से भी मेरे जो स्टाफ हैं उनका नंबर उनको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण हो।
1: तो इसमें जो पर्यावरण प्रेमी सामाजिक संगठन हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, क्या वन महोत्सव में वो भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं?
0: हम लोगों ने एक मीटिंग की है एनजीओ के साथ, जिसमें उनको हम लोगों ने बताया है कि वो वृक्षारोपण में भाग ले और उनके आसपास के जो जनता हैं उनको भी उसमें उनको प्रोत्साहन करे कि वो भी इसमें भाग ले, और सरकार के विभागों के अतिरिक्त एनजीओ हैं, गैर सरकारी संस्थान हैं, वो भी वृक्षारोपण में भाग ले।
1: जनपद में कितने पौधे लगाए जाएंगे इस बार?
0: मथुरा जनपद में हम लोग 35 लाख के करीब पौधे लगा रहे हैं, और इसके अतिरिक्त हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एक कृष्णकालीन के पौराणिक वन को भी स्थापित कर रहे हैं, जिसका इस साल हम लोग 50 हेक्टेयर में प्लांटेशन कर रहे हैं, और इसके अतिरिक्त हम लोग बकरी अनुसंधान केंद्र में 85 हेक्टेयर का और सीमा सुरक्षा बल के 12 हेक्टेयर में भी प्लांटेशन कर रहे हैं, और ये विशिष्ट वृक्षारोपण है। तो इस कारण हमारा जो वृक्षारोपण का संख्या है वो 37 लाख के करीबन पहुंच जाएगा।
1: इतने सारे पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन इनका जो सर्वाइवल

0: रेट है, यानी इनकी जो जीवित रहने की दर है उसके क्या आंकड़े रहते हैं?
1: जो सर्वाइवल रेट रहता है उसका हम लोग रेगुलरली वन विभाग का स्टाफ और अन्य विभाग के स्टाफ इनका रेगुलरली हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। और हमारा वन विभाग के तरफ से भी कुछ टारगेट्स रहते हैं कि वृक्षारोपण होने के बाद हम लोग उनका चेकिंग करें, तो इस कारण रेगुलर निरीक्षण होती रहती है, जिस कारण स्टाफ जो है कहीं पे अगर किन्हीं पौधों को अगर क्षति पहुंची है कि या वो जड़ नहीं लग पाए हैं तो हम लोग तुरंत के तुरंत उनको रिप्लेस कर देते हैं, जिसका प्रावधान भी विभाग हमें प्रोवाइड करवाता है। और हम लोग कैटल गार्ड को भी रखते हैं और वन रक्षक और वन दरोगा इवन क्षेत्रीय वन अधिकारी जो है रेगुलर मतलब गश्त करते रहते हैं। और एक उपप्रभागीय वन अधिकारी हो या प्रभागीय वन अधिकारी हो, जो हमारे ऊपर वन संरक्षक और मुख्य वन संरक्षक होते हैं, वो भी आकर इनका निरीक्षण करते हैं, जिस कारण हम लोग ग्रोथ रेट जो है वो अच्छे परसेंटेज में रहती है।
0: जैसा कि जुलाई में वन महोत्सव इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस मौसम में मानसून आ जाते हैं और बारिश होती है, पौधों की जो है जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर बारिश कम होती है तो इसका प्रभाव पौधों पर पड़ेगा, तो इस स्थिति में भी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था रहेगी?
1: हाँ, हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था भी रहती है, सिंचाई जो विभाग द्वारा हमें दी जाती है उनके द्वारा भी इनकी हम लोग सिंचाई करेंगे, अगर बारिश जो है कम मात्रा में पड़ती है तो हम सुनिश्चित करेंगे।
0: जैसा कि सभी लोग जो हैं वन महोत्सव मना रहे हैं, पौधारोपण करते हैं और सोशल मीडिया पर, अखबारों में, समाचार पत्रों में फोटो भी खिंचवाते हुए नज़र आते हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी केवल पौधारोपण तक ही सीमित है?
1: देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पौधारोपण करने तक ही हमारा काम सीमित नहीं रहता है, हमारा हर पूरे स्टाफ जो वन रक्षक से लेके मुख्य वन संरक्षक तक हम लोग निरीक्षण करते रहते हैं, जिस कारण हम लोग इसकी जीविता प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। और हमारा प्रयास ये भी रहता है रेगुलर निरीक्षण के कारण कि आम जनमानस भी हमें देखकर वो भी इसमें वृक्षारोपण के बाद वो जो पौधारोपण किए हैं उनका भी सुरक्षा वे भी अपने स्तर से सुनिश्चित करें।
0: मुख्य रूप से कौन कौन से विभाग इसमें आपका सहयोग कर रहे हैं?
1: वन विभाग के साथ साथ जनपद स्तर पे लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, ग्राम्य विकास, मथुरा में मंडी विभाग और फिर आपका हॉर्टिकल्चर विभाग, चिकित्सा अधिकारी सब इसमें भाग ले रहे हैं।
0: आम जनमानस के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: हम आम जनमानस से यही अनुरोध करेंगे कि सरकार के साथ वो भी हाथ मिलाए और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करे, और वृक्षारोपण तक ही सीमित ना हो, जो पौधे वो लोग अपने स्वयं लगाए हैं उसका सुरक्षा भी सुनिश्चित करे।
0: तो श्रोताओं, इस बार वन महोत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और वृक्षारोपण का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है, क्योंकि अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आज हमें वृक्षारोपण के प्रति जागरूक होना ही पड़ेगा। वृक्षारोपण करना, कम से कम एक पौधा लगाना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। सभी लोग एक परिवार में मिलकर कम से कम एक पौधे की तो देखभाल जरूर करें और इस वन महोत्सव को सार्थक और सफल बनाएं। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए और आम जनमानस को जागरूक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।

श्रोताओं, वास्तव में यदि पेड़ पौधे हैं तो हमारी प्रकृति की सुंदरता बनी हुई है, और केवल सुंदरता ही नहीं बल्कि वृक्ष जो हैं हमारी प्रकृति का एक अमूल्य उपहार हैं, जो हमें शुद्ध वायु, फल, फूल, औषधियाँ, लकड़ी तथा जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। आज बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। ऐसे समय में वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण का सबसे प्रभावी और सरल उपाय है। वृक्ष वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे कि वायु शुद्ध रहती है, और वृक्ष हमारे वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। मिट्टी के कटाव को रोकते हैं तथा भूजल स्तर को बनाए रखने में भी वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वृक्ष अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं का आश्रय भी होते हैं, जिससे जैव विविधता सुरक्षित रहती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिवर्ष कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे तो हरित क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। अधिक वृक्ष होने से तापमान नियंत्रित रहता है, प्रदूषण कम होता है और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। विद्यालयों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर नियमित वृक्षारोपण अभियान चलाकर समाज को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाया जा सकता है। और वृक्षारोपण के लिए कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना होगा, जैसे वर्षा ऋतु में पौधे लगाएं, क्योंकि इस समय उनकी वृद्धि अच्छी होती है। स्थानीय जलवायु के अनुसार उपयुक्त और देशी प्रजातियों के पौधों का चयन करें। पौधा लगाने के बाद उसकी नियमित रूप से देखभाल करें, यानी उसमें पानी दें और खाद वगैरह का उसमें ध्यान रखें। पौधों को पशुओं से बचाने के लिए ट्री गार्ड या उसके आसपास बाड़ लगाएं। समय समय पर उसमें खाद डालें, खरपतवार हटाएं

परिवार, विद्यालय और समाज के लोगों को भी न केवल वृक्षारोपण करने के लिए बल्कि पौधों की देखभाल करने के लिए भी जागरूक करें। और कुछ और बातों का भी आपको ध्यान रखना है जो कि नहीं करनी है। बिना योजना के किसी भी स्थान पर पौधे नहीं लगाएं, पौधे लगाकर उसकी देखभाल करना ना छोड़ें और अनावश्यक रूप से पेड़ों की शाखाएं या पत्तियां ना काटें। पौधों के आसपास प्लास्टिक, कूड़ा कचरा या रासायनिक अपशिष्ट नहीं फेंकें। पौधों को नुकसान पहुँचाने वाले कार्य जैसे आग जलाना या उन पर कीलें ठोकना इत्यादि नहीं करें, क्योंकि इनसे पौधों को, वृक्षों को नुकसान होता है। इन सरल बातों का पालन करके वृक्षारोपण को सफल बनाया जा सकता है और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है।

साथियों, इसी के साथ अब हम एक नज़र आज की खास खबरों पर डाल लेते हैं। जनपद में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कड़ा रुख अपनाया है। एनजीटी के आदेशों के अनुपालन में अब जिले के ईंट भट्टों को सिर्फ तय समय सीमा के भीतर ही संचालित करने की अनुमति होगी। इसी के साथ एक और खबर है, गोरखपुर में 10 से 13 जुलाई तक होने वाली प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालक बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए शुक्रवार को स्वर्गीय मोहन पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम मथुरा में ट्रायल हुए। ट्रायल में कुल 28 बालकों ने भाग लिया। इसमें 9 बालकों का चयन मंडल स्तरीय

के लिए हुआ है। और अब बात कर लेते हैं आज के दिन की। तो आज की तिथि 4 जुलाई, इतिहास के झरोखों से ये कहती है कि आज ही के दिन सन 1999 में भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में टाइगर हिल पर विजय प्राप्त की थी। और आज ही के दिन सन 1966 में प्रेस परिषद का गठन हुआ था। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और मानकों को बनाए रखने के लिए 4 जुलाई 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी। और आज ही के दिन सन 1963 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया का निधन 4 जुलाई को हुआ था। और आज ही के दिन ब्रिटिश शासन के खिलाफ रंपा विद्रोह का नेतृत्व करने वाले महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई सन 1897 को हुआ था। इसी के साथ कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। अगले कार्यक्रम में हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, फिर किसी नई जानकारी, नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण, प्रस्तुति दे रहे थे जितेंद्र सिंह, संयोजन ओपी सिंह का था। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है रूपक के अंतर्गत हम और हमारी अरण्य संस्कृति। वाचन स्वर रश्मि शर्मा और संजय सारस्वत के हैं। प्रस्तुति है ओपी सिंह की।

0: श्रृंगार वृक्ष हैं, प्राण वायु दे रही सभी को ऐसे परम उदार वृक्ष हैं, ईश्वर के अनुदान वृक्ष हैं, फल फूलों की खान वृक्ष हैं, मूल्यवान औषधियां देते ऐसे दिव्य महान वृक्ष हैं, देते शीतल छांव वृक्ष हैं, रोके थकते पांव वृक्ष हैं, लाखों जीव बसेरा करते जैसे सुंदर गांव वृक्ष हैं, जन जीवन के साथ वृक्ष हैं, खुशियों की बारात वृक्ष हैं, योगदान से इस धरती पर ले आते वरदान वृक्ष हैं, जीव जगत की भूख मिटाते ये सुंदर फलदार वृक्ष हैं, जीवन का आधार वृक्ष हैं, धरती का श्रृंगार वृक्ष हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, इन दिनों हम मना रहे हैं वन महोत्सव, जो भारत में प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाने वाला महोत्सव है। ये महोत्सव भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित किया जाता है। सन 1960 के दशक में ये पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करने वाला एक आंदोलन था। तत्कालीन कृषि मंत्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने इसका सूत्रपात किया था। वन महोत्सव सामान्यतः जुलाई अगस्त माह में मनाकर अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण किया जाता है, क्योंकि वर्षा काल में ये चार माह के पौधे थोड़े से प्रयास से अपनी जड़ें जमा लेते हैं।
0: हमारी सारी संस्कृति वन प्रधान है। ऋग्वेद जो हमारी सनातन शक्ति का मूल है, वन देवियों की अर्चना करता है। प्राचीन भारत में वृक्षों का धार्मिक महत्व विशेष था। प्राचीन साहित्य में अरण्यों एवं वनों के प्रसंग बहुत आते हैं और मूर्ति कला और चित्रकला में तो वृक्षों और पुष्पों का विशेष स्थान रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से पता चलता है कि उस युग के लोगों को वृक्ष कितने

0: ये थे उनके मिट्टी के बर्तनों पर पीपल के पत्तों के चित्र मिलते हैं। उनके राज्य चिन्हों में तो झुकी हुई डालों वाला वृक्ष अंकित है और दूसरे में एक ऊंची वृक्ष पर बैठा हुआ एक मनुष्य तथा उसके नीचे एक व्याघ्र अंकित मिलता है। वेदों में पर्वतों और नदियों, मेघों के गर्जन और बिजली की गड़क, भयानक प्रचंड वायु, प्रभात सुषमा, शीतल झरने, वृक्ष और वनों का वर्णन आता है। वन देवी की स्तुति में लिखी गई ऋग्वेद की एक ऋचा में प्रकृति का शब्द चित्र खींचा गया है।
1: रामायण और महाभारत के घटना स्थल बहुधा वनों में ही है। महाभारत में खांडव वन के जलने का उल्लेख है और रामायण में पंचवटी वन की रमणीयता का वर्णन किया गया है। पुराणों में वृक्षों के महात्म्य, वृक्षारोपण के पुण्य और वृक्ष काटने के पाप के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है। पुराणों में वृक्षों की पूजा का महात्म्य भी बताया गया है। जो मनुष्य लोगों के हित के लिए वृक्ष लगाता है वो मोक्ष प्राप्त करता है। वृक्ष लगाने वाला मनुष्य अपने 30,000 भूत और भावी पितरों को मोक्ष दिलाने में सहायक होता है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि 10 कुएं बनवाना एक ताल बनवाने के समान है। 10 तालों का निर्माण एक झील के निर्माण के बराबर है। 10 झील बनवाना एक सुपुत्र प्राप्त करने के समान पुण्य कारक है, किंतु 10 पुत्रों का पुण्य केवल एक वृक्ष लगाने से ही प्राप्त हो जाता है। भगवान बुद्ध को भी वट वृक्ष के ही नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध कला और साहित्य में इसका निरंतर उल्लेख आता है।
0: सिकंदर और यूनानियों ने भारत के विशाल वट वृक्षों को देखकर आश्चर्य किया था। हमारी संस्कृति जो सुंदरतम और श्रेष्ठतम है, उसका उद्भव आश्रमों और तपोवन में हुआ था। हमारे संस्कारों पर नंदन वन के सौंदर्य और सती सीता के कारण अशोक वन के करुणापूर्ण वातावरण छाप लगी हुई है और वृंदावन को हम कैसे भूल सकते हैं, जहां कृष्ण भगवान ने अनेकों लीलाएं की हैं। धार्मिक दृष्टि से इन वनों का प्राचीन काल से क्या महत्व रहा है, इसके विषय में हमें जानकारी दे रहे हैं भागवत आचार्य अतुल कृष्ण महाराज जी।
2: भारत में जो वनों का महत्व हमारे शास्त्रों में समझाया गया है, वो परमात्मा के रोम उनको कहा गया है, परमात्मा के बाल। पूरा ब्रह्मांड चूंकि परमात्मा का स्वरूप है, सियाराम में सब जग जानी, तो उसके कारण पर ये जो वन है ये भगवान के बाल कहे गए हैं। तो हम खुद ही समझ सकते हैं, अगर हम काम ना करें, शरीर पर बाल ना हो, तो कितनी बड़ी समस्या हो सकती है शरीर को। प्रकार पूरे जो ऑक्सीजन सिस्टम को, जो गैसों के सिस्टम को मेंटेन रखते हैं, इसमें सबसे पहले सामाजिक दृष्टि से इसको समझना आवश्यक है। पूरी जो पृथ्वी है, सत्कारणवा सप्तकुला चलाश्च सप्तर्षय दीप बनानी सप्ता भूरादिकत्वा भवनानी सप्ता कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्, ऐसी भारत का ऋषि प्रार्थना करता है। तो उसमें सप्त वनों का भी जिक्र है और हमारे ब्रज में तो ये 12 वन ही हैं भगवान की लीला के। वृंदावन बिहारी लाल की जय पूरे दुनिया में बोली जाती है। रामायण के भी मंगलाचरण के 4th श्लोक में सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य विहारणो, हनुमान जी हमेशा पुण्यों के जंगल में ही विहार करते हैं। और भगवान श्री राम का जब वनवास हुआ तो उन्होंने पंचवटी जो बिल्कुल ऋषियों के श्राप से सूख गई थी, उसको इतना हरा भरा कर दिया कि एक साल के अंदर ही वो इतनी हरी भरी हो गई कि सुपर्णखावा पिकनिक मनाने आ गई। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूं कहूं सीए कहूं लखन लगाए। भगवान जहां भी रहते थे वहां पेड़ बहुत लगाते थे। पंचवटी में लगे हुए 5 वट के वृक्ष आज भी उनकी उस महिमा का गायन कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भी धार्मिक समारोह होता है तो उसमें पंच पल्लव का पूजन होता है, तो उसमें ऐसे वृक्ष जो लगातार ऑक्सीजन देते हैं, पीपल है, बरगद है, अपना पिलखन है, ऐसे जो शुभ वृक्ष है उनके पत्तों को ही उसमें पंच पल्लव के पूजन में रखा जाता है। हमारे जो 27 नक्षत्र हैं, जो नवग्रह हैं, तो हर ग्रह का भी अपना अपना वृक्ष है और हर एक नक्षत्र का भी अपना अपना वृक्ष है। उन वृक्षों को लगाने से, उनकी पालन करने से जितना फायदा हम लोगों को रत्न पहनने से और अनुष्ठान कराने से प्राप्त होता है, उतना ही फायदा वृक्षों के पालन से, अगर हम अपने ग्रह का, अपनी राशि का और अपने नक्षत्र का वृक्ष लगाएं, उसका पालन करें, तो हमारे भाग्य में भी बढ़ोतरी होती है। तो ये इसका ज्योतिषीय दृष्टि से भी, हमारे भाग्य की दृष्टि से भी बड़ा महत्व है। वृक्ष अपने अंदर जल का संचयन करते हैं। आप देखते हैं कि गंगा यमुना तो चलिए आप कह सकते हैं कि हिमालय से निकली है, बर्फ पिघल के आती है, लेकिन आप देखिए कि जो विंध्याचल

0: हिमाचल से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो तो जंगलों से ही निकली है। नर्मदा जी, बेतवा जी, केन, बड़ी बड़ी चंबल, ये जितनी नदियां हैं ये सब जंगलों में से निकली है। तो हमारा जो सागौन का पेड़ है, जो साल का पेड़ है, ये जो नीम का, पीपल के जो पेड़ है, ये अपने अंदर सबसे ज्यादा महुआ का पेड़ है, ये अपने अंदर जल का संचयन करते हैं और उसको भूमि में स्थापित करते हैं जल को, और उसी में से बूंद बूंद वो रिस के धाराएं बनती हैं और उसी से नदियों का प्रवाह बनता है। भारत का ऋषि प्रार्थना करता है वेद में कि हमारी नदियां वेगवती हो। तो नदियां वेगवती तब होंगी जब हमारे वन होंगे। आज हिमालय में भी वनों का संकट है, वहां भी सारे वन कट गए, वनों पर बड़ी समस्या है। जो पेड़ सबसे ज्यादा जल का संचयन करते हैं उनकी टीक, उनकी लकड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है, इसलिए उसी पर सबसे ज्यादा संकट आता है। और सरकार वन विभाग को जितना पैसा देती है, वन मंत्रालय को जितना पैसा देती है वन लगाने के लिए, इसका सीधा सीधा ये काम है कि सरकार किसानों को पैसा दे सीधे सीधे और उनसे कहे कि एक एकड़ पर अगर आप हमको इतने पेड़ दिखाएंगे, एक किसान आराम से 10-20 पेड़ अपने एक एकड़ भूमि में कर सकता है, तो उतना पैसा उसको मिलेगा तो उसकी आर्थिक व्यवस्था भी अच्छी हो जाएगी और पूरी धरती भी हरी भरी हो जाएगी।
1: महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम में भी ये उल्लेख मिलता है कि शकुंतला किस प्रकार वृक्षों से प्रेम करती थी, किस प्रकार वृक्ष पर नई को पलाने पर उत्सव मनाती थी। लेकिन आज हम वृक्षों का आरोपण करना भूल गए हैं। वृक्ष पूजा का हमारे जीवन में स्थान नहीं रहा। हमारी स्त्रियों में से शकुंतला की आत्मा चली गई है। शकुंतला जो वृक्षों को पानी दिए बिना स्वयं पानी भी ग्रहण नहीं करती थी, आभूषण प्रिय होते हुए भी ये सोचकर उन पल्लवों को नहीं चुनती थी कि इससे वृक्षों को दुख होगा। जब वृक्षों में फल आते तो वो उसे बड़ा ही आनंद का अनुभव होता था। इन मंजरित वृक्षों का सौंदर्य हम नहीं भूल सकते। हम नहीं भूल सकते भव्य वृक्षों का अद्भुत गौरव और वृद्ध ऋषियों के समान जगत के कल्याण में ही जीवन साफल्य समझने वाले वनों को।
2: यदि प्रत्येक पुरुष और स्त्री वृक्षों के महत्व को समझे और पुत्रवत उनका परिपालन करे तो भारत के हर नगर हर गांव का जीवन उल्लास से ओतप्रोत हो जाएगा। आज मनुष्य ने अपने स्वार्थ के कारण वनों को नष्ट कर दिया है और बनते जा रहे हैं कंक्रीट के जंगल। इन वनों को नष्ट करने का उद्देश्य उसका अपना स्वार्थ है, क्योंकि वो चाहता है वहाँ अधिक से अधिक औद्योगिक कारखाने हों या उसके रहने के लिए ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हों। जाहिर सी बात है, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ हमारे यहाँ एक परंपरा और बदली। वो परंपरा थी संयुक्त परिवार के विघटन की और एकाकी परिवार के जन्म की परंपरा। यानी अब लोग एकाकी परिवार में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब परिवार सबके अलग अलग होंगे तो घर की आवश्यकता भी सबको अलग अलग ही पड़ेगी। कुछ ऐसे ही विचारों के साथ हैं हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार।
3: आजकल कोई संयुक्त परिवार में बहुत कम रहते हैं, क्योंकि नौकरी पेशा नौकरी वगैरह जो बच्चों की है वो परिवार एक जगह है, लेकिन दूसरी जगह नौकरी लगी और सभी को अपना एक व्यक्तिगत घर चाहिए। और व्यक्तिगत जब घर चाहिए तो उसके लिए स्थान चाहिए। स्थान चाहिए तो स्थान ढूंढेगा तो जहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह लगे हुए उनको उससे कोई मतलब नहीं है, वो काटना है, समतल जमीन बनानी है, वहाँ पर बड़े बड़े कंक्रीट के जंगल बनाने हैं। तो एक ये भी बहुत बड़ा रीजन रहा है कि न्यूक्लियर फैमिली है। हाँ, ये भी है। और पॉपुलेशन बढ़ेगी, उसको आवश्यकता है रहने के लिए, तो स्वाभाविक है वो भी जहाँ पर जगह मिलेगी वहाँ बड़े पेड़ हो चाहे ना हो, पेड़ होंगे तो काटेंगे और उसकी जगह फिर घर अपना तैयार करते हैं। तो एक ये भी रीजन हो सकता है कि शायद न्यूक्लियर फैमिली कहीं ना कहीं किसी हद तक रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है डिफॉरेस्टेशन के लिए, क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं जंगल की तरफ, हम बढ़ते जा रहे हैं, हमको जगह चाहिए। जो नई जनरेशन आ रही है, हमारा दायित्व बनता है कि हम उन जनरेशन को, जो नई पीढ़ी आ रही है, उनको पेड़ पौधों के महत्व के बारे में बताएं कि हर पौधे का, हर पेड़ का एक अपना महत्व है। औषधि गुण सभी पौधों में मिलते हैं। यदि हम उस हिसाब से आगे आने वाली पीढ़ी को बताते जाएंगे कि इस पेड़ का ये महत्व है, इस पेड़ का ये महत्व है, इस पौधे का ये महत्व है, इसका औषधि महत्व ये है, तो शायद उनमें एक जागरूकता होगी कि हाँ, हमें पौधों को बचाना है, हमको पेड़ों को बचाना है। और किसी तरह यदि नुकसान हो रहा तो उसको हम बचाएंगे। और कोशिश ये रहेगी कि आने आने

0: आगे आने वाली जनरेशन जब इस चीज के महत्व को समझेगी तो वो शायद और भी ज्यादा पेड़ लगाए और पेड़ काटने की तरफ उसका ध्यान ना जाए। तो मेरे ख्याल से जो नई जनरेशन को इससे अवेयर कराना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा उनको बताना चाहिए कि हर पेड़ का, हर पौधे का अपना एक महत्व है, इसके विशेष गुण है, ये इस काम में आता है, ये इस काम में आता है। तो सारी चीजें उनको यदि हम प्रॉपर तरीके से बताएंगे तो शायद जो नई जनरेशन है उसको समझेगी और लोगों में इसके प्रति जागरूकता आएगी और वो पौधों को नष्ट होने से, पेड़ों को नष्ट होने से बचाएंगे और नए पौधे लगाएंगे, जिससे कि जो एक्चुअल में जो वन का महत्व है वो लोगों को समझ में आएगा।
1: ये ठीक है कि हमने अपने स्वार्थ के लिए वृक्षों को काटा, लेकिन ये उतना ही गलत है कि हमने वृक्ष काटे और उसके बाद में वृक्षारोपित भी नहीं करे। यदि हम एक वृक्ष काटते हैं तो उसकी जगह हमें अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपित भी करने चाहिए। जनपद मथुरा में इस समय इन वनों की क्या स्थिति है, इसके विषय में जानकारी दे रहे हैं जिला वन अधिकारी अरविंद कुमार जी।
2: देखिए, जो वन खत्म होते जा रहे हैं, इसका सीधा प्रभाव तो ये है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जंगल सिकुड़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर पौराणिक जो प्रजातियाँ थीं वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं पानी के अभाव में। पानी बहुत कम यहाँ बरसता है और पानी जो भी ग्राउंड वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा खारा है, इसलिए वो प्रजातियाँ जो यहाँ की पौराणिक प्रजातियाँ थीं वो ख़त्म होती जा रही हैं। फिर भी उन पौराणिक प्रजातियों को जिंदा रखने के लिए, आगे रखने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और नर्सरियों में उनको पौधे उगाते हैं। पौधों की उपलब्धता वन विभाग भी उपलब्ध कराता है, फलदार प्रजातियों के लिए उद्यान विभाग भी करता है और प्राइवेट नर्सरियां भी काम इसमें करती हैं। वन विभाग से यदि किसी को पौधा लेना है तो यहाँ उपलब्ध है पौधे। हमने यहाँ पर यहाँ की पौराणिक प्रजातियाँ कदम और तमाल, ये दो प्रजातियाँ ऐसी हैं जो यहाँ पर अच्छी तरह उग जाती हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है जो पहले पुराने समय में थी, तो उनको भी हमने उगाया है। और हॉर्टिकल्चर विभाग तो अपना फलदार के लिए करता ही है, वहाँ से भी लिया जा सकता है और इसके लिए शासन से निर्धारित बहुत कम कीमत होती है, 7 रुपया 12 रुपया, तो पौध लेके आप रोपण कर सकते हैं
3: जी। हाँ। तो यहाँ वन विभाग के ऑफिस में ही यहाँ नर्सरी है या कहीं और ये नर्सरी है?
2: हमारे पास हमारी 5 रेंजे हैं जिसमें 9 नर्सरियाँ हैं। 9 नर्सरियों में जो सुविधाजनक जहाँ पास में मिले, जिसके घर से पास पड़ता हो वहाँ से ले सकते। सबसे बड़ी नर्सरी हमारी है बसौती नर्सरी है और गोवर्धन रेंज में है, कोसी रेंज में है, एक यहाँ मुख्यालय पे है, मुख्यालय से भी ले सकते हैं। एक छोटा कोसी नर्सरी है, माठ मिट नर्सरी है। तो जहाँ पर उपलब्धता हमारी मिट्टी अच्छी है, पानी की उपलब्धता है, वहाँ पर ज़्यादा पौधों की संख्या और बाकी जगह पर थोड़ी थोड़ी संख्या। वन विभाग वृक्षारोपण जो हमारी आरक्षित भूमि है उसमें करते हैं, ग्राम समाज की भूमि जिला प्रशासन से उपलब्ध कराई जाती है तो वहाँ से करते हैं, जो अवनत भूमि के रूप में होती है उनमें करते हैं, रोड साइड भी करते हैं। वर्तमान में NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर गोवर्धन परिक्रमा पर हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, ध्यान वहीं पर केंद्रित है और मथुरा का अधिकांश जिले का भाग TTZ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर TTZ के निर्देशों के अनुसार भी वृक्षारोपण यहाँ पर किया जा रहा है, जिसका रखरखाव भी 7 साल और 10 साल तक किया जा रहा है। हम वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत हरा वृक्ष नहीं काट सकते, कुछ प्रजातियां छूट में हैं, लेकिन मथुरा जिले में जो अधिकांश भाग TTZ क्षेत्र के अंतर्गत आता है इसमें हरा सूखा कोई भी पेड़ बिना अनुमति के नहीं काट सकते हैं। एक संकल्प सभी लोगों को लेना चाहिए इस धरती के श्रृंगार के लिए, अपनी आगामी पीढ़ियों के लिए, जिससे कि सुखमय जीवन हो सके। वृक्ष के बराबर जो भी वृक्ष हम लोगों को मानव जीवन को देता है वो अमूल्य निधि है, उसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती, जो भी आप आकलन करेंगे उससे कहीं ज्यादा परे होता है।
1: सरकार अपने स्तर से प्रयास करती है, लेकिन ये दायित्व हमारा भी है कि हम सभी को अपने स्तर से प्रयास करना होगा और इसीलिए कुछ सामाजिक संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर इसमें प्रतिभागिता कर रही हैं और अपनी तरफ से ये पूरा प्रयास कर रही हैं कि अधिक से अधिक संख्या में

0: वृक्षारोपण किया जाए। ऐसी ही एक संस्था है यमुना मिशन। यमुना मिशन के संयोजक अनिल शर्मा इस संदर्भ में हमें जानकारी दे रहे हैं।
1: यमुना किनारे जो 5.25 हजार वर्ष पूर्व हमारे विधाता इस भूमंडल पर आए थे, इस पृथ्वी पर आए थे, उस समय पर बताते हैं कि यमुना किनारे 4-5 किलोमीटर दोनों सिरों पर अत्यधिक हरियाली थी, अनेकों प्रकार के पुष्प थे, फल थे, फूल थे, जिनको कि जो बाहर से आते थे संत महात्मा जो यहाँ विश्राम करते थे, निवास करते थे, वो इन फलों को खाकर ही तृप्त हो जाया करते थे, उन्हें भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जिस दिन से यमुना जी, गंगा जी या कोई भी नदी जो पवित्र नदियां हैं, इन नदियों की सफाई आज तक नहीं हुई, लेकिन यमुना मिशन ने ये पहल की। यमुना मिशन ने वो काम अपने ऊपर लिया है और करीब 10 किलोमीटर में यमुना किनारे किनारे हम अत्यधिक वृक्ष लगा रहे हैं, जिनमें पीपल, नीम, बर, कदम, अर्जुन, बड़े बड़े जो वृक्ष है हमारे यहाँ के, जो वृक्ष की पहचान है कदम, हम उन वृक्षों को लगा रहे हैं और जल्दी ही यमुना जी को तो हम शुद्ध और पवित्र कर ही लेंगे। अगर इसी तरह हम सबको जागृत करना चाह रहे हैं, सभी लोग अगर यमुना मिशन से जुड़े या यमुना मिशन से काम करें तो निश्चय ही यमुना जी भी शुद्ध होगी, पर्यावरण भी शुद्ध होगा, गंदगी भी दूर होगी। दिल्ली के अंदर 1 साल का बच्चा 5 साल का बच्चा 1 क्लास में पढ़ने के लिए जाता है तो उसे मास्क लगाकर जाना पड़ता है। यही पुनरावृत्ति आगरा में भी होने लगी है। आगरा के भी छोटे छोटे बच्चे जो 1 क्लास और 2 क्लास में पढ़ रहे हैं, इनको भी मास्क लगा के स्कूल जाना पड़ता है। लेकिन हमारा ब्रज 3 लोक से न्यारा है, एक अलग ही ब्रज की संस्कृति है। हमारे विधाता कन्हैया का यहाँ हर समय वास है। आज मथुरा में आवश्यकता नहीं रही कि बच्चे यहाँ पर मास्क लगाकर जाएं।
2: जी।
1: एक यमुना मिशन ने और बहुत बड़ी उपलब्धि की। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस ऐसे बड़े बड़े 25 देशों के वैज्ञानिकों ने 2 साल तक रिसर्च किया कि पॉलीथिन जमी नष्ट की जा सकती है, कि सूर्य के 10,00,000 गुने तापमान पर पॉलीथिन को मट्टी बनाया जा सकता है। लेकिन यमुना मिशन ने उस कार्य को इतना सुलभ और सरल कर दिया कि मात्र हम गोबर से, उस कचरे के ऊपर हम गोबर को डाल देते हैं, गोबर के ऊपर मट्टी डाल देते हैं और मट्टी के ऊपर वृक्ष लगा देते हैं। नीचे की जो पॉलीथिन कचरा वो हमारे वृक्षों के लिए एक ईंधन बन जाता है और उस ईंधन से हमारा पेड़, 1 साल का पेड़ 3 साल का दिखाई देने लगता है। तो उस पॉलीथिन को भी यमुना मिशन ने नष्ट किया, जो कि असंभव कार्य था। 10,00,000 गुनी ताकत सूर्य की कौन दे देगा, कौन उस तापमान को झेलेगा, तो एक असंभव कार्य जो उन्होंने थिंकिंग करके निकाला, सोच निकाली, उससे बढ़िया सोच तो यमुना मिशन की रही कि मात्र हमारे गोबर से। पहले भी बुजुर्ग बताते थे कि गोबर में लक्ष्मी का वास है और जो गाय का मूत्र है उसके अंदर गंगा जी का वास है। ये वास्तव में सत्य है, जो हमारे बुजुर्ग कह गए वो बिल्कुल सत्य है और यही यथार्थ। हमने पेड़ों की बैरिकेडिंग कर रखी है, लोहे के तारों को लगाकर 3-3 तारों से उनके आगे बांस लगा रखे हैं और नित्य हमारे कार्यकर्ता, नित्य सेवक उन वृक्षों को पानी देते हैं, नराई गुड़ाई करते हैं।

0: तो श्रोताओ, अगर हमें अपने आप को और अपनी इस अरण्य संस्कृति को बचाए रखना है तो संरक्षण और संवर्धन करना होगा हमें वनों का, और इसके लिए हमें लगाने होंगे अधिक से अधिक वृक्ष, ताकि हमारी ये पावन धरा हरे भरे वृक्षों से पुनः आच्छादित हो सके।
1: वन में वृक्षों का वास रहने दे, झील झरनों में सांस रहने दे। वृक्ष होते हैं वस्त्र जंगल के, छीन मत ये लिबास रहने दे। वृक्ष पर घोंसला है चिड़िया का, तोड़ मत ये निवास रहने दे। पेड़ पौधे चिराग हैं वन के, वन में बाकी उजास रहने दे। वन विलक्षण विधा है कुदरत की, इस अमानत को खास रहने दे।

सारस्वत के थे। प्रस्तुति रही ओपी सिंह की। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

हेलो दोस्तों, एक बार फिर आ पहुंचा है शनिवार और कार्यक्रम एक ही कलाकार लेकर मैं आपकी दोस्त दीपिका हूं आपके साथ। जी हाँ, ये है वही कार्यक्रम जिसमें हम करते हैं किसी एक कलाकार के बारे में बहुत सारी बातें और मैं सुनवाती हूं आपको उनसे जुड़े हुए किस्से और गीत। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रवि कपूर की। जी हाँ, रवि कपूर, जिन्होंने अपना नाम फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ऊंचा किया। क्या हुआ, नहीं पहचाने? तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जितेंद्र जी की, जिनका वास्तविक नाम था रवि कपूर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। जितेंद्र जी का जन्म हुआ था अविभाजित पंजाब में और वर्ष रहा 1964। सात अप्रैल 1942 में जन्म हुआ था जितेंद्र जी का रवि कपूर के रूप में, और बहुत ही जल्द इनका परिवार अमृतसर से मुंबई शिफ्ट हो गया जब ये मात्र एक महीने के थे। जितेंद्र जी का जन्म जब हुआ था तब उनकी माता जी मात्र 15 वर्ष की थीं, और इसका असर ये हुआ कि आने वाले जीवन में जितेंद्र जी का अपनी माता जी के साथ एक दोस्त जैसा ही संबंध रहा। दोनों ने बहुत अच्छे पल साथ में बिताए, ऐसा जितेंद्र जी ने अपनी जीवनी में बताया है। तो दोस्तों, जितेंद्र जी जब मुंबई आ गए तो उनकी पढ़ाई का सिलसिला चालू हुआ। जितेंद्र जी की पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन उनका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन हर माता पिता की तरह उनके पिताजी अमरनाथ जी और उनकी माता जी कृष्णा जी यही चाहते थे कि उनका बच्चा भी पढ़ लिख के कुछ अच्छा करे। तो उन्होंने सेंट सेबेस्टियन गोयन हाई स्कूल में उनका एडमिशन कराया, जहां पर उनके दोस्त बने राजेश खन्ना, जो कि पढ़ाई में बहुत ही तेज तर्रार थे। और इस तरह से राजेश खन्ना के साथ में जितेंद्र जी की पढ़ाई चलती रही। इनके पिताजी का व्यापार था नकली आभूषणों का। जी हाँ, वो नकली आभूषण जो हम फिल्मों में अभिनेता और अभिनेत्रियों को पहने हुए देखते हैं, और वो फिल्म इंडस्ट्री में इन आभूषणों की सप्लाई देखा करते थे। जब जितेंद्र जी कुछ 14-15 साल के रहे, तब इनके पिताजी को हार्ट अटैक आया और उनकी तबीयत काफ़ी अस्थिर रहने लगी। ऐसी स्थिति में जितेंद्र जी के ऊपर इस कार्यभार को संभालने का जिम्मा आ गया, और उन्होंने अपने पिताजी और चाचा जी के जो व्यापार था उसमें सहयोग करना आरम्भ किया। और इस तरह से ज्वेलरी की सप्लाई के लिए उन्हें सेट पर जाना, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मिलना, ये मौका मिलने लगा। एक बार की बात है, जब फिल्म की शूटिंग देखने के लिए जितेंद्र जी को जाना था और उन्हें शूटिंग की परमिशन नहीं मिली। क्या था वो किस्सा, जरूर सुनाऊंगी। पहले सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अभिनेता जितेंद्र के विषय में। तो जितेंद्र जी, जब आर्टिफिशियल ज्वेलरी की सप्लाई के लिए सेट पर जाते थे, तो एक दिन ऐसा मौका आया जब वी शांताराम की फिल्म की शूटिंग चल रही थी और वो फिल्म थी नवरंग। जितेंद्र जी वहां पर रुककर शूटिंग देखना चाहते थे, लेकिन उनको इसकी परमिशन नहीं मिली। अब जितेंद्र जी का मन था कि जरूर शूटिंग देखनी है, तो उन्होंने अपने चाचा जी से कहा और उनके चाचा जी ने वी शांताराम के एक अभिन्न मित्र से रिक्वेस्ट की, और इसका परिणाम ये हुआ कि जितेंद्र जी को शूटिंग देखने की परमिशन मिल गई। लेकिन वी शांताराम जी ने कहा कि अगर तुम्हें शूटिंग देखनी है तो तुम्हें फिल्म में एक रोल जरूर करना पड़ेगा, और जितेंद्र जी ने हाँ कह दिया। और उस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया भी, तो इस तरह से वहां उनकी एंट्री हुई। और इसके बाद में जब उन्होंने थोड़ा आराम से सोचा, तो उन्हें लगा कि ये एक ऐसा करियर है जहां पर ना ही ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत है और ना ही जहां पर पूरी तरह से शिक्षित होने की जरूरत है, क्योंकि जितेंद्र जी का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। तो उन्होंने ये बात शांताराम जी से कही कि मैं एक्टिंग में करियर बनाना चाहता हूं। शांताराम जी ने उनकी बात को सुना और उन्हें जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर नौकरी पर रख लिया, और उनका मेहनताना था 150 रुपए प्रतिमाह। जी हाँ, 150 रुपए प्रतिमाह का मेहनताना उन्हें

देने के बाद में उन्हें फिल्मों में कई सारे छोटे मोटे रोल ऑफर किए जाने लगे। धीरे धीरे बहुत सारे रोलों को करते करते फिल्म की शूटिंग शुरू हुई जिसका नाम था सहरा। उस फिल्म में जितेंद्र जी को एक डायलॉग बोलने के लिए दिया गया। जितेंद्र जी इतना घबरा गए कि उन्होंने उस फिल्म में डायलॉग बोलने के लिए 30 टेक लिए। इसी फिल्म से

दूसरे दिन उन्होंने मेकअप करने वाले मेकअप मैन से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें रेडी कर दें, और वो बहुत ही जल्दी तैयार होके शांताराम जी के पास में पहुंचे। इस बात से शांताराम जी प्रभावित हुए और जितेंद्र जी ने दावा किया कि मैं आगे कभी भी लेट नहीं होऊंगा, और उन्होंने इस बात को आगे के फिल्मी करियर में अप्लाई भी किया और निभाया भी। इस तरह से जितेंद्र जी को छोटे मोटे रोल मिलने लगे। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, वी शांताराम जी ने जितेंद्र के अंदर अभिनेता की झलक देख ली थी और उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म में लीड रोल के लिए अप्रोच किया। उनकी पहली फिल्म जिसमें उनको लीड रोल के लिए अप्रोच किया गया वो थी गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में जितेंद्र जी का लीड रोल था, लेकिन यहां एक समस्या थी। जितेंद्र जी को बचपन से तुतलाने की आदत थी। जब वी शांताराम जी ने इस बात को नोटिस किया तो उन्होंने 15 दिन के लिए शूटिंग रोकी और जितेंद्र को बोला कि तुम जाओ और अपनी इस समस्या से निजात पा के आओ, उसके बाद ही तुम्हें फिल्म में लीड रोल दिया जाएगा। जितेंद्र जी तुरंत राजेश खन्ना जी के पास में गए, जो कि उनके बहुत ही प्यारे मित्र थे, और दोनों ने मिलकर खूब प्रैक्टिस करी, जिसका परिणाम ये हुआ कि 15 दिन के बाद में जितेंद्र जी ने अपने डायलॉग डिलीवरी में निखार लेकर आए और उसे करके दिखाया। इस तरह से उन्हें उनकी पहली फिल्म मिली गीत गाया पत्थरों ने, जो कि टिकट खिड़की पर बहुत अच्छी साबित हुई। अब समय था अपने आप को स्टार के रूप में स्थापित करने का, लेकिन ये जो स्टार के रूप में स्थापित करना था इसके लिए समय लगा 3 साल का, और फिल्म मिली फर्ज, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई और जितेंद्र को नया नाम मिला जंपिंग जैक।

तो दोस्तों, ये थी वो फिल्म जिसने जितेंद्र जी को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया और वो जंपिंग जैक के नाम से मशहूर हुए। उनका वाइट सूट और वाइट जूतों का स्टाइल बेहद फेमस हुआ और उनका डांसिंग स्टाइल भी सबसे अलग हटके रहा। इस फिल्म के बाद में जितेंद्र जी को बहुत अच्छी अच्छी फिल्में मिली। हालांकि फर्स्ट फिल्म का जो संगीत था वो बेहद फेमस हुआ और उस वर्ष ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय गीतों की फहरिस्त में शामिल भी रहा। इसके बाद में उनकी तीन फिल्में रिलीज हुई, सुहागरात, औलाद और मेरे हुजूर। तीनों ही फिल्में अच्छा काम करके गईं। इसके बाद में उनकी एक ऐसी फिल्म आई जिसका म्यूजिक बेहद पसंद किया गया और फिल्म ने भी सफलता हासिल की। फिल्म थी जीने की राह। और फिर एक के बाद एक सफल फिल्मों का सिलसिला जारी रहा। खिलौना फिल्म में उनके द्वारा निभाई गई छोटी सी भूमिका को बहुत ही सराहा गया। हमजोली फिल्म में उनके द्वारा किए गए नृत्य को बहुत पसंद किया गया और उनके जो गीत थे और उनके साथ जो अभिनेत्री थी उनकी जोड़ी को आज भी बेहद पसंद किया जाता है और प्यार से इन गीतों को सुना और देखा जाता है।

तो दोस्तों, जितेंद्र जी का करियर ऊंचाई पर था, लेकिन कहते हैं ना कि हर कलाकार के जीवन में वो समय ज़रूर आता है जब उसे करियर में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। तो उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप हो गई और यहाँ पर उनका जो वक्त था वो चल रहा था उनकी शादी से जुड़ा हुआ। तभी उन्होंने कुछ और फिल्मों में काम किया और उनकी एक बेहद अच्छी फिल्म आई जिसका नाम था बिदाई। बिदाई फिल्म जैसे ही हिट हुई उन्होंने तुरंत शोभा जी से शादी कर ली और जब उनसे इसके विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं एक फ्लॉप एक्टर के तौर पर शादी नहीं करना चाहता था, इसीलिए जैसे ही बिदाई फिल्म हिट हुई मैंने तुरंत शादी कर डाली। दोस्तों, जितेंद्र जी के किस्से बहुत सारे हैं। उनको एक ही तरह के रोल ऑफर किए जा रहे थे, लेकिन इसी बीच वो अपनी धर्मपत्नी के साथ फिल्म देखने गए आनंद। इस फिल्म में उन्हें फिल्म के डायलॉग बेहद पसंद आए और जब उन्होंने इसके बारे में तफ्तीश की तो उन्हें पता चला कि ये डायलॉग लिखे गए हैं गुलजार जी के द्वारा। उन्होंने गुलजार जी से मुलाकात तय की और एक फिल्म बनाने का विचार किया और इस तरह से गुलजार जी के साथ में उनकी फिल्मी पारी शुरू हुई। फिल्म थी परिचय। फिल्म में उनके एक्टिंग को बेहद सराहा गया। अभी तक हम जिस जितेंद्र को उछलता कूदता नाचता और नटखट रूप में देख रहे थे, इस फिल्म में उन्होंने अपने अभिनय का ऐसा लोहा मनवाया कि देखने वाले भी दंग रह गए। इस फिल्म में ना नाच थी ना कूद थी, लेकिन फिर भी एक गंभीर अभिनय था और इसके सभी गाने बेहद कर्णप्रिय थे।

दोस्तों, यूं तो जितेंद्र जी ने बहुत सारी अभिनेत्रियों के साथ काम किया, लेकिन उनकी जोड़ी को बेहद पसंद किया गया हेमा मालिनी जी के साथ में और श्रीदेवी के साथ में। श्रीदेवी को फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करने का और हिट दिलवाने का एक तरह से जो श्रेय है वो जितेंद्र को जाता है। कैसे? एक बार अपने करियर के ढलान पर आने के बाद में जितेंद्र जी किसी नई फिल्म पर विचार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में उन्हें किसी फ्रेश चेहरे की जरूरत थी। श्रीदेवी उस समय तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना पदार्पण नहीं कर पाई थी, हालांकि वो साउथ की फिल्मों में एक बहुत बड़ा नाम थी। जितेंद्र जी ने जब उनके काम को देखा तो उन्हें अपनी फिल्म के लिए अप्रोच किया। हालांकि उनके साथ के जो क्रू मेंबर थे वो इस बात से संतुष्ट नहीं थे, ना ही डायरेक्टर इस बात से संतुष्ट थे, लेकिन जितेंद्र जी ने श्रीदेवी जी में अपना भरोसा जताया और उन्हें फिल्म में कास्ट करने के लिए सभी को मना लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि श्रीदेवी जी को हिंदी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक धमाकेदार एंट्री मिली और वो फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि आज भी उसके विजुअल, उसके गीत और इन दोनों की जोड़ी को याद किया जाता है। फिल्म थी हिम्मत वाला।

तो दोस्तों, आज हमने बात की एक ही कलाकार कार्यक्रम में जितेंद्र जी के विषय में। जितेंद्र जी 84 वर्ष के हो चुके हैं और एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। हम ईश्वर से उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज के कलाकार थे अभिनेता जितेंद्र। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

उदित नारायण और सुजाता के स्वरों में अभी आपने सुना हलचल फिल्म का ये गीत। शब्द समीर के थे, संगीत दिया था विद्यासागर ने। आइए सुनते हैं हिना फिल्म में लता मंगेशकर और साथियों को। शब्द और संगीत रविंद्र जैन का है।

लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म हिना का ये गीत। गीत लिखा था रविंद्र जैन ने, संगीत भी रविंद्र जैन का ही था। और आइए अब सुनते हैं फिल्म मोहब्बतें का ये गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत जतिन ललित का है, आवाज़ें लता मंगेशकर और विनोद राठौर की हैं।

अनुराधा पोडवाल और सोनू निगम की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म ताल का ये गाना। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी, संगीत दिया था AR रहमान ने। और आइए अब सुनते हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को फिल्म वीर ज़ारा में। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत लता

कुमार सानू और चित्रा की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म विरासत का ये गीत। शब्द रचना जावेद अख्तर की थी, संगीत दिया था अनु मलिक ने। और आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और श्रेया घोषाल को फिल्म विवाह में। शब्द रचना रविंद्र जैन की, संगीत भी रविंद्र जैन का ही है।

जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म मुस्कान का ये गीत। इस गीत को लिखा था समीर ने, संगीत दिया था निखिल विनय ने, और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बात और SMS। कार्यक्रम गीत बात और SMS सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम गीत बात और SMS में ये संदेश जो हमारे पास सबसे पहले आया है वो आया है तेलीपाड़ा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हमारे श्रोता गुणवंत श्रीवास, श्रीमती करुणा, आयुष विवेक और आयुषी श्रीवास। ये संदेश ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल यादव, अनसुईया पवन राजे, छत्रपति संभाजी नगर से मंगेश इंग्लिस, संध्या स्वराज विराज। ये फरमाइश हमारे पास आई है छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामूरी, अजय देव और इनके सभी संगीत साथियों की। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं तरन तारण पंजाब से, गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शम्मी, रजनी आकाशदीप अनहद और पोत्रा गुरशबद। अगला संदेश पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा का। अगली फरमाइश हमारे पास आई है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा की। ये संदेश हमें लिख भेजा है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा।

0: कपिल, ईशान और पूजा परिहार ने। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं खंडवा से राजेश सेन, सुरेश और शुभम अक्षय। ये संदेश बुलडाणा महाराष्ट्र से समर्थ दादा देठे पाटिल, भागवत देठे पाटिल, श्रीमती लक्ष्मी पाटिल और सानिका पाटिल और इनके सभी संगी साथियों का। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ फिल्म एक फूल दो माली का ये गीत।
1: ये पर

ગાંધી પાસે નરેશ મલ્હોત્રા, નીટુ, લક્ષ મલ્હોત્રા, કોયલ મલ્હોત્રા, નાનકચંદ મલ્હોત્રા, પિયુષ સિક્કા, કોયલ ડુગ્ગુ, ભાવિકા સિક્કા કા. और अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, प्रतीक रोशनी और प्रांजल राय ने. ये संदेश हमारे पास आया है कुमार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, सानिका, अजय, करिश्मा, आविका, विशाखा का. अगली फरमाइश हमारे पास रंगोली राजनगर बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, प्रदीप कुमार नायक, राज बहादुर शाह, शंभू, रजनी, सागर बाबू, जय वीरू और जय मंत्री केवट का. यह संदेश हमें लिख भेजा है वल्डाणा से नारायण हागे, कमल, दिव्या और जय हागे ने. अगली फरमाइश हमारे पास आई है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण, सोनी, पूजा, पायल और जगदीश जौहरी की. ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता फुटानी चौक नरहन स्टेट से ललन मिश्रा, नूतन, अमन पारासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित. अगला संदेश हमें लिख भेजा है छत्तीसगढ़ से पफनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार, देविका, गजेंद्र कुमार और हियांश कुमार चंदन ने. ये संदेश हमारे पास आया है वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्तका अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और इनके सभी संगीत साथियों का. ये फरमाइश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसीतासु अर्णव आनंद और सत्यम आनंद. पश्चिम बंगाल से लिखने वाले श्रोता मुन्ना भगत और गुड्डी भगत. अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम, आदिव और इनके सभी परिवारीजनों ने. ये संदेश नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवानकर, निर्मला और विशाल नवानकर का. और ये फरमाइश तिरुपति नगर नांदोड़ा से संतोष वसाने, उषा, ऋषिकेश, अनिकेत, सागर कटक से विशाली गवली, सोनाली, समर्पण गवली और भक्ति गवली. ये संदेश गांव चौहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया का. ये संदेश लिख भेजा है शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी ने. अगली फरमाइश उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल की. ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता मलकापुर से संजय पाटिल, उषा निवृत्ति और संजय चौहान. अगला संदेश लिखने वाले श्रोता है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा. आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म आप तो ऐसे न थे का ये गीत.

कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस के लिए यह संदेश हमें लिख भेजा है छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार ने। अगला संदेश ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण, जयश्री और इनके सभी संगीत साथियों का। यह संदेश हमारे पास आया है अररिया बिहार से शगुफ्ता प्रवीण, नाजिया, नफीसा

उम्मे अबीहा और इनके सभी संगीत साथियों का। ये फरमाइश हमें लिख भेजी है दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल, किरण कपिल और कुणाल मेहरा ने। अगला संदेश हमारे पास आया है रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, कुलदीप कंवल और इनके सभी परिवारजनों का। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्री नवाज और इनके सभी परिवारजन। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं शार्दुल शहर जिला श्रीगंगानगर से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। ये संदेश हमें लिख भेजा है धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, आलिया और आयान बाबू ने। अगली फरमाइश हमारे पास आई है समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति, रोहतास बिहार से लिखने वाले श्रोता हैं सोनम सिंह और अनामिका सिंह। अगला संदेश कोयले बस्ती पुनावले से अजय सोनवने, करिश्मा अविका, साईशा और इनके सभी संगीत साथियों का। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर यह गीत। स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का है, फिल्म का नाम है इज्जत।

ये फरमाइश हमें लिख दीजिए है बुलडाणा महाराष्ट्र से समर्थ दादा पाटिल और इनके सभी संगीत साथियों ने। और अगला संदेश हमारे पास आया है तेलंगाना से कस्तूरी रामुड़ु भूमा देवी और इनके सभी परिवारीजनों का। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से। अगली फरमाइश बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव इंद्रपाल राघवेंद्र अरविंद रागिनी रिया रेनू दिव्यांशी आराधना रोनिका और इनके सभी परिवारीजनों का। ये संदेश हमें लिख भेजा है मजनू का टीला से कमल बालूजा मधु सागर सतना एमपी से उमंग मलिक आकांक्षा और माही मलिक ने। अगली फरमाइश कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी सुशील योगी बब्बू डब्बू राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी का। अगली फरमाइश लिख भेजी है हमें जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति पहलाद राजेंद्र उमेश प्रमिला बंछोर ने। अगला संदेश रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ रंजूबाई धाकड़ युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़ का। ये फरमाइश हमारे पास आई है वृंदावन चांदनी चौक गंडही पंडरिया से पवन कुमार सेन प्रभा देवी सेन लक्की विक्की नानू रवि रौनक और इनके सभी संगी साथी। ये फरमाइश मुकेश कश्यप शीतल सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक बलवीर और इनके सभी संगी साथियों की जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश लातूर से संगीता जैन सूरज जैन और पीआर जैन का। ये संदेश हमें लिख भेजा है चकला बाजार सामना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल संगीता रानी जिंदल पप्पू महक खुशदिल सुनीता रानी आरजू पप्पू खुशदिल हसमुख लाल जिंदल बुलबुल शक्ति और संजीव बंटी जिंदल और इनके सभी परिवारीजनों ने। अगला संदेश लिख भेजा है हमें कलानौर से नरेंद्र शर्मा किरण नितिन और मयंक शर्मा ने। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर कुमार सानू और एसपी बालासुब्रमण्यम का गाया हुआ यह गीत फिल्म का नाम है साजन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार हैं ब्रज बिहारी अनंत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
4: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
4: तो फिर सही नंबर,
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
4: आपने तो बचा लिया दीदी।
3: काम से नहीं।
5: RBI कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
8: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
9: आराम से मैडम।
8: क्या
9: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
10: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।

अभी आप सुन रहे थे ब्रज बिहारी अनंत से ब्रज लोक गीत। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के बालोतरा में हैं। उन्होंने बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जो

0: जोधपुर।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूएपीए अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के एसआईआर के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ अनिल मिश्रा द्वारा किए गए त्याग पत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका का कार्यक्रम साहित्य भारती। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। इन दोनों ही कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 1:15 पर बहनों का कार्यक्रम होगा घर अंगना। इसमें वार्ता प्रसारित की जाएगी दैनिक आहार में फल व सब्जियों की उपयोगिता। वार्ताकार होंगी अंजना आचार्य।

संध्या 5:35 पर युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी। इसमें आज की बात होगी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और वृक्ष लगाएं पर्यावरण बचाएं विषयों पर।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 6:15 पर। इसमें वार्ता प्रसारित की जाएगी पशुओं के परजीवी रोग, जानकारी देंगे डॉक्टर दया शंकर। साथ ही एक ओबी आधारित वेट वार्ता भी प्रसारित की जाएगी पशुपालन और टीकाकरण विषय पर। वार्ताकार होंगे डॉक्टर नरेंद्र नारायण शुक्ल, इनसे बातचीत करेंगे दीपक कुमार गोस्वामी।

प्रसाहिती कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत कथा, प्रसंग होगा भस्मासुर चरित्र, कथाकार होंगे देवीचरण शर्मा, समय होगा संध्या 7:05। संध्या 7:31 पर आप सुनेंगे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम श्याम सुहानी। रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता रात्रि 8 बजे और रात्रि 9:15 पर भी ले सकेंगे।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं संवेद स्वरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देशगान। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगना।

घर अंगना कार्यक्रम को सुनवे बारी हमारी सभी बहनान को विजयलक्ष्मी बहन की राम राम। बहनाओं कैसी हो? बढ़िया। अरे बहनाओं अब बढ़िया रहवे के दिनों आए गए हैं। क्यों? क्योंकि बहुत तेज गर्मी के बाद जब वर्षा रानी को आगमन

रहा ना, तो मन में तसल्ली भई कि अब तो मैं आएगो ही आएगो, अब कहाँ जाएगो। और जब मैं पढ़े तो मन में अपने आप ही प्रसन्नता आ जावे, ऐसो लगे जैसे खुशियन को मैं आए गयो, आनंद को मैं आए गयो जीवन में, और प्रकृति में नव कोपल खिलवे के दिना आए गए। और देखो हम सब आस लगाए के बैठे कि चार बूंद पानी पड़ेगो तो तपती झलसती जो गर्मी से हमें आराम पड़ेगा। और जैसे ही जे मैं आयो तो मन में आस जग गई, हरे पेड़ पौधे न देख भी को मन कर आयो, तो बहना क्यों ना जब वर्षा के पानी को हमू सदुपयोग करें, हमू वृक्षारोपण करें जा समय, क्योंकि जब वृक्ष लगाएंगे तो वर्षा को पानी जाएगा कहाँ, यहीं रह जाएगा और हमारे काम में आएगा। तो गांवन में पुरानी कहावत थी कि खेत को पानी खेत में और गांव को पानी गांव में, तो वही पानी हमारे फिर से काम आ जाएगा। और हम जब पानी होवे ना बहनों तो खूब काम होवे, क्योंकि तुम अपने मन में छोटी सी बात ही देख लो, काउदना चौका में पानी ना होए या नल ना आवे तो ऐसी हाय तोबा मच जावे, ऐसा लगे काम कैसे करें, और लगे सब रोई काम पानी से होना है, आंखन ने चारों तरफ घुमा घुमा के देखें और सूखे हाथ चले ना है जब तक हाथ में दो लोटा पानी झाड़ू ना हो। हम बहन तो ऐसी है गई हैं कि हम पे पानी ते काम होवे, और जल कितना महत्वपूर्ण जाबात को जाने, जले बचानो है जो हुए जाने, पर काम तो पानी से होना ही है, पर बहना हाथ संभाल के और जा समय तो वृक्षारोपण करके हम जा जल को संरक्षण कर ही सकें। और कैसे वृक्ष लगा मैं बहनाओ, फलदार रसीले है ना, और देखो औषधीय, क्योंकि जो औषधीय जो वृक्ष हों ना, जे हवा देंगे छांव देंगे संग में दवाई देंगे। अब देखो काऊ ने काऊ जमाने में नीम के पेड़ लगाए होंगे, आज वो कैसे बड़े वृक्ष हैं गए, विशाल हैं गए, तो जब झूला को समय आवे ना तो याद आवे कि देखो जी पेड़ बहुत बड़ा है, सुंदर घनो है, जा में झूला डालेंगे। बैठ पे को नंबर आवे तो लगे कि जय के नीचे बैठो, थोड़ी देर धूप में से चल के जब कोई विशाल वृक्ष हमें अपनी बाह फैला कर बिठावे है ना, तो हम सबन ने बड़ बास में दुआ दी मैं कि जाने कौन ने लगाए हुए को और हमें कितनी राहत मिल रही है। तो बहनों ऐसे वृक्ष हमारे साथ बहुत लाभदायक हूँ मैं, तो ऐसे वृक्षण को संरक्षण करें और आओ आनंद ली मैं जा सुंदर से लोकगीत को।

नींबू नारंगी अनार लटके, अब वही हमारी बहना पुष्पलता शर्मा बहन के स्वर में आनंद ले रही हती जा सुंदर से लोकगीत को। तो बहनाओ जे नींबू नारंगी अनार सबरे लटकाए दिए बहन ने, और बहना अपनी भाषा में अपने मन के भाव व्यक्त कर दिए, और जे भाव कछु ना है सिर्फ हंसी मजाक है। हमारे ब्रज में तो जे हंसी ठिठोली चारों तरफ हिली मिली भई है, और बहनाओं जई से जीवन कट जाएगो, हंस के बोल के निकल जाएगो। तो ऐसे ही हंसते बोलते चलें, और हम ब्रजवासी तो जा हंसी खुशी

0: के ही भूखी हैं और हम हर बात में त्योहार देखें। चाहे नेक मेह की चार बूंद पड़ी पर हम सोचें लाओ कचौड़ी बना लें, पकौड़ी बना लें, क्यों वर्षा आ रही है तो जाकर स्वागत करना है। पर बहनों हमें देख के काम करना है, क्योंकि वर्षा आ रही है जी तो अच्छी बात है, पर हमें अपने स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखना है। ऐसे में जो हमें भोजन लेना है वो सुपाच्य हल्को फल साग सब्जी से भरो भयो लेना है। संग में सफाई को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जहाँ मौसम में कीड़ा मकोड़ा जल्दी पनप जाए तो बिन से उपज के रहना है। खांसी जुखाम बुखार आ जावे तो इनसे उपज के रहना है। तो हमें अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए काम करना है। और भोजन कैसा लेना है, कहाँ करना है, जाए हम अंजना आचार्य बहन से जाने। तो आओ बहनों सुनो।
1: एक स्वस्थ जीवन काल व तंदुरुस्त शरीर का स्वप्न तो हम सभी संजोते हैं, परंतु इस आधुनिक युग की पुश बटन जीवन शैली के कारण हम अपने दैनिक खानपान पर न के बराबर ध्यान देते हैं और साथ ही आमंत्रित करते हैं असंख्य रोगों को। और हमारी अनियंत्रित जीवन शैली की ही देन है जंक फूड। सिर्फ बच्चों में ही नहीं अपितु वयस्कों में भी इसके प्रति बढ़ते हुए आकर्षण को अनदेखा नहीं किया जा सकता। कभी कभी हम खुद जानते हैं, हम शादी ब्याह त्योहार के समय ऊल जलूल तो खा ही लिया करते हैं और ऐसे में शरीर भारी लगने लगता है, आलस आ घेरता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है और एनर्जी लेवल भी शून्य हो जाता है। तो मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप इत्यादि बीमारियों से अपने को बचाने के लिए हमें चाहिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम। संतुलित आहार का तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बना वह आहार जो शरीर को सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व हमारी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार उचित मात्रा में प्रदान कर सकें। पौष्टिक तत्वों के आधार पर खाद्य पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है। ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ, प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ, विटामिन व खनिज लवणों से युक्त फल एवं सब्जियां। अब बात करते हैं हमारे दैनिक जीवन में फलों एवं सब्जियों की उपयोगिता की। फल एवं सब्जियां हमारे शरीर को उचित मात्रा में रेशा यानी फाइबर पहुंचाती हैं और यही रेशा हमें कई बीमारियों जैसे डायबिटीज में विशेष लाभ देता है। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का बनना और खून में जज्ब होने की रफ्तार उसके द्वारा धीमी हो जाना तथा ब्लड शुगर भी एकाएक न बढ़ना, ये इसका महत्वपूर्ण कारण है। रेशेदार सब्जियां एवं फल पानी जज्ब कर लेते हैं और फूल जाते हैं, इसे कब्ज से बचा जा सकता है। यहां मैं एक और सब्जी के गुणों के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी और वह है मशरूम। इसमें भी अन्य सब्जियों की तरह ही 90% नमी होती है। यह एक निम्न कैलोरी युक्त आहार है और प्रोटीन का प्रचुर भंडार है। इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं बल्कि एर्गेस्ट्रॉल होता है जो मानव शरीर को विटामिन डी देता है। भारतीय आहार में प्रोटीन की कम मात्रा कुपोषण को जन्म देती है, इसलिए मशरूम हमारे आहार में प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकता है। अधिक मात्रा में आंवला, संतरा, नींबू, टमाटर, मौसमी, अनानास, अमरूद आदि विटामिन सी के स्रोत हैं, जो हमारे शरीर में इसकी कमी से उत्पन्न बीमारियां जैसे बुखार, जुकाम आदि से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। सभी बच्चों, माताओं और वृद्धों को तो हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध तथा दूध से बने खाद्य पदार्थों का उचित मात्रा में सेवन नियमित रूप से करना ही चाहिए, क्योंकि यह हमारे शरीर में वृद्धि विकास के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित करता है, जो हमारी हड्डियां, खून व अन्य शारीरिक क्रियाओं को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

0: हमें अपने दैनिक खानपान में 5 से 6 ग्राम से अधिक नमक तो कदापि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आहार में सोडियम की मात्रा को नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है, जो उच्च रक्तचाप का कारण भी है। सभी माताओं से निवेदन है कि अधिक लाड़ प्यार और आलस्य को त्याग कर अपने बच्चों में संतुलित भोजन लेने की आदत को विकसित करें। अचार, चटनी, पापड़, आलू के चिप्स आदि न्यूनतम मात्रा में प्रयोग करें, जो सोडियम के बैलेंस को नष्ट करते हैं। अधिक वसा, तेल, घी, कब्ज, उच्च रक्तचाप हृदय रोग के जनक हैं। आजकल तो भारतीय वैज्ञानिकों ने लो कोलेस्ट्रॉल घी भी बना लिया है तथा लो कैलोरी वाला पनीर और मक्खन भी मिलने लगा है, जिसके फलस्वरूप खून में एलडीएल, वीएलडीएल, कुछ हद तक ट्राइग्लिसराइड्स की मात्राओं को नियंत्रित किया जा सकता है, जो हृदय रोग को जन्म देते हैं। इसलिए कोशिश करें कि दिन की शुरुआत गाय का दूध, कॉर्नफ्लेक्स, अंकुरित दालों आदि से करें। अंकुरित करने से दालें व अनाज आसानी से पच जाते हैं और गैस की भी शिकायत नहीं होती। दोपहर के भोजन में सलाद, दही, रोटी, दाल, कम तेल व ज्यादा रेशा युक्त सब्जियों को शामिल करें। जब भी आप आइसक्रीम, हलवा या गुलाब जामुन की तरफ हाथ बढ़ाएं, तो याद रखें इससे ज्यादा पौष्टिक व स्वादिष्ट ताजा रसदार सेब, अमरूद और अन्य फल होते हैं। शाम को मौसम के अनुरूप फल अथवा ताजे फलों का रस लें, जो स्वास्थ्यवर्धक होता है। रात्रि का भोजन हल्का एवं सुपाच्य लें, जिससे दाल, रोटी, सलाद आदि को शामिल करें। भोजन हमेशा समय से एवं नियमित रूप से करें। कम कैलोरी खाना, जिससे पेट भी पूरी तरह से भर जाए और शरीर को कम कैलोरी मिले। दलिया, अंकुरित दालें, पॉपकॉर्न, सलाद, फल, ये सब नेगेटिव कैलोरी डाइट कहलाते हैं। इनका सेवन भरपूर करें और स्वस्थ रहें तथा जीवन का भरपूर आनंद लें। ठीक ही तो कहा है, जान है तो जहान है। आधुनिक जंक फूड हमारे भारतीय भोजन की पौष्टिकता में कतई भरपाई नहीं कर सकता। और याद रखें, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के लिए इन बातों का भी ध्यान रखें, जैसे फलों एवं सब्जियों को, खास तौर पर हरी पत्तेदार सब्जियों को सदैव काटने से पहले धोएं। इस प्रकार वह अच्छी तरह कीटाणुओं व मिट्टी रहित हो जाएंगी एवं पौष्टिक तत्व भी संरक्षित रहेंगे। सब्जियों को जरूरत के समय तथा जहां तक संभव हो सके बड़े बड़े टुकड़ों में ही काटें, क्योंकि बारीक काटने से विटामिन व खनिज लवण ऑक्सीकरण तथा बह जाने से संरक्षित नहीं रह पाते। जो सब्जियां एवं फल जैसे खीरा, मूली, अमरूद, सेब, चीकू आदि बिना छीले प्रयोग किए जा सकते हैं, उन्हें छिलके सहित खाएं। फल, अनाजों के बाहरी छिलकों में कई विटामिन व खनिज लवण और खास तौर से डाइट्री फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, उनका यथासंभव सेवन करें। भोजन में प्रयुक्त सब्जियों को यथासंभव हो सके तो प्रेशर कुकर में कम मात्रा में पानी डालकर पकाएं, ताकि पौष्टिक तत्व नष्ट न हो पाए। खाद्य पदार्थों को तलते समय घी और तेल कम मात्रा में व अत्यधिक ताप पर नहीं रखें, क्योंकि अधिक गर्म हो जाने पर उनमें पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। उम्मीद है हम सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे एवं समाज को अपना स्वस्थ शरीर के द्वारा नई ऊर्जा प्रदान करने की कोशिश करेंगे।
1: कितनी अच्छी जानकारी अभी हमें अंजना आचार्य बहन से मिल रही होती। दैनिक आहार में फल और सब्जियों की उपयोगिता, ऐसा लग रहा हो कि बहन बताती जाए और हम सुनते जाएं, बड़ो अच्छा लग रहा हो। और बहनों देखो, हमें सब अन्य

बात को ध्यान रोज रखना है, ऐसा ना है आज सुनी तो आज रख लेंगे, पर हमें हर दिन रखना है कि हमें हल्का सुपाच्य भोजन लेना है। अगर हम गरिष्ठ तले भुने भोजन को ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो हमारा पेट कहेगा अब ना है, जबकि रोटी हमें कब चाहिए, हर दिन चाहिए। तो अगर हम लंबी आयु चाहें, प्रसन्न मन चाहें, स्वस्थ तन चाहें, तो हमें अंजना बहन की बातन को तो ध्यान में रखना ही होएगा। और बहनों देखो, जीवन में बहुत आनंद है, और जहाँ आनंद को अनुभव हम कब कर सकें, जब हम प्रसन्न होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर दिन उस समय और उन उत्सवन में भाग लेवे के ताईं हमें खुश रहना पड़ेगा, हमें तन से सक्रिय होना पड़ेगा, मन से सक्रिय होना पड़ेगा, बाकी काज है।

स्वस्थ तन जामे तो हमें अंजना बहन की बातन को तो ध्यान में रखना ही होएगो। और बहनों देखो, जीवन में बहुत आनंद है, और जहाँ आनंद को अनुभव हम कब कर सकें, जब हम प्रसन्न होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर दिन उस समय और उन उत्सवन में भाग लेवे के ताई हमें खुश रहना पड़ेगा, हमें तन से सक्रिय होना पड़ेगा, मन से सक्रिय होना पड़ेगा। बाकी काजे हल्को भोजन, सो अच्छो व्यायाम, कैसो अच्छो जो हमारे शरीर को झिल जाए। ऐसो ना है कि आज ही हम 100, 102 कितनी जो काऊ ने कह दी बहुत से ज़्यादा करके व्यायाम कसरत अपने हाथ पैर ने हिला लें और संजा को हिलू ना पाए। ऐसी कसरत नहीं, हल्को फुल्को व्यायाम जाए हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लिए, यानी कि अपने भीतर समाहित कर लिए। तो बहनाओं आओ आनंद लें अब, जब बहुत सुंदर से लोकगीत को।

बलम देखो ननदी लुटन हमें आई। अवई हमारी बहना माधुरी चतुर्वेदी बहन के स्वर में आनंद ले रही हती जब बहुत सुंदर से लोकगीत को। तो आयो ना आनंद, क्योंकि बहनाओं काऊ जगह पे हम बहन नंद है तो काऊ जगह पे हम भाभी हैं। दोनों ही भूमिकन को हम हंस के निभा में और निभा में जी हमारे समाज की सुंदर व्यथा है। और जा में हम सभी रिश्तेन में ऐसे बंधे हुए हैं जैसे माला में फूल गुंदे हुए हैं। और इन फूलन को सुंदरता महकता एक माला के धागे से बंधी हुई है। तो बहनों जो रिश्ते एक दूसरे को बांध के रखे हुए हैं, ऐसे ही बहनों देखो हमें एक दूसरे की अवश्य मदद करनी चाहिए। अगर हम काऊ के संग अच्छो ना कर सकें तो वह को खराब नहीं होने दें। कि मैं ना मृदु वचन है औषधि और कटु वचन है तीर, तो मीठे वचनन को प्रयोग तो कम से कम करें। और देखो आज विश्व सहभागिता दिवस हुए, तो आओ प्रण ले में कि हम एक दूसरे की मदद करें एक दूसरे के काम में। क्योंकि मनुष्य तन बड़ी मुश्किल से भगवान ने हमें दया है, तो अच्छे काम करें और सदैव आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। क्योंकि मनुष्य सदैव उन्नति की ओर सोचे कि हमें उन्नति मिले। और देखो बहनों उन्नति के संग संग हम अपने जीवन में आराम ऊंचा में थोड़ो प्रसन्नता ऊंचा में तो अपने कामन को शीघ्र अतिशीघ्र निपटा में। और रेडियो को आनंद लें, लोकगीतन को आनंद लें, अपने बालकन के संग हंसी खुशी अपने समय को बिताएं। और अब हमें आज्ञा दें हमारे जो घर अंगना कार्यक्रम को यहीं विराम देवे की। हमारी सभी बहनान को विजयलक्ष्मी बहन की राम राम।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर अंगना। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं तमिल भाषा पाठ।

0: आइए सुनते हैं सामुदायिक गान शिक्षा पाठ के अंतर्गत तमिल भाषा पाठ। बोल हैं देश सेवई सेवई। गीतकार हैं पेरिया स्वामी धुरान।
1: नमस्ते बच्चों, आज मैं पेरिया स्वामी धुरान का लिखा हुआ एक देशभक्ति गीत सिखाऊंगी। पहले आप गीत लिख लें।
2: देश सेवई सेयवे, சேர்ந்தெழுந்து நின்றுளோம், ஆசை எங்கள் வாழ்விலே,
3: ஆசை எங்கள் வாழ்விலே,
2: அன்னை அன்பு.

0: अब आप गाइए।
1: 1, 2, 3, 4।
0: समझ गए? अच्छा, अब हम ताल के साथ गाने के बाद स्थाई गाएंगे।
1: 1, 2, 3, 4।

0: समझ गए? अब आप गाइए जरा जोश से, देश सेवा के भाव के साथ गाइए।
1: रेडी, 1 2 3 4।

अभी आप सुन रहे थे सामुदायिक शिक्षा गान पाठ के अंतर्गत सत्तमिल भाषा पाठ। गीतकार थे पेरिया स्वामी धुरान। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल

0: क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
2: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता

0: दूसरी बनाई है उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
3: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जल स्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लिए लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

किशोर कुमार के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म गैम्बलर का ये गाना। इस गीत को लिखा था नीरज ने, संगीत दिया था SD वर्मन ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म बरसात की रात से। स्वर मोहम्मद रफी का है, बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने, संगीत दिया है रोशन ने।

आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। स्वर किशोर कुमार और आशा भोसले के थे। फिल्म का नाम था दोस्ताना। और आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी के स्वर में फिल्म घराना का ये गीत। शब्द रचना शकील बदायूनी की है, संगीत दिया है रवि ने।

शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म बॉबी का ये गीत, बोल आनंद बख्शी के थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।

महेंद्र कपूर और भूपेंद्र के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म दहलीज का ये गीत, और इस गीत के साथ ही सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। अपराह्न के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:10 पर आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय संध्या के 5:10 हो रहे हैं। हमारी आज की द्वितीय सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं नीति शुक्ला।
2: नमस्कार, मैं हूँ नीति शुक्ला और प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ में मैं आज ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाली हूँ जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। वैसे तो हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल है, लेकिन जो बात इन्हें खास बनाती है वो है इनका काम। ये जाने जाते हैं ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से। आइए, क्या है इनकी जर्नी और क्या है काम, जानते हैं खुद इन्हीं से। स्वागत करते हैं देवेंद्र सूरा जी का, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्ते बहन जी, बड़ा धन्यवाद करता हूँ मैं आकाशवाणी का, जिस तरह आकाशवाणी ने पर्यावरण के विषय को उठाया है और जन जन तक ये बात जाए
2: जी।
3: और समाज में बड़ा परिवर्तन है।
2: तो देवेंद्र जी, आप बने ट्री मैन ऑफ हरियाणा, लेकिन इसके पीछे एक लंबा सफर रहा होगा। हम उस सफर की शुरुआत की बात करेंगे कि क्या थी वो पहली घटना जिससे आपको अंदर तक झकझोरा और आपने सोचा कि इस दिशा में काम करना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए।
3: वैसे तो मैं अपनी मातृभूमि से, अपने देश से बड़ा लगाव है और उसके लिए समर्पित भाव से मेरे मन में यही था, मैं अपने देश के प्रति ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को भी शांति मिले और देश को भी लाभ मिले। शुरू में इस तरह हमारा जो बचपन था वो गाँव में या खेतों में ही बीता है।
2: अच्छा।
3: हम प्रकृति से जुड़े हुए थे, लेकिन जब हम शहर में आए सोनीपत में और बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम चंडीगढ़ पुलिस में जब मैं भर्ती हुआ।
2: अच्छा।
3: तो चंडीगढ़ पुलिस में वहाँ की हरियाली को देखा और मेरे मन में आया, जब चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, क्योंकि वहाँ बहुत ऐसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ या औषधीय पेड़ बड़ी संख्या में लगे हैं। और वहाँ से मेरा मन भी प्रभावित हुआ, जब पेड़ पौधों की वजह से, पलान की वजह से एक शहर को हरा भरा बनाया जा सकता है और जिसका पूरे देश में नाम है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं।
2: तो ये कब शुरुआत की आपने?
3: ये 2011 में मैं चंडीगढ़ में गया और वहां से बड़ा प्रभावित हुआ और उसके बाद धीरे धीरे विचार बनता गया, राष्ट्र के लिए ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को ऊर्जा मिले। और 2012 में तो इस तरह कार्य शुरू किया और 2014 में तो बिल्कुल ने मन में धारण कर लिया, प्रतिदिन पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना है, पर्यावरण के लिए ही कार्य।
2: तो अब तक कितने पेड़ लगा चुके हैं आप?
3: अब तक 2.5 लाख के लगभग हमने पेड़ ऐसे लगाए हैं जो वृक्षों का रूप ले चुके हैं।
2: अच्छा।
3: जैसे हम परिवार में एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं
2: जी,
3: एक छोटे बच्चे की सुरक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके खाने का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा, उसके पानी की व्यवस्था, उसको परिवार का एक हिस्सा मानकर उसको इस दृष्टि से गांव-गांव विचार भी बढ़ा और पेड़ भी बढ़े।
2: मेरा अगला सवाल यही था कि एक पौधा लगाना, एक सैपलिंग लगाना या बीज लगाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसकी देखभाल करना बड़ा मुश्किल है और आप हर जगह तो नहीं जा सकते हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं?
3: शुरू में जब समाज में गए तो इतना मजबूत विचार नहीं था, क्योंकि गांव-गांव गए, युवाओं को जोड़ा, गांव की चौपालों में गांव वासियों को इकट्ठा किया, तो पर्यावरण के प्रति या पेड़ पौधे प्रति बहुत कम विचार। लेकिन जब धीरे धीरे गए, उनको इनके महत्व को समझाया, तो हमने कहा देखो हमारी मुहिम चलती है बीजारोपण से वृक्षारोपण। अगर जो बच्चा अगर छोटा है बीज से जुड़ जाता है, उसको पता लग गया आम की उठली से पौधा

0: कैसे बनता है,
1: जामुन की गुठली से पौधा कैसे बनता है?
2: जब वो उसको बीज से अंकुरित पौधा उगाते हुए खुशी होगी, निश्चित तौर पर उस पौधे से जुड़ेगा और पूरा जीवन उसकी देखभाल करेगा, उसको परिवार का हिस्सा मानेगा और गांव में बड़ी संख्या में सभी को इकट्ठा करके एक मूवमेंट जन आंदोलन के रूप में कार्य।
3: किस एज ग्रुप का सबसे ज्यादा आपको सहयोग मिला या उत्साह से लगे? वृद्ध लोग थे या युवा थे, किस तरह के लोग थे?
2: वैसे तो पूरे समाज का, जनमानस का सहयोग मिला, लेकिन मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा सहयोग युवाओं का मिला।
3: अच्छा।
2: और उसमें युवाओं में हमारे युवा साथी भी थे और हमारी स्कूल की बेटियां भी, कॉलेज की बेटियां भी थी, जिन्होंने जब हम गांव-गांव गए, गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाए, तो एक समय की बात है हम एक डिवाइडर पर पेड़ लगा रहे थे, तो हमारे मन में आया क्यों ना इस बार हम पेड़ बेटियों के नाम पे लगाएंगे।
3: अच्छा।
2: और हमने 100 पीपल के पेड़ 100 बेटियों के नाम पे लगाए और उनकी सुरक्षा के लिए हमने उस पे लोहे का ट्री गार्ड लगाया।
3: अच्छा।
2: और उस पे हमने, जैसे अक्सर समाज में होता है, अगर बेटी के अगर कहते हैं भाई उसके ऊपर स्नोप लिखा जाता है तो उसमें पिता का नाम ज्यादा आता है हर जगह, लेकिन हमने एक मुहिम चलाई, युवा साथियों से चर्चा की, अगर भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है उसकी माँ का नाम, और उसमें मातृ शक्ति ने, वहाँ के जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल, सभी ने भागीदारी दिखाई, एक बड़ा विश्वास बना समाज में और वो आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, पीपल वृक्ष है, बेटी रोड है, ऐसे कहते हैं।
3: कहाँ पर है बेटी रोड? कहाँ पर है?
2: सोनीपत में है।
3: सोनीपत में। ये जर्नी आसान तो नहीं रही होगी, क्योंकि आपने सहयोग की बात की, आई एम श्योर कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे इसमें, तो वो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा?
2: समाज में अगर हम काम करते हैं, अगर हम बात करें पहले भी देश के लिए लाखों व्यक्तियों ने काम किया, और उसमें जब भी हम कोई इस तरह का समाज के लिए, देश के लिए कार्य करते हैं, उसमें निश्चित तौर पर हमें संघर्ष और बाधाएं आती हैं, लेकिन जब एक लक्ष्य स्पष्ट हो, एक नीति स्पष्ट हो, इस मातृभूमि के लिए, देश के लिए कार्य करना है, तो जब शुरू में हम समाज में वृक्षारोपण अभियान चलाया तो अक्सर लोग कहते थे अब ये काम आपका नहीं है, समाज में मानते थे ये तो जो वृक्षारोपण है, पेड़ लगाना, वो माली का ही काम है। शुरू में वो कहते थे भाई आप और कार्य करो, आप इस तरफ कहां बढ़ते जा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जब हम उस गांव में पेड़ लगाए और उस गांव में अच्छा वातावरण बना और गांव में फल लगे, किसी गांव में फूल लगे, तितलियों की संख्या बढ़ी, मधुमक्खियों की संख्या बढ़ी, तो धीरे धीरे समाज में एक विचार मजबूत होता चला गया, एक जन आंदोलन का रूप लेता चला गया, गांव गांव इस तरह के अभियान चले और तो सैकड़ों गांव इसमें जुड़े।
3: अब ये तो बात हुई लोगों के सहयोग की, लेकिन अब सवाल उठता है वर्क लाइफ बैलेंस का, क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी चंडीगढ़ पुलिस में थे, तो कैसे करते थे ये?
2: मैंने खुद पुलिस में रहते हुए देखे, इतने बड़े अनुशासन की सर्विस है और इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, IPS हैं, जो बड़े अच्छे अधिकारी हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है समाज के लिए, देश के लिए काम करने की। और ऐसे ही हमारे चंडीगढ़ पुलिस में हमारे DGP हैं, IG हैं, SSP हैं, और उनका पूरा सहयोग बना रहता हमारे ऊपर, जो भी हमारी छुट्टियां होती है, लंबी छुट्टी, या जब भी जिस तरह के हमें ड्यूटी का हम अपेक्षा करते हैं, ड्यूटी के साथ साथ समाज का, इस पर्यावरण का काम कर सके। और निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ पुलिस की जॉब में तो बड़ा आनंद रहा, बड़ा अनुभव रहा, क्योंकि पुलिस की जॉब में एक अनुशासन था और पुलिस के अधिकारियों का फुल सपोर्ट मिला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश में एक पुलिस की छवि बेहतर हुई, जिस तरह से समाज में पौधारोपण का कार्य किया, लोगों में विश्वास बढ़ा, तो इसी तरह लोगों में समाज में भी विश्वास बढ़ा, अब पुलिस वाला व्यक्ति भी इस तरह समाज में पर्यावरण के लिए, इस धरती माँ के लिए कार्य कर सकता है।
3: आपने नाम भी रोशन किया, क्योंकि आपका नाम अब GK के सवालों में भी पूछा जाता है कि ट्री मैन ऑफ हरियाणा कौन है, और जवाब में आपका नाम आता है, तो आपके डिपार्टमेंट का रिएक्शन कैसा होता है?
2: मैं कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जीव जंतु के लिए, इस पूरे देश के लिए सबसे जो जरूरी है पर्यावरण का विषय है, और ऐसा विषय अगर पूरे समाज में, पूरे देश में अगर चंडीगढ़ पुलिस का नाम होता है तो पूरा गर्व महसूस होता है चंडीगढ़ पूरी पुलिस को, पूरे कर्मचारियों को, सीनियर अधिकारियों को, और पूरा हौसला बढ़ाते हैं।
3: अच्छा, एक चीज हमने सुनी है कि आप अपनी पूरी पूरी सैलरी लगा देते हैं इस अभियान के लिए, और कई बार आपने लोन भी लिया है, तो क्या वो एक अनुभव रहता है, घर में कभी विरोध नहीं हुआ?
2: जब हम पूरी पूरी सैलरी इस पे लगा देते हैं, और कई बार ऐसा होता है ज्यादा वृक्षारोपण के या नर्सरी खोलने की बात होती है तो उसमें लोन लेना पड़ता है, क्योंकि लोन से एकदम तुरंत पैसा मिल जाता है, तो शुरू में घर में, परिवार में तो विरोध हुआ, क्योंकि परिवार में अक्सर क्या होता है, ज्यादातर समाज यही अपेक्षा करता परिवार वाले, एक हमारी बड़ी गाड़ी हो, एक बंगला हो, और भी सुविधाएं बढ़े, और भी संपत्ति बढ़े, लेकिन मेरा विचार ये था कि हमारा पर्यावरण बढ़े, जब हवा ही सांस लेने योग्य नहीं रहेगी, तो मैं मानता हूँ जो ये भौतिक चीजें जो हम बढ़ाते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत छोटी हैं, हमारे परिवार में भी, रिश्तेदारी में भी, समाज में भी ऐसा बहुत शुरुआत में विरोध हुआ कि ये इतना आप इस तरफ बढ़ते जा रहे हो और

0: समाज जो है एक दिशा जो समाज में चाहते हैं लोग भौतिक संसाधन वो बढ़ाएं, समाज में बड़ी दिक्कत आई, परिवार में बड़ी दिक्कत आई, लेकिन धीरे धीरे जब विचार मजबूत हुआ उन्होंने पता चला जिस तरह से प्रकृति एक मनुष्य भी एक जीव है, अगर हम पर्यावरण के अनुकूल हम नहीं रहेंगे, अपनी जीवन शैली नहीं रखेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, जितना व्यक्ति का इस धरती पर महत्व है उतना ही एक मधुमक्खी का, उतना ही एक तितली का, उतना ही मोर का, मैं ये कहता हूँ हर जीव जंतु का उतना महत्व है। तो धीरे धीरे विचार बना और पूरा परिवार आज इस अभियान में बड़ा सहयोग करता है।
1: जब आपने ये शुरू किया था अभियान तो कभी लगा था कि ये इतना बड़ा अभियान बन जाएगा?
0: नहीं, मैं जब गांव से 1995 में आया और गांव में ज्यादा खेतों में जाते थे दादाजी के साथ और स्कूल में कम रुचि थी, लेकिन गांव से निकल के आए और शहर में पढ़े, मैं कहता हूँ स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हम बहुत से समाज में जो हमारे सीनियर होते हैं या जागरूक लोग होते हैं उनसे मिले और उनसे सीखने को मिला, और धीरे धीरे मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, गांव जैसे आज कई हजार युवा साथी जुड़े हैं, प्रत्येक गांव में ऐसा मतलब ऐसा महसूस होता है ये गांव भी हमारा है, ये गांव भी हमारा, मतलब पूरा समाज अपना परिवार लगता है। तो इस तरह से गांव गांव गए और आज कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन नेक नीति जब व्यक्ति की स्पष्ट होती है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, आज महसूस होता है प्रत्येक गांव अपना परिवार की तरह है और पूरा देश अपना एक मातृभूमि अपना एक परिवार की तरह है, और आज बड़ा गर्व महसूस होता है क्योंकि आज एक विचार है, प्रत्येक गांव से युवा जुड़े हैं, मातृशक्ति जुड़ी है, और मैं बात करता हूं मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती है जब मैं गांव में जाता हूं क्योंकि लोग इकट्ठा होते हैं और वो सोचते हैं, गांव पर व्यक्तियों का नहीं होता, गांव समस्त जीव जंतुओं का, एक अच्छे तालाब का, सभी से मिलकर गांव बनते हैं।
1: आपने जीव जंतु की बात की तो आजकल हमने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं इसी के चलते कि उनके पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की नहीं है, तो उनके लिए किस तरह के पेड़ आप लगा रहे हैं कि उन्हें भी प्रॉपर हैबिटेट मिले और खाना मिले?
0: बहुत सी प्रजातियां आज विलुप्त हो रही है और मैं मानता हूं इसके ऊपर बड़ा गहरा हमने काम किया है। जैसे आपने देखा होगा विश्व में कोरोना जैसी महामारी आई और पूरे संसार को, जिसने प्रत्येक मनुष्य की मन को विचार को हिला दिया, समाज में जैसे लंबे समय से वृक्षारोपण अभियान चला रहे, लेकिन हम ये मानते हैं जब लोगों का कोरोना काल में प्रकृति के प्रति बड़ा झुकाव था और हमने देखा कि हर गांव में पहले वन क्षेत्र होते थे, बनी होती थी और आपने कहा विलुप्त होती प्रजातियां, तो उन बनियों में वे ऐसे आश्रय थे जहां पर मुख्य जीव जंतु जैसे नेवला है, तीतर है, गिलहरी है, मोर है, बहुत से सैकड़ों जीव जंतु उसमें रहते थे, वो उनका एक गांव था और उसमें गांव वासियों का एक विचार बना, युवा साथियों से विचार किया, हर गांव में ऑक्सीजन बाग लगाना है। आपने आम के बाग सुने, आपने बेर के बाग सुने, लेकिन जब ऑक्सीजन शब्द का प्रयोग आया गांव वासियों का झुकाव बना और हजारों की संख्या में गांव वासी माताएं बहने युवा साथी एक बढ़ चढ़ कर भाग लिया और गांव गांव इस तरह से 10 एकड़ में 20 एकड़ में वृक्षारोपण अभियान चले और हरियाणा के 27 गांव में इस तरह के अभियान चले और एक जन आंदोलन का रूप लिया। गांव गांव ऐसा प्रयास है हर गांव में इस तरह के ऑक्सीजन बाग लगाए जाए।
1: तो अब तक कितने गांव में आप लगा चुके हैं ऑक्सीजन बाग?
0: अब तक 27 गांव में ऑक्सीजन बाग लगाए हैं और उसके अतिरिक्त जैसे बहुत से गांव में जैसे शमशान भूमि है या किसी तालाब के पास है या स्कूल के पास है मतलब या स्टेडियम है, मतलब ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं ऑक्सीजन बाग में जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। आजकल प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे पत्तों की पतल प्रयोग होती थी, उसके लिए ढाक के पेड़ का प्रयोग होता था, हम ढाक के पेड़ को बढ़ा रहे हैं, ऐसे पेड़ को बढ़ा रहे हैं जिससे या तो जीव जंतुओं को आश्रय मिलता है या ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, मतलब धीरे धीरे उन औषधीय वनस्पतियों को भी बढ़ाया जा रहा है।
1: तो आपका फेवरेट पेड़ कौन सा बन गया है क्योंकि जिसकी ज्यादा बहुत ज्यादा देखरेख ना करनी पड़ी हो, बस लगा दिया और वो अपने आप फल जाता हो?
0: वैसे तो सभी वनस्पतियों का इस धरती पे महत्व है, लेकिन मेरा झुकाव बरगद के पेड़ पे, राष्ट्रीय पेड़ है और एक ही पेड़ मैं कहता हूँ इसमें हजारों जीव जंतुओं का आश्रय बनता है।
1: अगर एक आम इंसान भी हमारी बातचीत सुन के उसे भी लगे कि हमें भी पेड़ लगाना चाहिए तो वो क्या करे सबसे पहले?
0: अगर आम इंसान भी आकाशवाणी की बात को सुन के और जन जन का विचार बने हमारे को भी पेड़ लगाना है, तो सबसे बड़ी बात है उसका विचार बन गया, पेड़ लगाना ये बहुत बड़ी बात है, और उसको सबसे पहले अपने ऐसी आदत डाले जैसे घरों में छोटी छोटी नर्सरियां बनाए, जैसे अभी हम आम खाते हैं, आम की गुठली से अपने गमलों में पौधा तैयार करे या जामुन की गुठली से पौधा तैयार करे, नीम से पौधा, जो भी घरों में फल प्रयोग करते हैं उसे पौधे तैयार करे और एक छोटी ही घर में ही नर्सरी बनाए, जब उसके पौधे 2-3 फीट के हो जाए तो कहीं भी नजदीक कोई पार्क है या कहीं उसके खेत में है, जहां भी संभव हो उन पेड़ों को लगाए और परिवार का हिस्सा माने और हो सके तो अपने जो भी घर में सदस्य है उनके जन्मदिन पर ऐसा प्रयास करे तो समाज

0: बाद में एक बड़ा परिवर्तन
1: बहुत
0: आएगा।
1: अच्छा।
0: पार्कों में वृक्षारोपण कर सकते हैं, अपने घरों में, और नहीं तो ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन देने वाले इंडोर प्लांट लगा सकते हैं जन्मदिन पर, जैसे एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, पीस लिली है, या घर में छोटे पौधे एलोवेरा है, तुलसी है, अश्वगंधा है, ऐसे पौधे हम घरों में जन्मदिन पर लगा सकते हैं। और गांव वासियों के लिए कहता हूं, जो अपने गांव में गोचर भूमि होती है, पंचायत भूमि होती है, उसमें खुले तौर पर बड़ी बड़ी भूमियां होती हैं, और खासकर एनसीआर के आसपास में बात करूं तो बहुत ज्यादा संख्या में हर गांव में भूमि है, और पंचायत या गोचरण भूमि में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा सकता है।
1: अवेयरनेस का कितना महत्व है इसमें, और सोशल मीडिया के जरिए इसे किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं?
0: अवेयरनेस का ये सबसे बड़ा महत्व, मैं अपना अनुभव साझा करता हूं आपके साथ, क्योंकि 10-12 साल पहले जब हम वृक्षारोपण करते थे तो उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी। हम गांव-गांव जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, अगर 10 लोगों को इकट्ठा करना था उसके लिए भी कई बार प्रयास करने पड़ते थे। लेकिन मैं कहता हूं सबसे बड़ी अवेयरनेस, धीरे धीरे लोगों का विचार बढ़ा और आज सम्मान से महसूस करते हैं, पेड़ लगाना बड़ा अच्छा कार्य है। और आज जब भी ऑक्सीजन बाग लगाया जाता है किसी गांव में, तो वहां पर उस गांव के हजारों व्यक्ति, माताएं, बहने, बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, भंडारा लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। एक जैसे घर में त्यौहार होता है या शादी वगैरह होती है, इस तरह गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। तो मैं ये मानता हूं विचार के माध्यम से, ये एक संख्या तौर पर वृक्षारोपण हुआ है, लेकिन विचार के माध्यम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन आया और बड़ा जन आंदोलन का रूप।
1: नेटिव प्लांट का कितना महत्व है, अगर हम पेड़ लगाने के लिए जाएं तो कौन से ऐसे नेटिव प्लांट हैं आप उनका सुझाव देंगे कि ये लगाने चाहिए?
0: जहां हम रहते हैं वहां के जो स्थानीय प्रजातियां पेड़ पौधों की, वो ज्यादा लगाएं। जैसे अगर अपने एनसीआर की या हरियाणा की बात या दिल्ली की बात करें, तो इसमें एक बेरी का पेड़ है, या नीम का पेड़ है, या जाटी का पेड़ है, मतलब जो बड़ा प्राचीन पेड़ है, तो ऐसे बरगद है, पीपल है, मतलब उन पेड़ों को बढ़ाएं जो आसानी से उस भूमि में चल सके, उसके जलवायु के अनुकूल उनका पालन पोषण कम करना पड़े और विशाल रूप ले सके, वो भी खुश रहें और ऑक्सीजन भी खुश होके दे सके।
1: पॉलिथिन से किस तरह का नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को?
0: आज से अगर हम 30 साल पहले की बात करते हैं, किसी गांव में जाते हैं, गांव में कोई भी पॉलिथिन नहीं थी। अक्सर हमारे बुजुर्ग हैं, वो कोई भी दाल, चीनी या सब्जी लेनी होती थी, वो अक्सर पुराने कपड़े और थैलों का प्रयोग करते थे। और मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता हूं, साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला।
1: क्या बात है।
0: तो देखो ये पर्सनालिटी के ऊपर है, व्यक्ति दो तरह की पर्सनालिटी है, एक इंटरनल पर्सनालिटी, एक एक्सटर्नल। वो हमारे ऊपर हम कैसा जीवन जीते हैं। मैं खुले दिल से थैले का प्रयोग करता हूं, कोई भी सामान लेता हूं इसमें डालता हूं। प्रतिदिन एक घर में कम से कम आप लगाओ 5 पॉलीथिन आती है, और महीने की 150 हुई तो साल की हजारों पॉलीथिन हो गई। और धीरे धीरे अगर इसको हम कम करें, मैं जोर दूंगा कम से कम पॉलीथिन का प्रयोग करें, तो धीरे धीरे जब पॉलीथिन कम होगी, गांव अगर गंदा है तो पॉलीथिन की वजह से गंदा है, शहर अगर गंदे हैं तो पॉलीथिन की वजह से गंदे हैं, और कहीं ना कहीं हम जो ये प्रदूषण के गुलामी महसूस करते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन है, पॉलीथिन को जितना कम से कम प्रयोग हो, अपना जीवन में पॉलीथिन का कम प्रयोग करें, दोबारा से कपड़े के थैलों का प्रयोग करें, जूट के थैलों का प्रयोग करें, और कहीं ना कहीं इस धरती माता को कुछ दे सकते हैं तो पॉलीथिन को कम करके दे सकते।
1: तो अगर कोई पेड़ नहीं भी लगा पा रहा है और उसकी सेवा नहीं कर रहा है, तो कम से कम वो पॉल्यूशन जो करने वाली चीजें वो कम इस्तेमाल करे, तो काफी बदलाव आ सकता है।
0: सबसे बड़ा मैं परिवर्तन मानता हूँ, व्यक्ति अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करे। वो जीवन शैली में व्यक्ति अगर 4 जोड़ी कपड़े डालता है, तो निश्चित तौर पर उस कपड़े को बनने के लिए कितना पानी वेस्ट होता है, भारी मात्रा में, मतलब पानी की वेस्टेज होती है। इसलिए अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जीने का प्रयास करें। जैसे समय हो आपके पास तो पैदल चले या साइकिल का प्रयोग करें, कम से कम कपड़ों का प्रयोग करें, साधारण जीवन शैली अपनाए, मतलब पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली ही अपनाएं।
1: अगर हर नागरिक एक पेड़ लगाए, ज्यादा नहीं सिर्फ एक पेड़ अपने जीवन में लगाए, तो कैसा बदलाव आ सकता है?
0: पूरे विश्व में बात करें तो ऐसे देश भी है जिसमें 8-9 हजार प्रति व्यक्ति पेड़ है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो 28 पेड़ प्रति व्यक्ति है। लेकिन समाज की बात करें, लोगों में बहुत कम जागरूकता है पेड़ लगाना चाहिए। मैं कहता हूं अगर व्यक्ति का यही एक जागरूकता उसके अंदर आ गई है कि मैं एक पेड़ लगाना, वो एक पेड़ से नहीं रुकेगा। एक बार वो पेड़ से जुड़ गया, उसने उस पेड़ को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया, तो निश्चित तौर पर हर साल वो किसी न किसी उत्सव, जन्मदिन पर पेड़ लगाएगा। और सरकारें भी ऐसा करती हैं, हरियाणा में स्कीम चली है, जैसे किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिन किसानों के खेतों में पेड़ है, जैसे पुराने पेड़ है, पीपल है, जाटी है, नीम है, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जिनके बड़े पेड़ हैं, या गांव में पंचायत को मिलती है या जिसके खेत में है जगह में उसको मिलती है। हरियाणा मात्र ऐसा प्रदेश है जहां पेड़ों को भी पेंशन मिलती है।
1: तो इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा पेड़ लगाने के लिए। और अगर हर बच्चे के जन्म पे एक पेड़ लगा दिया जाए तो मुझे

0: लगता है कि ये काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
1: हाँ देखो, अगर परिवार में चार सदस्य हैं तो चार पेड़ लगाएंगे, धीरे धीरे समाज में एक जागरूकता बढ़ती जाएगी। और जन्मदिन ही ऐसा एक उत्सव है जो हर वर्ष आता है, हर व्यक्ति का आता है। और जन्मदिन पर हर व्यक्ति चाहता है वो कुछ ऐसा करे जो इस धरती पर आया है उसका मन भी खुश हो, वो इस प्रकृति को भी कुछ दे सके। और मैं कहता हूं, अगर आप वाली बात है, अगर जन्मदिन पर व्यक्ति में जागरूकता आती हो, पेड़ लगाता, निश्चित तौर पर इस देश में जो पर्यावरण की समस्या है, पेड़ों की समस्या है, उसका हल एक जन्मदिन पर पौधारोपण से ही पूरे देश में एक जन आंदोलन का रूप बन सकता है।
0: आपने कोई नर्सरी की भी शुरुआत की है क्या, जहाँ से आप बीज या सैपलिंग्स लोगों को देते हैं?
1: हाँ, ऐसा एक जनता नर्सरी बनाई है, उसका नाम भी इसलिए रखा जनता नर्सरी क्योंकि जनता ही नर्सरी है। उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं और उसमें ऐसे पेड़ ज्यादा दिए जाते हैं जैसे बरगद, पीपल, नीम या फलदार जामुन, अमरूद, बेलपत्र, मतलब ऐसे वृक्ष दिए जाते हैं जो सामान्य तौर पर समाज में जागरूकता भी बढ़े और पर्यावरण के लिए भी अच्छे रहे।
0: इतने सालों में कभी आपको ये नहीं हुआ कि भाई बस बहुत हो गया, मैंने बहुत पेड़ लगा लिए, बाकी लोग भी कुछ करें, ऐसा विचार कभी आया मन में?
1: विचार ऐसा आता है कि परमात्मा मेरे को और ज्यादा पहले से ही जागरूक करता, मैं जो ये पेड़ लगाने का कार्य है, ये धरती का जो प्रकृति का कार्य है, ये मैं और पहले से शुरू कर पाता। अभी मन कहता है ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
0: अब कुछ सवाल हमने रैपिड फायर के लिए आपके लिए रखे हैं, तो आपका पसंदीदा पेड़ कौन सा है?
1: मेरा पसंदीदा पेड़ बरगद का पेड़ है, राष्ट्रीय वृक्ष।
0: पर्यावरण को सेफ रखने के लिए कोई एक आदत जो हर भारतीय को अपनानी चाहिए?
1: पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना चाहिए।
0: और अगले 10 सालों में अपनी इस मुहिम को आप कहाँ देखने का सपना देखते हैं?
1: अगले 10 सालों में यही सपना देखते हैं कि जनमानस में ये मुहिम बढ़े और हर गांव में दोबारा से, जैसे पहले गांव थे, तितलियां, मधुमक्खियां, और दोबारा से पक्षियां उड़े और गांव जैसे पहले थे वैसे गांव बने और वनस्पतियां बढ़े, पक्षियों की जो लुप्त होती प्रजाति जैसे गिद्ध है वो दोबारा से लौटे, उनका घर है।
0: एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि आप किस तरह से ये काउंट रखते हैं कि इतने पेड़ लगाए, जैसे शुरू में आपने कहा कि लगभग 2.5 लाख पेड़ आप लगा चुके, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जितने सैपलिंग्स लगाएं वो वृक्ष में तब्दील हों, तो किस तरह से आप ये काउंट करते हैं?
1: ज्यादा करे जैसे हम ऑक्सीजन बाग लगाते हैं और उसमें पहले से ही होता है, इसमें आज इस गांव में 1100 पेड़ लगेंगे या 5000 पेड़ लगेंगे, और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाता है, गांववासी को जोड़ा जाता है, किस माता का ये पेड़ है, इस बच्चे का ये पेड़ है, और उसको पूरे गांव को उसको जोड़कर उसकी सुरक्षा भी की जाती है, ऑक्सीजन बाग की, और पानी की व्यवस्था भी की जाती है। और उसमें ऐसा होता है एक दो पेड़ की दिक्कत हो सकती है, नहीं तो उसमें मैं कहता हूं 99% पेड़ कामयाब होते हैं। जब हम जुड़ाव एक बच्चे जैसे बच्चा परिवार में होता है, जब पेड़ को भी परिवार का हिस्सा मानते हैं और उसकी देख रेख करते हैं, उसमें कामयाबी निश्चित तौर पर 100% मिलती है।
0: किन लोगों से आपको प्रेरणा मिली इस काम को करने की?
1: वैसे तो सबसे बड़ी प्रेरणा मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है और इस धरती माँ से बड़ी प्रेरणा मिलती है, लेकिन मैं बात करूं पूरे विश्व में, 1730 में माँ अमृता देवी ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया, उनकी प्रेरणा से उनकी तीनों बेटियों ने बलिदान दिया और उनके बलिदान से उस आसपास के गांव के 363 व्यक्तियों ने पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में बलिदान दिया। मुझे याद आती है माता सालूमरदा थी मक्का, कर्नाटक से हैं, जो वो अभी उनका दाह संस्कार हुआ, 114 साल की हुई थी, मैं गया था वहां उनसे मिलने के लिए और उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने बरगद के पेड़ों को अपना संतान के रूप में माना और कोयले की खान में वो काम करती थी, उनका एक झोपड़ी में रहती थी, मैं देखा उनका जो कार्य था इस प्रकृति के माँ के लिए, पेड़ों को बच्चों के रूप में मान के कार्य किया, मतलब ऐसे लोगों से मेरे को बड़े प्रेरणा मिलती है।
0: हमें आपसे ये बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और अगर हमारी ये बातचीत सुन के किसी को भी ये लगा हो कि उनको भी अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी बातचीत है बहुत सार्थक रहेगी।
1: मेरे को बड़ी ऊर्जा मिली, ये जो आकाशवाणी के माध्यम से ये विचार आकाश में गूंजेगा और जनमानस में इसका विस्तार होगा, तो जनमानस में जब कोई विचार बढ़ता तो समाज में, पूरे देश में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो मैं तो आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, इस विषय को उठाया है जो सबसे जरूरी विषय है, मनुष्य ही नहीं प्रत्येक जीव जंतु के लिए जरूरी है, तो मैं आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ।
0: और भारत के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: भारत के नागरिकों को यही संदेश देना चाहूंगा, अगर वो अपने आप को भारत का नागरिक मानते ही हैं, तो सबसे बड़ा है कि वो अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जिए।

0: कम से कम ज्यादा नहीं तो साल में एक बार अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण अभियान चलाएं, अपने परिवार को जोड़ें और पेड़ों को भी अपने परिवार का हिस्सा माने।
1: तो आपने इतनी अच्छी बातचीत की भाई, मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा है कि मुझे भी पेड़ लगाना चाहिए, और मुझे लग रहा है हमारी बातचीत सुन करके लोगों को भी लगेगा। अगर ये कुछ लोगों के मन में भी ये बात आ गई ना, तो हमारी आज की ये बातचीत बहुत सार्थक रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच।
0: धन्यवाद बहन जी।
1: तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे लगता है कि अब आप भी एक पेड़ तो जीवन में जरूर लगाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नीति शुक्ला को नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast@airnews.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हमने किया दिल्ली केंद्र से, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए अब सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुन रहे सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कुछ रिश्ते लहजों से नहीं खामोशियों से बनते हैं, कुछ एहसास शब्दों में नहीं नज़रों से पनपते हैं। कुछ लोग जिंदगी में यूं आते हैं जैसे सूखी धरती पर बारिश, न वादा न इरादा न कोई शर्त, फिर भी दिल से दिल तक पहुंचते हैं। वक्त के साथ अगर साथ न भी रहे, यादों में तो हमेशा रहते हैं। कुछ रिश्ते किस्मत से नहीं मिलते, दिल की दुआओं से मिलते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज मैं हूं आपके साथ खुशबू। साथियों, हम प्रतिदिन आज की बात के कार्यक्रम में हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज कुछ ना कुछ नई जानकारी। आज हम बात करेंगे गुलजारी लाल नंदा के विषय में। जी हाँ, आज उनकी जयंती हम मना रहे हैं। 4 जुलाई 1898 एक भारतीय राजनीतिक वो थे। और बात करें दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 1966 में वो पुनः कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल दोनों बार उसी समय तक सीमित रहा जब तक कि कांग्रेस पार्टी ने अपने नए नेता का चयन नहीं कर लिया। वे नंदा जी के रूप में विख्यात थे।

गुलजारी लाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1998 को सियालकोट में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान है। इनके पिता का नाम बुलाकी राम नंदा और माता का नाम श्रीमती ईश्वर देवी नंदा था। नंदा की प्राथमिक शिक्षा सियालकोट में ही संपन्न हुई। इसके बाद उन्होंने लाहौर के फोर मैन क्रिश्चियन कॉलेज तथा इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उन्होंने कला संकाय में बीए

और कानून की उपाधि प्राप्त की। इनका विवाह 1916 में 18 वर्ष की उम्र में ही लक्ष्मी देवी के साथ संपन्न हो गया। गुलजारी लाल नंदा का भारत के स्वाधीनता संग्राम में योगदान रहा। नंदा जी का जीवन शुरू से ही राष्ट्र के लिए समर्पित था। 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। नंदा जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने मुंबई के नेशनल कॉलेज में अर्थशास्त्र के विख्याता के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करी। अहमदाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये लेबर एसोसिएशन के सचिव भी रहे और 1922 से 1946 तक

जी का जीवन शुरू से ही राष्ट्र के लिए समर्पित था। 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। नंदा जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने मुंबई के नेशनल कॉलेज में अर्थशास्त्र के विख्याता के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करी। अहमदाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये लेबर एसोसिएशन के सचिव भी रहे और 1922 से 1946 तक का लंबा समय इन्होंने इस पद पर गुजारा। ये श्रमिकों की समस्याओं को लेकर सदैव जागरूक रहे और उनका निदान करने का प्रयास करते रहे। 1932 में सत्याग्रह आंदोलन के दौरान और 1942 से लेकर 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्हें जेल भी जाना पड़ा।

नंदा जी दीर्घायु हुए और 100 वर्ष की अवस्था में इनका निधन 15 जनवरी 1998 को हुआ। इन्हें एक स्वच्छ छवि वाले गांधीवादी राजनेता के रूप में सदैव याद रखा जाएगा। साथियों, ये तो बात रही हमारी गुलजारी लाल नंदा के विषय में, और आइए अब आपको सुनवाते हैं खूबसूरत सी गजल।

साथियों, आपने ये खूबसूरत सी गज़ल सुनी और अब बात करते हैं हमारी दूसरी चर्चा की तरफ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम कोई काम अकेले करते हैं तो वो इतना खूबसूरत नहीं होता जितने कि सभी लोग अगर साथ में उस काम के भागीदार बने। हाथों में जब हाथ हो हर सपना साकार होता है। सहकारिता के संग ही विकास का विस्तार होता है। मिलजुल कर जो आगे बढ़े वही समाज महान कहलाता है। एकता, विश्वास और सहयोग से भारत मुस्कुराता है।

जी हाँ साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को सहकारिता यानी कि कोऑपरेशन की भावना का महत्व समझाना और ये बताना कि मिलजुल कर काम करने से समाज और देश का विकास अधिक तेजी से होता है। अब बात करते हैं कि सहकारिता क्या है। जैसा कि अभी हमने बताया, सहकारिता यानी कि सबका साथ और सबका विकास। जब कई लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और आर्थिक, सामाजिक और इसके साथ ही सांस्कृतिक प्रगति के लिए स्वेच्छा से एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उसे सहकारिता कहा जाता है। किसान, दुग्ध उत्पादक, मजदूर महिलाएं और छोटे व्यापारी सहकारी समितियों के माध्यम से अपनी आय और जीवन स्तर को बेहतर बनाते हैं। अब बात करते हैं इस दिवस को हम मनाते कैसे हैं। इस अवसर पर विभिन्न सहकारी संस्थाओं द्वारा दोस्तों जागरूकता कार्यक्रम, संगोष्ठियां, रैलियां, सम्मान समारोह और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोगों को सहकारी समितियों से जुड़ने और सामूहिक प्रयासों के लाभों के बारे में जानकारी दी जाती है। सहकारिता रोजगार के अवसर को बढ़ाती है, गरीबी कम करने में मदद करती है, महिलाओं को सशक्त बनाती है, किसानों को उचित मूल्य दिलाती है और समाज में समानता और भाईचारे की भावना को मजबूत करती है। यही कारण है कि सहकारिता को सतत विकास और आत्मनिर्भर समाज की मजबूत नींव माना जाता है। मिलकर चलें तो राह भी आसान हो जाती है। सहकारिता से हर मुश्किल आसान हो जाती है। एकता की ताकत से बदलता है हर दौर। साथ मिलकर बढ़े, यही सफलता का है शोर।

स्टार्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है

0: या जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: साथियों, पेड़ है तो जीवन है, पेड़ है तो भविष्य भी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रकृति ने हमें अनेक अनमोल उपहार दिए हैं, जिनमें वृक्ष सबसे महत्वपूर्ण है। वृक्ष हमें प्राण वायु प्रदान करते हैं, वातावरण को शुद्ध रखते हैं, वर्षा के चक्र को संतुलित करते हैं, मिट्टी का कटाव रोकते हैं और असंख्य जीव जंतुओं को आश्रय भी देते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि वृक्ष केवल पेड़ नहीं बल्कि जीवन का आधार है। आज बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और अंधाधुंध कटाई के कारण जंगल तेजी से समाप्त हो रहे हैं। इसका परिणाम जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, सूखा, बाढ़, प्रदूषण और अनेक प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हमारे सामने है। यदि समय रहते हमने वृक्षों का संरक्षण नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और स्वस्थ वातावरण मिलना कठिन हो जाएगा। पर्यावरण की रक्षा केवल सरकारों का काम नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। हम अपने जन्मदिन, विवाह

वर्षगांठ, राष्ट्रीय पर्व या किसी भी विशेष अवसर पर पौधा लगाकर उसकी नियमित देखभाल करके प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा सकते हैं। पेड़ों की हरियाली में जीवन का सार छिपा है, इनकी ठंडी छाओं में खुशियों का संसार बसा है। आओ मिलकर शपथ उठाएं, हर आंगन को हरियाली से सजाएं, वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही युववाणी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। खुश रहें, स्वस्थ रहें और सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें देते रहें। इसी के साथ आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सांगद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का लोकार्पण किया। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिकी विनिर्माण यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये देश का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है।
1: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण का केंद्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। भारत का समय पर लिए गए निर्णय, प्रभावशाली रणनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन ने देश को इस संकट पर काबू पाने योग्य बनाया है।
2: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरी को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी

0: दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

रात 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती और रात 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अनुप्रसारित करेंगे दिल्ली केंद्र से।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आपके लिए लेकर हाजिर होंगे शाम 6:15 पर। आज इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे पशुपालन के लिए चारा देने वाले वृक्षों का महत्व और बरसात में पशु प्रबंध। इसी कार्यक्रम में आप एक वार्ता सुनेंगे पशुओं में परजीवी रोग, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर दया शंकर। इसी कार्यक्रम में ओबी आधारित एक भेंट वार्ता हम आपको सुनवाएंगे, विषय रहेगा पशुपालन और टीकाकरण, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर नरेंद्र नारायण शुक्ल और इनसे बातचीत करेंगे दीपक गोस्वामी।

कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे बाजीगर फिल्म के चंद नगमे। समय रहेगा रात 8:30।

कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक में आज आप आनंद लेंगे श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत भस्मासुर चरित्र का। कथाकार होंगे देवी चरण शर्मा। समय याद रखिएगा, रात शाम 7:05। कुछ देशभक्ति रचनाएं प्रसारित की जाएंगी रात 8:20 पर और

यथा आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देश गान, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किसानवाणी। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं रूप किशोर शर्मा।

0: क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो।
1: क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है।
0: जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं
1: और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। मिले

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुने वाले सभी भैया बहनान को रूप किशोर की राम राम। भैया मौसम को हाल तो आप जान ही रहे हो, पिछले दो दिन बारिश भई और भैया बरसात तो है वो बहुत ही जरूरी होए और बरसात को समय क्योंकि अषाढ़ के महीना ते मे बूंद है वो शुरू है जावे और अंग्रेजी महीना के हिसाब से देखो तो भैया जुलाई के महीना में मे बूंद बरसो करें। भैया ऐसे में ऐसो होए के बरसात के मौसम में नमी और कीचड़ की वजह से बीमारी और संक्रमण फैलवे को खतरा बढ़ जावे। ऐसे में हमें अपने पशुओं की उचित व्यवस्था उनकी देखभाल करनी होगी। जाके काजें जो हमारी पशुशाला होए जहाँ हमारे भैंस पोए बंधते हों वह स्थान को ऊंचो और ढलान वालो होना चाहिए जहाँ पानी न भर सके। पशुशाला की छत या दीवार में जो दरार होए उन दरारन को सही करना चाहिए, उन दरारन को बंद करना चाहिए क्योंकि जो छत की दरार होए वहाँ में पानी टपके और जो दीवार की दरार होए बिन में अनेकों प्रकार के जो कीड़ा मकोड़े होए जू किलनी ये सब वहाँ में छिप जामे। तो जाके काजे पशुशाला में साफ सफाई आपको रखनी होगी। बरसात में पशुओं के खान पान में संतुलित आहार और अच्छो आहार दें। सड़ो भयो या फफूंदी लगो भयो न्यार बिल्कुल न दें।

0: बासी चारों बिल्कुल न दें और चारे को कूट के छाया में रखें, वो गीलो न होए। बरसात के दिनन में जो हरो चारो होए वहाँ में पानी की मात्रा ज़्यादा होए, और पानी की मात्रा ज़्यादा है भी तो हमारे किसान भैया के पास हरो चारो भरपूर मात्रा में होए तो वो अपने पशुन को हरो चारो ज़्यादा खवा में, और जब हरो चारो ज़्यादा खवा में तो पशु को दस्त लग जामें। जाके काजें हरे चारे के संग सूखो चारो मिलाए के भूस मिलाए के अपने पोइन को खान पान में शामिल करें। स्वच्छ और ताज़ा पानी पिवा में, गंदे पानी या जल भरा वाले जो तालाब हों उनमें पानी बिल्कुल न पिवा में, क्योंकि गंदे पानी को पीवे ते पशु को डायरिया और लीवर फ्लू जैसी बीमारी है भी को खतरा बनो रहे। भैया हमारे पशु में मुंह पका और गल घोंटू लंगड़ा बुखार जैसी बीमारी हजाओ करें, और इनते बचाव के काजें एक ही साधन होए टीकाकरण। तो अपने पशु को टीकाकरण अवश्य करावें, और अपने पशु को परजीवी चाहे वो बाह्य परजीवी हों या अंतः परजीवी हों उनते भी उनकी देखभाल करें। समय समय पर डॉक्टर के अनुसार उन्हें पेट के कीड़ा मारवे की दवा अपने पशु को देते रहें। मक्खी मच्छर जू किलनी इन सब से अपने पशु को बचाव करें। तो ये तो चर्चा रही भैया बरसात में पशु प्रबंध के बारे में, और जैसो के आप सब जानो ही हो हम जो अपने कार्यक्रम में समय समय पर और समय के अनुसार अपने किसान भैया को जानकारी दिवायो करें, तो आज हम आपको एक जानकारी दिवा रहे हैं जो ओबी आधारित भेंट वार्ता है पशुपालन और टीकाकरण। आज हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र नारायण शुक्ल और इनते बातचीत कर रहे हैं दीपक कुमार गोस्वामी। तो भैया सुनो जा भेंट वार्ता को पशुपालन और टीकाकरण।
1: इसी के साथ एक सहयोगी जो व्यवसाय है वह है पशुपालन, लेकिन पशुपालन की जो वर्तमान स्थिति है वह यह है कि लागत हमारी ज्यादा है और उसके हिसाब से हम अपने दूध उत्पादन से या अन्य उत्पादन से अपनी कमाई नहीं कर पा रहे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र नारायण शुक्ला जो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी मथुरा जनपद हैं। आज इनसे जानना चाहेंगे हमारे पशु के स्वास्थ्य के ऊपर और खासकर उसके संपूर्ण प्रबंधन में जो एक विषय है, क्योंकि सरकार की ये मंशा है कि पशुपालकों की आय में वृद्धि की जाए, किसानों की आय में वृद्धि की जाए, तो इस संदर्भ में कैसे प्रबंधित करें और इसमें टीकाकरण का क्या विशेष योगदान है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र नारायण शुक्ला जी। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे मथुरा जनपद में जो पशुपालक हैं उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहें।
2: पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने हमें अवसर दिया। मथुरा जनपद में इस समय लगभग 6 लाख पशुओं की संख्या है, जिसमें हम नियमित रूप से खुरपका मुंहपका गला घोंटू बकरियों में PPR सुअर में स्वाइन फीवर आदि वैक्सीन का नियमित टीकाकरण अभियान चलता रहता है। वर्तमान में हमारा गला घोंटू टीकाकरण अभियान चल रहा है जिसकी 3 लाख खुराक हमको प्राप्त हो गई है और लगभग 50,000 खुराक लगा भी चुकी है। 20 टीमें संपूर्ण जनपद में कार्य कर रहे हैं।
1: पशु प्रबंधन में क्योंकि आप इस पद के साथ साथ एक वेटनरी डॉक्टर भी हैं, तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे पशु प्रबंधन में टीकाकरण का क्या बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इससे कैसे हम पशु के अपने स्वास्थ्य के प्रति और अपने उत्पादन में इसका लाभ ले सकते।
2: देखिए पशुपालन में आपको 4 चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले ब्रीडिंग, अगर सही नस्ल होगी तो कितना भी खिलाते रहेंगे दूध कम देगी, तो उच्च नस्ल की ब्रीड का सिलेक्शन करना होगा आपको, जैसे भैंस में मुर्रा, गाय में देसी में साहिवाल इस प्रदेश के लिए उपयुक्त है। क्रॉस ब्रीड भी ले सकते हैं, लेकिन क्रॉस ब्रीड 50% से ऊपर क्रॉस नहीं होना। दूसरा फीडिंग आती है, ब्रीडिंग के बाद फीडिंग आती है। यदि कितनी भी अच्छी नस्ल है आपकी और फीडिंग सही नहीं है, आप खान पान चारा दाना सही नहीं है, तो वो दूध नहीं दे। एक बात आपने अभी कहा था कि पशुपालक की आय दुगनी नहीं हो पा रही, हमें फीड भी ऐसा देना है कि सस्ता भी हो और गुणवत्ता परख भी हो पशु आहार। इसके लिए हमारे जनपद के 5 ब्लॉक में हरा चारा उत्पादन अच्छा होता है, जिसमें फरे, बलदेव, राया, माट और नौझील। इसमें अभी हम राया से होके आ रहे हैं और ऐसा कोई

0: खेत हमको नहीं मिला जो खाली, तो हम ये समझते हैं कि अगर हमारे जनपद का सबसे अच्छा क्षेत्र है तो वो राया है कि भाई, जिसमें बहुत ज्यादा जो है पशुओं के लिए चारा उत्पादन करते हैं। तो एक तो फीडिंग में हमको हरा चारा अधिक से अधिक देना है। यदि आप हरा चारा ज्यादा देते हैं तो और पशु आहार देने की आपको आवश्यकता कम हो जाती। तो एक तो ब्रीडिंग हो गई, फीडिंग हो गई, तीसरी चीज होगी मैनेजमेंट। अगर हम ब्रीड भी अच्छी है, खान पान भी हमारा अच्छा है और मैनेजमेंट सही नहीं है तो भी दूध उत्पादन सही नहीं होगा। मैनेजमेंट इन सेंस, अगर हमारी गर्मी पड़ रही है इस समय और हम धूप में बांधे हैं पशु को तो वो निश्चित रूप से उत्पादन नहीं देगा। अत्यधिक बारिश पड़ रही है, कीचड़ में बंधा है तो वो बीमार भी पड़ेगा और दूध उत्पादन नहीं देगा। तो मैनेजमेंट भी सही रखना है। जब हमारी नस्ल अच्छी है, फीडिंग अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है तो बीमारी होगी ही नहीं, ये गारंटी की बात हमारी। मैनेजमेंट में हमारा टीकाकरण भी आ जाएगा, वो एक मैनेजमेंट का ही पार्ट है। अगर टीकाकरण सही टाइम पे मैनेज कर दोगे आप तो बीमारी नहीं होगी। हमारा तो रोल लास्ट में आता है जहां किसान ने ढील दे दी। ढील इन सेंस, अगर समय पे टीका नहीं लगवाया तो समस्या आ जाएगी। या हम और आप या पशु हो बीमार कब होता है? जब प्रकृति के विपरीत चलेंगे हम आप। विपरीत का इन सेंस, अगर ज्यादा सर्दी पड़ती है तो हम आप बाहर जब लेटते हैं तो कमरे में चले जाते हैं। हमारे पशुओं को उस समय भी लोग बाहर ही बांधे रहते हैं। जब हम कमरे के अंदर रजाई ओढ़ने लगे तो उस समय हमको हमारे पशुओं को भी रजाई उड़ानी है। कोई नहीं उड़ाता है पशुओं को, और फिर चाहेंगे कि वो बीमार ना पड़े। रजाई नहीं कोई उड़ा पाएगा तो कम से कम टाट की झूल तो डाल सकता है उसके ऊपर। जिस तरीके से आदमी अपनी व्यवस्था करता है वैसे ही अगर पशु की व्यवस्था की जाएगी तो कोई बीमार नहीं होगा। आदमी भी बीमार कब होता है? हम ज्यादातर धूप में लगे रहे, बुखार आ जाएगा। ज्यादा पानी में बने रहे तो बुखार आ जाएगा। प्रकृति के विपरीत कार्य करेंगे, नियम के विरुद्ध कार्य करेंगे तो बीमार, और जब बीमार होंगे तो इसलिए हमारा पशुपालन विभाग है, हमारे विकास खंड पे अस्पताल बने हुए हैं। एक नया ढांचा पुनर्गठन होना है। अभी तक हमारे पास 20 से 25 हजार पशु आबादी पर एक पशु चिकित्सक है, जो पर्याप्त नहीं है। हमें चाहिए एक न्याय पंचायत स्तर पे एक अस्पताल, जिसके लिए भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग की, और जल्दी ही इसके परिणाम सकारात्मक आए।
1: इसमें एक छोटा सा प्रश्न और है, जो खासकर टीकाकरण, आजकल कुछ लोगों के दिमाग में गलतफहमियां भी होती हैं कि आज अगर हमने टीका लगा दिया तो 4 दिन पशु दूध नहीं देगा या पशु को बुखार आ जाएगा, इस कारण से बहुत से लोग टीकाकरण नहीं कराते। तो मथुरा जनपद के पशुपालक किसान भाइयों को, आप एक जिला स्तर के अधिकारी होने के नाते और एक डॉक्टर होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, कोई भी टीका, पहली बात तो ये बताना चाहते हैं, टीका दो तरीके को, एक वायरल टीका होता है और एक बैक्टीरियल टीका होता है। इसका मतलब ये है कि कुछ बीमारी बैक्टीरिया से होती है उसका टीका रोकने के लिए, और कुछ बीमारी वायरस से होती है उसको बीमारी रोकने के लिए टीका। दो तरीके की जो बैक्टीरियल टीका होते हैं, चाहे आदमियों में हो चाहे पशुओं में हो, वो बुखार उत्पन्न करते हैं। आपने देखा होगा कि जब बच्चे को कुछ टीके लगाए जाते हैं तो बुखार आता है, बच्चा रोता है, तो डॉक्टर साहब ये सलाह देते हैं कि इन्हें पैरासिटामोल की सीरप पिला देना ताकि बुखार कम हो। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और वो वैसे ही प्रक्रिया है जैसे आपके घर में कोई डकैत आ जाए तो आप क्या करेंगे? लाठी डंडा लेके उसको मारेंगे ना, पीटेंगे ना। जब आपके और डकैत के बीच में लड़ाई होगी तो बुखार उत्पन्न होगा। बुखार का मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऐसे ही ये जो वैक्सीन जब बैक्टीरियल लगाई जाती है तो शरीर का रक्षा तंत्र जो होता है, शरीर के अंदर रक्षा सैनिक जो होते हैं, वो डंडा लेके ये समझते हैं। एक और पहले उससे पहले बताना चाहते हैं आपको, ये जो टीके बनते हैं इसमें मरा हुआ वही वायरस या बैक्टीरिया होता है जो बीमारी पैदा, समझ गए, लेकिन मरा हुआ होता है वो बीमारी नहीं करता। लेकिन जब इस शरीर में हमारे में जाता है तो हमारे प्रत्येक क्रिया के प्रतिक्रिया होती है, तो हमारे जो रक्षा तंत्र है शरीर के अंदर, ये समझते हैं कि बीमारी वाले कीटाणु आ गए, उन्हें नहीं ज्ञान है कि ये मरा है कि जिंदा है, तो वो उसी हिसाब से प्रतिक्रिया करते हैं। उनमें लड़ाई होती है, जब लड़ाई होती है तो टेम्परेचर शरीर का बढ़ता है और इसमें एंटीबॉडी बनती है। जब वो बाहर से कोई दुश्मन बैक्टीरिया गया उसके अगेंस्ट हमारा शरीर अपने और सैनिक बढ़ाता है, तो जब सैनिक बढ़ाता है लड़ाई होती तो बुखार पैदा। तो टीका लगाएंगे बैक्टीरियल तो उसमें बुखार होगा, वायरल टीका में बुखार नहीं होता है। जैसे हम लोग पोलियो की जब दवा पीते हैं तो उसमें बुखार नहीं होता है, डीपीटी का टीका लगाया था तो बच्चों को बुखार आता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और निश्चित रूप से जो आपने कहा कि दूध कम होगा, दूध तो निश्चित कम होगा, जब बुखार आ जाएगा पशु चारा नहीं खाएगा तो दो तीन दिन दूध कम होगा। अगर दो तीन दिन दूध कम होता है और उससे

0: हमारा पशु सुरक्षित रहता है तो उसमें कोई समस्या।
1: कुल मिला के हमारे पशुपालक भाइयों को यह संदेश भी है कि टीकाकरण अवश्य कराएं, खुरपका मुंहपका की बीमारी से अपने पशुओं को बचाएं, पर्याप्त मात्रा में उनका आहार प्रबंधन करें और पशु के भोजन के साथ जो उसकी आहार प्रणाली है उसमें मिनरल मिक्सचर का भी प्रयोग करें। डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी भैया सुन रहे थे जा भेंट वार्ता को पशुपालन और टीकाकरण, जहाँ में विशेषज्ञ जानकारी दे रहे डॉक्टर नरेंद्र नारायण शुक्ल और इनते बातचीत कर रहे दीपक कुमार गोस्वामी। और भैया अब सुनो दामोदर शर्मा के स्वर ते सजायो जी लोकगीत के उधो ब्रज वृंदावन में।

0: उधो ब्रज वृंदावन में मेरो मन रह गयो, जालू गीत को अपने स्वर से सजाया दामोदर शर्मा ने। भैया आज हम बात करेंगे कि हमारे जो पशुपालन के कार्य हैं चारों देवी वाले वृक्षण के महत्व के बारे में। हम और आप जी समझो करें कि भैया हमारे पशुन के चारे में ज्वार बाजरे की करव, हरी ज्वार, भूसो, पुआल ये शामिल हों, पर हम आपको बता दें कि पशुपालन में हरे और पौष्टिक चारे की कमी दूर करवे के काजें चारों देवी के काजें पेड़ों शामिल हों, जो केवल गाय भैंस को हरो चारों ही ना देवें, पशुन को भरपूर प्रोटीन प्रदान करें, खेत की माटी की उर्वरता को बढ़ावें और संग ही संग हमें छायाऊ दे में। ऐसे जो वृक्ष हों जिनमें सहजन, सुलबुल, नीम, शैतूत, खेजरी और बबूल, ये ऐसे वृक्ष हों में के जो पशुन को प्रोटीन युक्त पौष्टिक आहार के रूप में इनकी पत्ती पशुन को खवाई जामे और पशुपालन के काजें चारों देवी वाले जो वृक्ष हों उनते हमें बारह मासी चारों मिले और आर्थिक बचत हो वह। तो ये तो चर्चा रही भैया पशुपालन के काजें चारों देवी वाले वृक्षण को महत्व। अब हम आपको बता दें कि हमारे पशुन में परजीवी होयो करें जो हमारे पशुन को नुकसान पहुँचावें, चाहे वो परजीवी अंत परजीवी हों चाहे बाह्य परजीवी हों, वो हमारे पशुन को नुकसान दें, दुग्ध उत्पादन क्षमता में कमी करें। तो इन सबते उन परजीवीन ते कौन कौन से रोग हों और उनते कैसे हमें निजात मिले, जाके विषय में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर दयाशंकर, पशुओं के परजीवी रोग। तो भैया सुनो जब जानकारी को।
1: पशुओं के उत्पादन में होने वाली आर्थिक क्षति जीवाणु विषाणु अन्य कारणों से होने वाले रोगों की तुलना में परजीवी रोगों से बहुत अधिक क्षति होती है। परजीवी ग्रस्त पशु में खून की कमी, दस्त, दुग्ध, मांस, अंडा एवं ऊन उत्पादन में अत्यंत कमी तथा कभी कभी तीव्र प्रकोप के कारण अधिक संख्या में पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। सर्वप्रथम हम ये जानकारी दे दें, पशुओं में पाए जाने वाले परजीवी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, वाय परजीवी एवं अंता परजीवी। वाय परजीवी प्रायः पशु के बाहर सतह पर लगे रहते हैं या फिर समय समय पर पशुओं में पोषण प्राप्त करने के लिए आते हैं। पशु वाय परजीवी जो पशुओं की बाहरी सतह पर लगे रहते हैं और पशुओं का खून चूसते हैं, जैसे जूं, किलनी, माइट्स, पिस्सू आदि। दूसरे जो समय समय पर आकर पशुओं का खून चूसते हैं, जैसे मच्छर, मक्खी आदि, ये भी पशुओं में खून की कमी के अलावा विभिन्न तरह की बीमारियों का भी संक्रमण करते हैं। अंता परजीवी जो पशुओं के शरीर के अंदर विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, ये मुख्यतः दो तरह के होते हैं। प्रथम एक कोश की परजीवी जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं तथा प्रमुखता या तो खून में पाए जाते हैं, जिन्हें रक्त परजीवी कहते हैं, जैसे ट्रिपैनोसोमा, थिलेरिया एवं बबेसिया प्रमुख हैं, जिनका संक्रमण मक्खी व किलनी के द्वारा होता है। दूसरे जो पशुओं की आहार नाल में छोटी आंत में या बड़ी आंत में मिलते हैं, जिन्हें सामान्य रूप से कॉक्सीडिया कहते हैं, ये प्रत्येक पशुओं में अलग अलग प्रजातियां संक्रमित करती हैं। दूसरे परजीवी जो बहुकोशिकी परजीवी हैं, जिन्हें कृमि कहते हैं, पशुओं के विभिन्न तंत्रों में पाए जाते हैं। शरीर रचना के आधार पर ये तीन तरह के होते हैं, पर्णक्रम, फीताक्रम एवं गोलक्रम। पर्णक्रम जो हैं इनका आकार पत्ती की तरह होता है, फीताक्रमी ये फीते की तरह एवं गोलक्रमी या जिन्हें

राउंड वर्म भी कहते हैं। अब इस प्रकार परजीवियों के प्रकार एवं कहाँ कहाँ किस तरह के परजीवी पाए जाते हैं, वैसे तो परजीवियों के लिए सामान गर्मी एवं मौसम में आर्द्रता अधिक एवं संक्रामक होती है। शुष्क वातावरण परजीवियों के विकास के लिए अच्छा नहीं माना गया है तथा वातावरण का तापमान सामान्य से कम होने पर परजीवियों की विकास दर कम या नहीं के बराबर होती है और यहाँ तक कि सुप्तावस्था में आ जाते हैं। अधिकतर परजीवियों का संक्रमण मानसून के पहले एवं मानसून के बाद अधिक होता है और अधिकतर पशु परजीवियों के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। वैसे तो अधिकतर परजीवियों के लिए सर्दी का मौसम संक्रमण एवं विकास के लिए उचित नहीं होता और

0: संक्रमण एवं विकास के लिए उचित नहीं होता और संक्रमण एवं विकास दोनों लगभग ठहर जाते हैं, किंतु सर्दी का मौसम कुछ परजीवियों के लिए अच्छा होता है, जैसे कॉक्सिडियोसिस। ये अवस्थाएं, इस कॉक्सिडियोसिस की अवस्थाएं मल के साथ आती हैं तथा सर्दी के मौसम के कारण पशुपालक पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए बिछावन का प्रयोग करते हैं, जिसमें संक्रमक अवस्थाएं विकसित होने के लिए उचित तापमान एवं आर्द्रता प्राप्त हो जाती है और संक्रमक अवस्थाएं तेजी से विकसित कर जाती हैं और पशु प्रायः बिछावन के साथ साथ परजीवियों के संक्रमक अवस्थाओं को भी खा जाता है और पशु संक्रमित हो जाता है। इसी प्रकार सर्दी के कारण पशुओं के बाड़ों को बाहर से ढक दिया जाता है, खिड़कियों को बंद कर दिया जाता है। ऐसा करने से बाड़ों के अंदर आर्द्रता एवं तापमान दोनों बढ़ जाते हैं, जिससे मल मूत्र में अंडे एवं लार्वे जो निकलते हैं उनका विकास तेजी से होता है और संक्रमक की अवस्थाएं तेजी से बन जाती हैं और अधिक मात्रा में संक्रमण होने की संभावनाएं रहती हैं तथा वाय परजीवी जैसे जू किलनी आदि का संक्रमण, क्योंकि सर्दी के कारण पशु एक साथ बैठते हैं तो बिल्कुल क्लोज संपर्क में आने से संक्रमण की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। सर्दियों में पशुओं के अंदर प्रमुख बात यह है कि जब या तो पोषण में कमी या कमजोर पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी आ जाती है और इसी के कारण सर्दियों में पशु अधिकतर बीमार हो जाते हैं और ये मुख्यतः संतुलित आहार का ना मिलना होता है और संतुलित आहार ना मिलने के कारण पशु कमजोर हो जाता है और परजीवियों से संक्रमित होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। पशुओं को अगर हमें संक्रमण से बचाना है तो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पशुओं के रखने का स्थान साफ स्वच्छ एवं शुष्क होना चाहिए। संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशु से अलग रखना चाहिए। पशुओं को संतुलित आहार एवं स्वच्छ पानी पिलाना चाहिए। पशुओं को जहां उनके पास में परजीवियों का प्रजनन का स्थान होता है या द्वितीय परपोषी या वेक्टर पाए जाते हैं उनका उन स्थानों को नष्ट किया जाना आवश्यक है और इनको नष्ट किए जाने के लिए कीटाणुनाशी दवाओं का प्रयोग और साफ सफाई ही है। पशुओं की वधशालाओं का रखरखाव सही तरह से किया जाना चाहिए, क्योंकि पशुओं के काटने के बाद बहुत सी संक्रमक अवस्थाएं बाहर आती हैं जिनका कि प्रॉपर या सही तरीके से निस्तारण किया जाना आवश्यक है, नहीं तो वातावरण में फैलकर पशुओं को संक्रमक कर सकते हैं। नए पशुओं को यदि हम अपने घर में लाते हैं या बाड़े में लाते हैं तो उसका पहले सही परीक्षण करा लेना चाहिए कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं है और एक निर्धारित समय के बाद ही पशुओं को अन्य पशुओं के साथ में शामिल करना चाहिए। समय समय पर पशुओं के स्वास्थ्य की परीक्षा करानी चाहिए, रोगी पशु का उपचार कराना चाहिए तथा बचाव के लिए दवा का या टीकाकरण कराया जाना आवश्यक है। वाय परजीवियों की भी समय समय पर सफाई किया जाना चाहिए और शरीर से निकालकर वाय परजीवियों को मार देना चाहिए। नए बच्चों को अलग रखना चाहिए तथा चराने के लिए एक ही चारागाह जिसमें पुराने पशु और नए बच्चों को एक साथ नहीं करना चाहिए, नए बच्चों के लिए या पशुओं के लिए चारागाह अलग होना चाहिए। पशुओं के मल मूत्र को तालाब में नहीं डालना चाहिए तथा उसका उचित निस्तारण किया जाना चाहिए। तालाब का पानी विशेषकर जिसमें घोंघों की संख्या होती है उस तालाब का पानी नहीं पिलाना चाहिए। इस प्रकार हमें ये बचाव के सभी उपाय ध्यान में रखते हुए अपने बीमार पशु का पशु अधिकारी के यहाँ ले जा करके इलाज कराना चाहिए।
1: अभी भैया सुन रहे थे डॉक्टर दयाशंकर को जो जानकारी दे रहे पशुओं के परजीवी रोग में। और भैया अब चलते चलते बता दें आज के मौसम के हाल। तो आज को जो अधिकतम तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है। यही कि संग ही संग आज को किसानवाणी कार्यक्रम अब संपन्न होए। सब भैया बहनान को रूप किशोर की राम राम।

अभी आप सुन रहे थे किसानवाणी कार्यक्रम। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे रूप किशोर शर्मा। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या वंदन।

हरिहरन की आवाज में आपने सुना शिव महिमा फिल्म का ये भजन। कार्यक्रम का अगला फिल्मी भजन हम आपको सुनवा रहे हैं। अमित त्रिवेदी की आवाज में फिल्म का नाम है केदारनाथ।

0: परमात्मा फिल्म के इस भजन के साथ ही आज का संध्या वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या?
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। आज इस कार्यक्रम में आप आनंद लेंगे श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत भस्मासुर चरित्र के प्रसंग का। कथाकार हैं देवीचरण शर्मा।

महान तोष्मि। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुखदेव जी राजा परिसु कहने लगे कि हे राजन, आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाए रहा हूं जो शत्रु भय से मुक्त कर विवारी है। या को ध्यान से लगाए के बड़ी आनंदित होकर के सुने। ये हमारी भागवत में दसम स्कंद के 88वें अध्याय पर विराजमान है। अब ध्यान से सुनो। एक बार ब्रकासुर जो शकुनी को बेटा हो कहो जाए

वक्त हे राजन, ऐसा कहा जाता है कि ये आनवंशता का नियम जो मेंडलीप ने सिद्ध किया वो भी सिद्ध है। ये शकुनी का जो बेटा ब्रकासुर था, उसकी मलिन बुद्धि ये ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचो, वहां नारद से मिले तो नारद से पूछने लगे कि हे नारद जी, ये त्रिदेवों में से ऐसो कौन सो देवता है जो जल्दी प्रसन्न है वे बारोए। नारद जी कहने लगे कि सबसे जल्दी प्रसन्न है वे वारो ब्रह्मा विष्णु महेश में से भोले बाबा शंकर हैं। इनकी थोड़ी सी उपासना करवे पे ये जल से ही प्रसन्न है वे वारे देवताएं। तो केदार क्षेत्र में जायके ब्रकासुर ने और धुनी रमाय दी और बाबा को व्रत करवे लग गो। बाबा को आह्वान कर रहो है, भोले बाबा को मनावे लग रहो। छह दिना है गए भोले बाबा के आराधना करते करते, अपने अंगों को काट काट के हवन कुंड में भस्म कर रहे हो, लेकिन बाबा प्रसन्न ना भे। अब ब्रकासुर ने कुल्हाड़ी लेकर के अपने सिर को काटवे लगे और बाबा को आह्वान करने लगे कि बाबा से कह रहा है कि भोले बाबा।

0: काट रहूं सर को, नहीं तो मैं मर जाऊंगो।
1: बोले
0: बाबा मुझे भर दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगो।
1: भोले बाबा की आराधना करते करते कुल्हाड़ी लेकर के अपने सिर को काटने को आतुर होकर तैयार हो जाता है हवन कुंड में भस्म करने के लिए। तो बाबा हवन कुंड से प्राकट हो जाते हैं। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। और कहने लगे कि हे ब्रकासुर, मैं तेरी या भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूं, वर मांग ले। ब्रकासुर कहने लगा कि भोले बाबा, यदि आप मोसू प्रसन्न हैं तो मुझे एक ऐसा वरदान दे दो कि मैं जाके सिर पे हाथ रख दूं, वही भस्म है जाए। बाबा हंस गए, हंस के तथास्तु कह दियो, ठीक है तेरो वरदान मिल जाए। मिल गया। अब तो उसी समय से या ब्रकासुर को भस्मासुर नाम पड़ गयो। कहो जाए कि ब्रकासुराय गिरिशो वरम दत्वाप संकटम, ब्रकासुराय गिरिशो वरम दत्वाप संकटम। जैसे ही भगवान शंकर ने और ब्रकासुर को वरदान दियो और संकट में पड़ गए। ब्रकासुर ने देखो कि मैया पार्वती से सुंदर कोई ना है, ये मोह मिल जाए तो सबसे सब कुछ मिल जाए। और बिना बाबा के रहते हुए मोह ये पार्वती मिल ना सके। तो ब्रकासुर ने देखो कि बाबा जब तक मरेगो ना है तब तक ये प्राप्त ना कर पाऊंगो। तो बाबा के ही सिर पर हाथ रखवे को आतुर हो गए। और बाबा ने देखो को रे मेरो ही हथियार मुई पे चलाए रहो। बाबा आगे भगने लगे। भगते भगते भगते भगते पंचमढ़ी पे जाके पहुंच के बाबा हाँप रहे। अब ब्रह्मा और विष्णु देखवे लग रहे। ब्रह्मा तो चुप्पी साधे गए, कहने लगे कि ठीक है ये बड़ो जल्दी वरदान दे दे, जैसो करेगो वैसो भरेगो। अब तो विष्णु भगवान बोले कि भाई ये मरीगो तो का भयो। अब भगवान विष्णु एक मोहिनी को रूप धारण करके, बहुत सुंदरी स्त्री को रूप धारण करके, और ब्रकासुर जो भस्मासुर ना

हमसे प्रसिद्ध होने लगे वा के सामने आएगी। आगे कहने लगे कि अरे शकुनी नंदन, तुम यहां जंगल में काय को डोल रहे हो, काय को डोल रहे हो। तो अब उन्हें मोहित है गए वा शकुनी के पुत्र की वार्ता जैसे ही चली तो ब्रकासुर भगवान शंकर को, भगवान विष्णु को रूप देख के बहुत ही प्रसन्न है। मोहिनी रूप देख के मैया पार्वती को भूल के वो कहने लगे ऐसी स्त्री मोह मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। अब बोले ठीक है, उन्हें वरदान को सब वृतांत सुनायो। तो मोहिनी कहने लगी कि मैं आपको पति के रूप में ले सकूं? तो ब्रकासुर ने कहो कि मैं आपको चाहूं। तो बोले मेरी एक शर्त है कि जो मोह नृत्य में नृत्य में हराए देगो वही के संग में शादी कर लूंगी। तो ब्रकासुर नृत्य करने के लिए तैयार है गो। तो ये पंचमणि स्थान पे और उनको नृत्य है वे लग रहे हैं। नृत्य करते करते 8 दिना बीत गए। जब शंकर छिप गए एक गुफा में जाके और विष्णु भगवान एक हाथ अपनो सिर पे रख के और एक भाड़ी पे रख के ठुमका लगाए हुए लगे। जैसे ही ठुमका लगाए हुए लगे तो उनकी शर्त यही कि जैसे मिन्नत करूं वैसे ही आपको करना पड़ेगा। भस्मासुर सब भूल गो और अपनो सिर एक हाथ पे रख के एक भाड़ी पे रख के ठुमका लगाए हुए को जैसे यात्र भयो और वाह को सिर फाट गो और भस्मासुर भस्म है गो। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब विष्णु भगवान ने भस्मासुर को भस्म कर दियो और भगवान शंकर को बुलाए भी लगे आ जाओ ओ बज आ

अभी आप सुन रहे थे ब्रज साहित्य कार्यक्रम। आज आपने आनंद लिया श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत भस्मासुर चरित्र के प्रसंग का। कथाकार थे देवीचरण शर्मा। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, जिसे हम लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की अहम बैठक। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। 88% अभ्यर्थी हुए परीक्षा में शामिल। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 सदस्यीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। और कानपुर तथा टूंडला में भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन आज 2 दिवसीय दौरे पर पहली बार लखनऊ पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केन्द्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने लखनऊ एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी उपस्थित रहे। इसके बाद श्री नवीन ने एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने स्वागत के लिए प्रदेशवासियों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया।
1: उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। लखनऊ की धरती पर लोगों ने मुझे अभिमान दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी और पूरे लखनऊ के लोगों का अभिनंदन कर धन्यवाद करता हूं।
0: अपने 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर श्री नवीन विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासों से 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से सफलतापूर्वक उभरने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने हर स्तर पर समय रहते निर्णय लिए, उभरते संकट का सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति तैयार की और देश के संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कूटनीति और रणनीतिक उपायों से देश ने संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। श्री मोदी ने आज राजस्थान में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया।
2: पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों, 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं।
0: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 28 जून 2026 को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार ये बैठक ट्रस्ट के अध्यक्ष की स्वीकृति से कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी द्वारा बुलाई गई है। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा द्वारा दिए गए त्याग पत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। बैठक में भविष्य में राम मंदिर के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्था पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने आज महोबा में श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले में कहा कि जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
3: राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बना है।

0: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: अच्छी व्यवस्था है, यदि कोई गड़बड़ी की है तो मेरा इतना ही कहना है कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
1: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। लिखित परीक्षा 2 और 3 जुलाई को दो दो पाली तथा आज एक पाली में समाप्त हुई। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार परीक्षा में 88.77% अभ्यर्थियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा के दौरान आयोग में स्थापित एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की सघन निगरानी की गई। परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान 44 फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े गए। परीक्षा के सफल संचालन के लिए आयोग ने जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ के प्रति आभार व्यक्त किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रही हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज जनभवन में स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन भारत की सनातन चेतना का एक जीवंत प्रकाश स्तंभ है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने सार्वजनिक महत्व की भूमि से जुड़े मामलों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए एक अहम निर्णय लिया है। इसके तहत अब आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति तथा शत्रु संपत्ति से संबंधित सभी वादों की सुनवाई 3 सदस्यीय विशेष पीठ द्वारा की जाएगी। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: राजस्व परिषद के अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार इन मामलों पर विशेष रूप से गठित 3 सदस्यीय पीठ सामूहिक रूप से विचार करेगी। परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज दोनों न्यायालयों के लिए अलग अलग 3 सदस्यीय विशेष पीठों का गठन किया है। इन विशेष पीठों द्वारा प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। वहीं एक अन्य पहल के तहत राजस्व परिषद के न्यायालयों द्वारा किसी वाद में अभिलेख तलब किए जाने पर सामान्यतः मूल अभिलेखों के स्थान पर संबंधित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रमाणित पूर्ण स्कैन प्रति के आधार पर ही न्यायिक कार्यवाही की जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 के दूसरे दिन आज जनभवन लखनऊ में मैंगो बायर सेलर मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सम्मिलित हुए। इस अवसर पर आम निर्यातकों और आम उत्पादकों के मध्य MOU भी हुए। इस अवसर पर उद्यान मंत्री ने कहा कि योगी सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि के लिए हर स्तर पर काम हो रहा है।
3: उद्यान विभाग के माध्यम से हम राज्य के किसानों की समृद्धि का जो सपना देखे हैं वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम साकार कर रहे हैं। दुनिया के बाजारों में हमारी औद्योगिक फसलें आज पहुंच कर रही है और जब से हमारे यहाँ जेवर एयरपोर्ट बन के तैयार होंगे हमारे राज्य के आम के किसानों का मनोबल बढ़ेगा, उनकी समृद्धि बढ़ेगी, ऐसा प्रयास हमारी सरकार का होगा।
1: महोत्सव के दूसरे दिन आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विज्ञान विभाग के अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों और प्रदेश भर से आए प्रगतिशील आम उत्पादक किसानों के बीच एक तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित राज्य के कई जिलों में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बीते 24 घंटों में कानपुर और आज सुबह टूंडला में हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की अहम बैठक।

0: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। 88% अभ्यर्थी हुए परीक्षा में शामिल। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 दिवसीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। और कानपुर तथा टूंडला में भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी।

बचपन के वो दिन भी क्या दिन थे, ना फिक्र थी ना कोई गम था। टूटी हुई पतंग, उलझी हुई डोर, पर खुशियों का हर मौसम था। मिट्टी से सने वो नंगे पांव, हर रास्ता अपना घर सा लगता था। न जेब में पैसे न कोई चाहत, फिर भी दिल सबसे अमीर था। काश वो मासूमियत लौट आए, फिर से जीना कितना आसान था। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज मैं हूँ आपकी रेडियो मित्र खुशबू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम शाम सुहानी में।

श्रोताओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में। और आपके संदेश हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें प्राप्त हो रहे हैं। और सबसे पहला जो संदेश हमने लिया है, छोटी बलिया कर्जत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, जोड़ी इकबाल दुखना सदफ, इमरान अहमद फूलवाले। अगला मैसेज हमें आया है अनिल उषा बुड़ारे, अनुश्री और धनश्री बुड़ारे का। पांडर कवड़ा यवतमाल से उन्होंने हमें संदेश लिखा है। और अगला संदेश हमें मिला है सरगुजा मेन पार्ट से असमा थापा, सोमन थापा, फातिमा आसमा थापा, वसीम और अकरम थापा का। झांसी से फकरुद्दीन अंसारी, फर्जी वली अंसारी, फर्जुद्दीन अंसारी और फर्जू वली अंसारी का। अगला मैसेज हमने लिया है यवतमाल से ही जयराम सिंगड़कर, दिशांत और अर्पिता जी का। तो सुन लेते हैं आप सबकी फरमाइश का ये गीत। फिल्म का नाम है मोहरा। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में आपने सुना मोहरा फिल्म का ये गीत। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी गांव गोपी की नगरिया से मिठन लाल सारस्वत, नेहा, नीरज, निकिता और इनके मम्मी पापा। गांव नगलापोला से विजय सिंह, भानु प्रताप, अनुराधा, रामानुज, पीहू, कृष्णा, राधिका, पवन, करण, नमन और इनके सभी परिवारीजन। गांव नोधरा से हमसे जुड़े हैं ये श्रोता कोमल मास्टर, जसुदा, सूरज, शिवानी, कुमोदवन से रमेश, सुरेश, सुनील, रचना और सभी साथी। हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से सोनिया, अजीत, शिवांश, चुन्ना और इनके मम्मी पापा। इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से नसीब।

रामानुज पीयू, कृष्णा, राधिका, पवन, करण, नमन और इनके सभी परिवारीजन। गांव नोधरा से हमसे जुड़े हैं ये श्रोता, कोमल मास्टर, जसुदा, सूरज, शिवानी, कुमोदवन से रमेश, सुरेश, सुनील, रचना और सभी साथी। हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से सोनिया, अजीत, शिवांश, चुन्ना और इनके मम्मी पापा। इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से नसीम मोहम्मद, सलमा बेगम, रेहान मोहम्मद और फैजान मोहम्मद ने। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोल्ड, निखिल कांगड़ा और तन्वी वोट का संदेश हमें अभी प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र, उमेश और प्रमिला बंछोर हमसे जुड़े हैं। अगला जो मैसेज आया है पंजाब से आया है, चकला बाजार समाना शहर से। पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी, आरजू, पप्पू खुशदिल, हसमुख लाल, बुलबुल, शक्ति, संजीव, बंटी और पूरा खुशदिल परिवार। ये संदेश हमें मिला है रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश, बल्लू निषाद, तरुण, श्रीनिका और श्री निजा निषाद का। बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्येंदु, संस्कृति, पौरुष और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, कुलदीप कंवल हमसे जुड़े हैं। ये संदेश हमें प्राप्त हुआ है किसी भी गीत की इन्होंने फरमाइश हमें लिख भेजी है छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश, सुरेश, सुरेखा, शुभम और अक्षय ने। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव का हमें अभी संदेश प्राप्त हुआ है और ये मैसेज हमें मिला है राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक और आर्यन वर्मा का। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से इन्होंने हमें संदेश लिखा है। ये संदेश हमें मिला है गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नादरे और मारो ताराव पांचाल का। राजदीप राजेश, राशि राजेश हमसे जुड़े हैं और इनके साथ हैं शीतल राजेश। अगला संदेश हमें मिला है आप सभी का, आप हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़, इनका हमें संदेश अभी प्राप्त हुआ है। और अगला संदेश हमने लिया है शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे, इन सभी का हमें संदेश प्राप्त हुआ है हिंगोली महाराष्ट्र से। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहद परवीन अब्बासी, शहनावाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान, इसके साथ अब्बासी परिवार के सभी सदस्य हमसे जुड़े हैं। नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन और मंगलाबेन, इनके साथ राजेंद्र जी शाह का हमारे पास अभी संदेश आया है। ये संदेश हमें मिला है वैष्णव कॉलोनी सनावास से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। जामा मस्जिद रोड गोंगावा से हाजी इसहाक लोला मानी और मोहम्मद उमर कासमी, इनके साथ हाजी अयूब शेरी हमसे जुड़े हैं। किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश, गौरव और गरिमा शर्मा का हमें ये मैसेज अभी मिला है। ये संदेश हमने लिया है अंजलि करवा, जयश्री, साक्षी, संगीता और नंद किशोर घटे का, बीड शहर महाराष्ट्र से। रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और पीवी कुलथे, इनका भी हमें संदेश अभी प्राप्त हुआ है। फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण और जोहानुल हुदा हमसे जुड़े हैं हयात कॉलोनी अररिया बिहार से। अगले पसंद करता है उत्तम कुमार बंगेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती, इन्होंने पता अपना लिखा है लघान पनरिया छत्तीसगढ़। ये संदेश हमें मिला है गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना, हर्ष और दीपल का। सुन लेते हैं आप सबकी पसंद का चरस फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी साहब ने और साथ दिया है आनंद बख्शी ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुना चरस फिल्म का ये गीत। इस गीत की हमें फरमाइश भेजी आप सभी ने ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही महरहा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से इन्होंने हमें मैसेज लिखा है। मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकी पवार, अलमास मानो पवार, मोइन छोटू, मोहम्मद हसनैन पवार का हमें ये मैसेज मिला है ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से। मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर हमसे जुड़े हैं बिजनौर से। देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली क्षत्रिय हमसे जुड़े हैं। अगली फरमाइश करता है ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से, इन्होंने हमें पुनः संदेश लिखा है तो कृपया करके पुनः मैसेज आप ना लिखें, हमने अपना मैसेज पहले पढ़ लिया है। बुलंदशहर से पंकज सिंह, चंचल, रशिका, आकृति, वंशराज और एम एस अब्बासी हमसे जुड़े हैं। यमुनापुरम बुलंदशहर से अगला जो हमें संदेश मिला है धीरेन्द्र सोलंकी का, सुनीता, निष्ठा और मून सोलंकी हमसे जुड़े हैं। कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा का हमें ये मैसेज मिला है। हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय, रुद्रा और रामेकर परिवार ने मैसेज लिखा है अमरावती महाराष्ट्र से। किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला, आसमा, दीपक और अनुश्री श्याम कुंवर का हमें संदेश मिला है। ये संदेश हमें मिला है किसी भी गीत में शामिल कीजिएगा सूरज लोढ़े, प्राची और एकलव्य का, बलहार शाह से। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा का मैसेज हमें मिला है मजनू कटीला से और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक का ये संदेश हमें प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा का ये मैसेज हमें मिला है। नारायण हागे, कमल, दिव्या, जय हागे का संदेश हमें मिला है बलढाणा से। ये संदेश हमें भेजा है ग्राम पहरा दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंछोर, चंद्र किरण, प्रीति और छाया बंछोर का। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रितिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर और अमनदीप इनके साथ हैं, शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी का मैसेज मिला है मध्य प्रदेश आकली दीवान से। भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा का संदेश हमें मिला है दंतरंगी से। ये संदेश हमने लिया है चंडीगढ़ से सतेश अनेजा और विमल अनेजा का। सुन लेते हैं आप सबकी फरमाइश का ये गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में।

ये संदेश हमें मिला है झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नथावत और समस्त परिवार। ये अगला संदेश हमें मिला है शंभुदयाल खटक का, विमला देवी अमरजी सुंदरलाल योगेश दीपक और कुमारी पूजा खटक का, जाखोद राजस्थान से।

मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत और रोजस भाई का हमें ये संदेश मिला है। चंडीगढ़ सिटी से शेफी डेविस, विमला और सतीश अनेजा का हमें ये संदेश मिला है। और अगला संदेश हमने लिया है उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका और भानु प्रकाश का, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब का संदेश हमें मिला है सहारनपुर से। भेरूलाल वाकतरिया धाकड़, भोला वाकतरिया, प्रवीण, रियांश और प्रतीक वाकतरिया का संदेश मिला है उज्जैन, मध्य प्रदेश से।

अभी आप सुन रहे थे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

गुंडाराज फिल्म में आपने सुना कुमार सानू, अलीशा चिन्नाया और साथियों को। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है आराधना।

बेकाबू फिल्म में आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक को। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देश गान।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देश गान, एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म।

93 में रिलीज हुई ये फिल्म एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन अब्बास मस्तान ने किया था। फिल्म में शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल और राखी ने प्रमुख भूमिका निभाई। ये फिल्म शाहरुख खान के करियर की सबसे बड़ी शुरुआती सफलताओं में से एक मानी जाती है क्योंकि उन्होंने इसमें एक नकारात्मक लेकिन भावनात्मक रूप से जटिल किरदार निभाया था।

फिल्म की कहानी अजय शर्मा नाम के एक युवक की है जिसके पिता का व्यवसाय एक लालची उद्योगपति मदन चोपड़ा की साजिश के कारण बर्बाद हो जाता है। इस घटना के सदमे से अजय का परिवार टूट जाता है, पिता की मृत्यु हो जाती है और उसकी मां मानसिक आघात का शिकार हो जाती है। सालों बाद अजय अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने की ठानता है। वो अपनी असली पहचान छिपाकर विकी मल्होत्रा के नाम से मदन चोपड़ा के परिवार में प्रवेश करता है। उसकी योजना केवल मदन चोपड़ा को हराना नहीं बल्कि उसे उसी दर्द का एहसास कराना है जो उसके परिवार ने झेला था।

अजय पहले मदन चोपड़ा की बड़ी बेटी सीमा को अपने प्रेम जाल में फंसाता है और फिर उसकी हत्या को आत्महत्या का रूप देता है। इसके बाद वो छोटी बेटी प्रिया के करीब आता है। प्रिया को अपनी बहन की मौत का शक होता है और वो अपनी सच्चाई जानने की कोशिश करती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रहस्य, रोमांच और बदले की भावना चरम पर पहुंच जाती है और अंत में अजय अपनी असली पहचान उजागर करता है और मदन चोपड़ा से आमना सामना होता है। बदला तो पूरा हो जाता है, लेकिन इसकी कीमत अजय को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है।

इसी के साथ एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज आपने आनंद लिया बाजीगर फिल्म के कुछ गीतों का। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की।

0: महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साणद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि साणद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि साणद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
1: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान

0: युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रूपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
2: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्हास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा

0: विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांणद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says, India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate, and in men's cricket,

गीता दत्त की आवाज में आपने सुना आर पार फिल्म का ये गीत। आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है आपकी कसम।

आपकी कसम, अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत जिसे स्वर दिया था किशोर कुमार ने। इसी के साथ सुहाने तराने कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

Okay. नमस्कार। सावन अगर हकीकत है तो आषाढ़ एक कल्पना, ऐसी कल्पना जिसमें भरे होते हैं खुशी के रंग, झीनी बहार, गर्म हवाओं के बीच हल्की सी फुहरन, जैसे तस्वीर खिंचवाने के बाद उसे देखने की त्वरित ललक होती है या कपड़े सिलवाने के बाद उन्हें पहनने की, ठीक वैसे ही आषाढ़ में धरती खुद को आकाश के आईने में निहारने को आतुर

0: रहती है, खूब सजना संवरना चाहती है, बादलों और हवाओं को हरी ओढ़नी सिलने को दे आती है, खूब बतलाना और जतलाना चाहती है, सिद्ध करना चाहती है अपने होने और जग की सार्थकता को। आकाश और धरा के बीच जो रिक्त है, जो दूरी है, उसे पास लाती है, उसे मिलाती है, उसे बुलाती है ये बरखा। सही मायने में ये बरखा ही सार है, आधार है इस संसार सागर का, जीव जगत के अस्तित्व का। बरखा है तो ये कहानी है, बरखा है तो ये रवानी है। कोई इसमें बहुत ज्यादा डूब जाता है तो कोई सारा का सारा प्यासा रह जाता है। बरखा खुले में मैदानों में होती है, मगर घर की बहुत सी खिड़कियों से प्यास झांकती रह जाती है। बशीर बद्र का एक शेर साया सी याद आ रहा है। जिस बादल की आस में जूड़े खोल दिए सुहागन ने, वो पर्वत से सिर टकराकर बरस गया सहराओं में। सुनते हैं रूपक, मेघ, मन और मालवा।
1: प्रकृति की लय में आषाढ़ का एक दिन। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में लिखा है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ मासलिष्ट सानुम वप्र क्रीड़ा परिणत गज वृक्षनीयम ददर्श। यानी आषाढ़ के पहले दिन जब यक्ष ने पर्वत के शिखर पर झुके हुए मेघ को देखा तो उसे ऐसा लगा कि एक हाथी क्रीड़ा में मगन हो टीले से मिट्टी खोद रहा है। तो यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी की स्मृति में व्याकुल हो उठता है और मेघ को ही अपना संदेश वाहक बनाने का निश्चय करता है। कालिदास की ही रचना मेघदूत से प्रेरित होकर मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक लिखा। ये कालजयी कृति आधुनिक हिंदी नाटक की आधारशिला मानी जाती है। आषाढ़ का पहला दिन भारतीय काव्य परंपरा में केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, वे मनुष्य के भीतर घटित होने वाले भाव परिवर्तन का भी समय है। उमड़ते मेघ, आकाश में फैलती घटाएं और वर्षा की पहली आहट, भारतीय साहित्य में सदियों से प्रेम, प्रतीक्षा, स्मृति और विरह के प्रतीक रहे हैं। कालिदास ने मेघदूत में मेघ को संदेश वाहक बनाया था, ऐसा दूत जो दूरियों को जोड़ता है और स्मृतियों को जीवित रखता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यही प्रकृति बोध एक नए रूप में मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में दिखाई देता है। इस नाटक में प्रेम, विरह, सृजन और जीवन दृष्टि का संवाद है। प्रकृति है जो पात्रों की मन स्थितियों के साथ चलती है और मालवा का परिवेश है जो पूरे नाटक को संवेदनात्मक धरातल देता है। भारतीय साहित्य में आषाढ़ का महीना विशेष महत्व रखता है। ये केवल वर्षा का आरंभ नहीं बल्कि प्रतीक्षा, स्मृति, प्रेम और विरह का काल भी है। संस्कृत से लेकर हिंदी तक की काव्य परंपरा में आषाढ़ और मेघ मनुष्य की भावनाओं के वाहक रहे हैं। नाटक की शुरुआत ही आषाढ़ का पहला दिन और मूसलाधार वर्षा के साथ होती है। भारी वर्षा में मल्लिका कालिदास के साथ वर्षा विहार कर गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती हुई लौटती है और अपनी माँ से कहती है,
2: आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ।
1: मल्लिका को भीगने का तनिक भी दुख नहीं होता। वो कहती है, अगर मैं नहीं भीगती तो इस सुख से वंचित रह जाती। वो उस सौंदर्य का वर्णन करती है जो उसकी स्मृति में स्थायी रह जाता है और यहाँ प्रकृति उसके मन की अनुभूति बन जाती है। मल्लिका कहती है,
2: मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों

0: पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दता यक्षिणी तुम हो।
1: मेघ, मन और मालवा, अभी आपने ये रूपक सुना। आलेख और वाचन सुश्री भावना झा का था और नाट्य स्वर था नेत्रा और प्रांजल का। साथियों, कहते हैं इंसान कुछ नहीं करता, समय प्रावर्तिक रहकर उसे उस ओर आकर्षित करता है। मोहन राकेश की कृति आषाढ़ का एक दिन विवेक, आत्मबोध और अनुभव जैसे बिंदुओं पर मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है, चिंतन के नए द्वार खोल जाती है और यथार्थ कुछ कुछ तत्कालीन समाज को

0: था नेत्रा और प्रांजल का। साथियों, कहते हैं इंसान कुछ नहीं करता, समय प्रावर्तिक रहकर उसे उस ओर आकर्षित करता है। मोहन राकेश की कृति आषाढ़ का एक दिन विवेक, आत्मबोध और अनुभव जैसे बिंदुओं पर मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है, चिंतन के नए द्वार खोल जाती है और यथार्थ कुछ कुछ तत्कालीन समाज को आगाह करता है। लेकिन एक सीढ़ी नीचे उतरा जाए तो वहाँ एक ऐसी पीढ़ी दिखाई देती है जो जड़ता, बंधन, दमन और शोषण में लिपटी हुई है। निराशा के बीच वहाँ कोई उम्मीद भी नहीं। साहित्य के हर अनुयायी ने किसी न किसी मोड़ पर प्रेमचंद को अवश्य पढ़ा है। सब कुछ न सही, पर बहुत कुछ जरूर पढ़ा है। कुछ ऐसा भी है जो नहीं पढ़ा होगा। आइए ऐसी ही कुछ रचनाओं पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ प्रसारणकर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से। आपसे बातचीत कर रही हैं युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा।
1: 31 जुलाई को महान कथाकार साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती है और प्रेमचंद जैसे बड़े और प्रसिद्ध लेखक की कुछ रचनाएं जो कालजयी हो गईं, मगर ऐसी भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनका जिक्र कम होता है या जिनको एक आम पाठक द्वारा या कुछ खास पाठकों द्वारा भी कम पढ़ा गया है। हालांकि वो बहुत अच्छी रचनाएं हैं अपने कथ्य में, अपने प्रभाव में। प्रेमचंद कुछ अनपढ़े कुछ अनसुने, इस विषय के इर्द गिर्द आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल वो ये है कि कुछ रचनाएं जो इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनकी पहचान ही बन गई, तो क्या इसी लोकप्रियता ने उनकी अन्य उत्कृष्ट रचनाओं को पाठकों की दृष्टि से ओझल कर दिया?
2: देखिए, ओझल कर दिया शायद ज्यादा बड़ा एक बयान होगा, और वैसे एक हद तक तो ये देखिए होता ही है कि किसी भी रचनाकार ने अगर प्रचुर मात्रा में लिखा है तो उस प्रचुर मात्रा में लिखी गई रचनाओं में से कुछ रचनाएं अधिक चर्चित होती हैं, किसी समय विशेष में ज्यादा चर्चित होती हैं। समय बदलता है, युग के मानदंड और मान्यताएं बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, मनुष्य के सरोकार बदलते हैं, तो उसके साथ साथ कई कहानियां, कई रचनाएं, कई कविताएं, कई उपन्यास फिर से वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपकी साहित्य में रुचि है और आपको साहित्य पढ़ने में सुख मिलता है और उससे आप कुछ समृद्ध होते हैं, तो हर साहित्यकार की और खासतौर से खूब लिखने वाले साहित्यकारों की जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं, उनके अलावा भी कई रचनाएं होती हैं जिनको पढ़ने से आप समृद्ध होते हैं और उनकी रचना धर्मिता के बहुत सारे ऐसे पहलू आपके सामने आते हैं जो कुछ रचनाओं विशेष पर अगर आप केंद्रित बने रहें तो उतने प्रकट नहीं होते हैं।
1: वो रचनाएं भी बहुत इजाफा करती हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रेमचंद की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनका साहित्यिक मूल्य आपकी दृष्टि में बहुत ऊंचा है लेकिन कम पढ़ी गई या कम चर्चित है या बिल्कुल ही अनदेखी रह गई?
2: देखिए, बिल्कुल अनदेखी रह गई वाली बात तो थोड़ी कठिन होगी, क्योंकि प्रेमचंद का जैसे मानसरोवर है जिसमें उनकी कहानियां संग्रहित हैं और बहुत सारी कहानियां हैं, उन सारी कहानियों की चर्चा तो शायद एक बातचीत में एक आदमी के द्वारा करना लगभग असंभव ही होगा। एक संयोग है, मेरी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई और ये दौर था, ये 1960 के दशक का अंत था, और उस समय उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तिका हुआ करती थी जिसमें प्रेमचंद की ऐसी कहानियां थीं जिनको बाल मनोविज्ञान के साथ जोड़ करके ज्यादा बच्चों के लिए इनको अनुकूल माना जाता था, और प्रेमचंद की कई कहानियां एक साथ पढ़ने का जो सौभाग्य था वो उससे शुरू हुआ। उसमें जहां तक मुझे याद है कि कफन शायद नहीं थी, सबसे चर्चित कहानियों में कफन है, पूस की रात है, लेकिन कई कहानियां थीं जो बहुत चर्चित हैं और सब जानते हैं, ईदगाह जैसे महान कहानी है और ईदगाह उसमें थी। हाँ, एक कहानी और जो बहुत लोकप्रिय भी है और मुझे बहुत प्रिय है, बड़े भाई साहब, जिसमें अगर आप पढ़ें तो शिक्षा की बात है लेकिन साथ साथ मनोविज्ञान भी है, अद्भुत कहानी है। अगर इससे हम जोड़कर देखें तो मुझे एक कहानी जो बहुत प्रिय है वो गुल्ली डंडा है। इस कहानी में ये है मूल रूप से कि एक आदमी है जो अब किसी कस्बे में रहता था बचपन में, वहां उसका बचपन बीता है और अब वो बाद में उसके पिता का ट्रांसफर हो गया, वो थोड़ा ठीक ठाक समृद्ध घर का था, वो इंजीनियर बन गया और बहुत साल बाद उस अपने कस्बे में लौट गया है। अब वो याद कर रहा है तो उसमें उससे मीठी याद है वो गुल्ली डंडा के खेल की है, और फिर उसके जो रोमांच का वर्णन करते हैं पर गुल्ली डंडा का पूरा जो आनंद होता है, लेकिन साथ साथ एक सामाजिक चेतना अपने आप आती है। और कहा जाता है कि हिंदी में ऐसी कहानियों की कमी है जिनमें खेल का, विज्ञान का, ऐसे विषय जो है अपेक्षाकृत कम आते हैं, तो ऐसी ही अगर प्रेमचंद की कहानी

0: शतरंज के खिलाड़ी आप, जो कि बड़ी काफी प्रसिद्ध कहानी है, पर उसमें जो आप याद करें कि भारतीय ढंग के शतरंज में प्यादे किस तरह चलते हैं और विलायती शतरंज में कैसे चलते हैं, इसको वो कहानी की विकास में और कहानी के मर्म के बयान में इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि सिर्फ शतरंज का ही नाम नहीं रख दिया है। ऐसी एक कहानी जो मुझे याद आती है, इसमें बाल मनोविज्ञान की ही अगर बात करें, तो रामलीला कहानी। रामलीला कहानी हमारे आज के समय में मुझे लगता है बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक है। अब इस कहानी में क्या है कि रामलीला हो रही है। अच्छा, शुरुआत इससे होती है कि वो आदमी जो कहानी लिख रहा है, वो फिर वही मामला है कि वो बूढ़ा हो चला है और लिखते हैं कि अब जब मैं लोगों को खोटे लगाकर और हू हू करते दौड़ता हूं तो कई बार हंसी आती है, पर बचपन में लगता था कि उसका जादू था, उसका रोमांच था। और फिर लिखते हैं कि मेरे बगल वाले घर में ही वो मेकअप हुआ करता था, और जिसमें वो सीता का मेकअप और तमाम देवियों का मेकअप और उनपे बुंदिया चिपकाना और रज पीस करके लगाना उनके ऊपर जो पाउडर, और मैं बहुत उत्साहित रहता था। और जब राम का सीता लक्ष्मण का रथ निकलता था तो राम के पीछे खड़े होते थे, और लिखते हैं कि मुझे ये लगता था कि जो आनंद उसमें आता था वो लाट साहब के चैम्बर में बैठकर भी नहीं आया। मतलब लाट साहब उस जमाने में जो ब्रिटिश टाइम था, हम जानते हैं कि प्रेमचंद चले गए 8 अक्टूबर 1936 को। यहां तक तो कहानी बच्चे की है, लेकिन उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कि रामलीला का मंचन हो चुका है लगभग, और अब स्थिति यह है कि उसमें चर्चा चल रही है कि जो कराने वाले लोग हैं, जो कमेटी है, जो जमींदार साहब हैं, कि चढ़ावा कम आया है, तो मतलब ये कि जो मुनाफा होता था, जो कमाई होती थी रामलीला के जरिए, वो उतनी हो नहीं पाई, तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो भरपाई के लिए अंत में ये होता है कि कोई नाचने वाली एक महिला है, उनको बुलाया जाता है, और फिर उनको ये काम दिया जाता है कि अपनी अदाओं से आप लोगों से कुछ पैसे निकलवाइए, और वो निकलवाती हैं। और उसमें होता ये है कि बालक, जो कहानी कह रहा है, इस बालक के पिता पुलिस में है और बड़े कड़क आदमी है, तो इससे भी वो मांगती हैं कुछ पैसे दीजिए इस तरह का, तो लोग कहते हैं कि इनसे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तो वो बड़े गुस्से से देखते हैं और निकाल के अशर्फी दे देते हैं। इनको बड़ी शर्म भी आती है कि मेरे पिताजी जो हैं वो यहाँ आकर के इस तरह पैसे दे रहे हैं। अगले दिन स्थिति ये होती कि राम, सीता और लक्ष्मण रो रहे हैं, मतलब वो बच्चे रो रहे हैं जो उनका अभिनय करते थे, और राम का अभिनय करने वाला जो बच्चा है वो उनको समझा रहा है, तो बताते हैं कि इस बार जमींदार साहब ने कुछ दिया नहीं, कहा कि बहुत कम आमदनी हुई है, आगे कभी ले जाना, रास्ते के लिए भी कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करें, कैसे जाएं सोच रहे हैं। तो ये पिताजी से पैसे मांगने जाता है कि आप 2 रुपए दे दीजिए तो उन लोगों को दे दूं, तो वो नहीं देते। अब यहां बाल मनोविज्ञान का एक रूप देखिए। उस दिन से मुझे अपने पिता से ऐसी चिढ़ हो गई कि जीवन में उनके किसी सीख को फिर मैंने माना ही नहीं। इससे मेरा नुकसान भी हुआ, लेकिन मेरे अंदर ऐसी एक जुगुप्सा पैदा हुई कि आप उस नाचने वाली को अशर्फी देने को तैयार थे, लेकिन इन बच्चों को आप नहीं दे सके। और फिर वो लिखते हैं कि मैं कहीं से, मुझे 2 आने कहीं पड़े थे या मिल गए, और वो जाकर माँ से मांग के या कहीं से 2 आने दिए। यानी एक कहानी का वो एक सिरा उठाते हैं और उस सिरे से वो उसे कहां तक ले जाते हैं। कई कहानियां और दिमाग में घूमने लगी। प्रेरणा कहानी याद आ रही है, एक बच्चे की कहानी जिसको अपने शिक्षक से प्रेरणा मिली। ये सही है कि ज्यादा चर्चा के केंद्र में वही कहानियां रहती हैं जो बहुत चर्चित हैं और होनी भी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ।
1: तो जहाँ आप होनी भी चाहिए, जहाँ आप कह रहे हैं, वहाँ एक सवाल मन में आता है कि क्या जिन रचनाओं को हमने मान लिया है कि जो बहुत चर्चित हैं, बहुपठित हैं, उनमें और जो दूसरी और रचनाएं भी, जिनका भी आप जिक्र भी कर रहे थे उदाहरण सहित, तो क्या उनमें अपने कथ में, अपने प्रभाव में या उनकी अपनी शैली में, रचने की शैली में कुछ मूल अंतर है?
0: नहीं, अंतर नहीं है, विस्तार है। मुख्य बात यह है कि प्रेमचंद का एक तो विकास हुआ लगातार। प्रेमचंद ने बिल्कुल सामान्य किस्सा गोई से शुरू किया और वो निखरते चले गए। प्रेमचंद जो हैं, उनकी जो आखिरी दौर की कहानियां हैं, कफन है या पूस की रात है, ये उनकी सबसे महान कहानियां मानी जाती हैं। उनका अंतिम पूरा जो उपन्यास है वो गोदान है, जो उनका महानतम उपन्यास माना जाता है। और सच्चाई ये है कि उनका वैचारिक विकास भी हुआ, वो एक किस्सा गोई से आगे बढ़े, अपने समय से प्रभावित थे, आदर्शवादी चेतना के साथ आगे बढ़े, हृदय परिवर्तन बहुत होता था उनकी कहानियों में। लेकिन ये है कि प्रेमचंद के यहाँ हमें क्या मिलता है, आपने पूछा, वो ये मिलता है कि जब आप कुछ कहानियों पर ही केंद्रित रहते हैं तो आपको एक वानगी मिलती है उनकी कहानी कला की, उनके सरोकारों की। जब और कहानियां पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन के इतने सारे तमाम पक्ष और हैं। प्रेमचंद उतने तक ही नहीं थे, वो सामाजिक यथार्थवाद की चेतना, सामाजिक प्रतिरोध की चेतना, बदलाव की चेतना, आजादी की लड़ाई का हिस्सा, मजदूरों किसानों के हकों के लिए लड़ने वाले, तो वो आप देखें कितनी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल आपके आसपास घट रही हैं। इसको देखने के लिए आपको पढ़ना चाहिए कि कितने तरह से जीवन को उन्होंने देखा, उस पर विचार किया। प्रेमचंद ने ही कहा है कि सच्चा साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है और साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, उनके वाक्य हैं। लेकिन यह है कि मनुष्य से और सृष्टि से बहुत गहरा और आत्मीय प्रेम किए बिना आप साहित्यकार नहीं हो सकते, कलाकार नहीं हो सकते, अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते। और प्रेमचंद के यहाँ उनकी कहानी कला में कितने व्यापक स्तर पर कितनी सूक्ष्मताओं के साथ हमारा संसार हमारा

0: जीवन मिलता है जो तब था और जो आज 9 दशक बाद भी प्रेमचंद हमारे पुरोधा हैं और हमारी उंगली पकड़कर हमें ले चल रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने विस्तार में प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराया आपने।
2: ये भी प्रेमचंद, अभी आप इस विषय पर वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से बातचीत सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रही थी युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा। साथियों, प्रेमचंद का युग यकीनन वैसा ही रहा होगा जैसा उनकी कृतियों में है, पर देश को आजादी मिलते ही सब कुछ न सही पर बहुत कुछ बदला। राष्ट्रीय धारा के कवियों की चेतना प्रस्फुटित हुई। अतीत और तत्काल के महासंगम की ज्वाला ने देशभक्ति, एकता और अखंडता के नए सूत्र रचे। आइए उस धारा के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रभक्ति और शक्ति पर एक वार्ता सुनते हैं। दिनकर राष्ट्र के हितकर वार्ताकार हैं वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी।
3: भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो भारत के और भारतीय भाषाओं के, विशेष रूप से हिंदी के कवियों ने जो योगदान दिया, उसमें एक लंबी चौड़ी सूची है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, और इसमें एक नाम है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर न सिर्फ राष्ट्रीय भावना के कवि हैं, बल्कि उनकी वाणी में और उनकी लेखनी में जो ओज था वो अद्भुत ओज था। और मंचों पर जिस तरीके से वो कविता का गायन किया करते थे, उसमें मुझे लगता है कि शायद सचमुच लोगों की भुजाएं फड़कने लगती होंगी।
4: सुख से नहीं, विवश उड़ने के पंख नहीं होने से, और मूक इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है, भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बटा न पाना, उसे किसी से कहकर मेरे मन को चोट लगी है। बोल नहीं सकता जो उसका भी दुख कोई दुख है, कितने लोग समझते हैं भाषा उदास आंखों की।
3: आप लोगों को हैरत होगी कि रामधारी सिंह दिनकर 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारदोली में किसान आंदोलन कर रहे थे, उसके संदर्भ में उस समय जब विजय संदेश रामधारी सिंह दिनकर कविता लिखते हैं, तो उस कविता को पढ़ करके आज भी भुजाएं फड़कने लगती हैं। और वो दृश्य सामने आ जाता है कि जब सरदार पटेल ने बारदोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसमें ब्रिटिश सरकार को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। मैं आपको उनकी 4 लाइनें सुना सकता हूं और अद्भुत आपको आनंद आएगा उस कविता को सुनने में। तेग तोप तलवार उधर थी, इधर निरीहों की थी आह, उधर मिटा देने की धुन थी, इधर प्रबल मिटने की चाह, इधर उठी हुंकार सृष्टि सारी वह डावा डोल हुई, प्रलय कारणी ध्वनि जनसत्ता की अतिशय अनमोल हुई, ठोक ताल दुंद भी बजा शासन की हस्त हिलाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। निरे निहत्थे हैं पर क्यों डर जाएं तेरी फटकारों से, गगन गूंज जाएगा भीषण सहस हुंकारों से, दमन जेल से डरे कौन पाशवी शक्ति में क्यों भूला, भारतीय बच्चे झूलेंगे फांसी का प्यारा झूला, बलिवेदी पर चढ़कर जग में अनुपम कीर्ति कमाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। और एक कविता नहीं, उनकी लंबी कविताओं की ऐसी सूची है जो बार बार जहां पर वो इस तरीके की बात करते हैं। और जिस तरीके से फांसी के फंदों पर झूल जाने वाले हमारे क्रांतिकारी थे, शहीद थे, उनके लिए ये कविताएं एक ऐसा संजीवनी का काम करती थीं कि उन कवियों की कविताएं पढ़ करके लोग भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी जैसी काव्य कृति लिखी, और न सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर वो जिस तरीके से समाज में भी बात करते हैं, जाति जाति रटते केवल जिनकी पूंजी पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहूंगा, 1945 में ये कविता लिख रहे हैं। हाँ भारत की लाल भवानी, जवा कुसुम के हारों वाली, शिवा रक्त रोहिणी वसना कबरी में लाल सितारों वाली, कर में लिए त्रिशूल कमंडल दिव्य शोभिनी सुरसरी स्नाता, राजनीति की अचल स्वामिनी साम्य धर्म ध्वज धर की माता, भारत भूमि के मिट्टी से श्रृंगार सजाने वाली, चढ़ हिमाद्री पर विश्व शांति का शंख बजाने वाली। 1945 के आसपास ना एक बहुत बड़ा ये चल रहा था कि राष्ट्रीयता क्या होती है और राष्ट्रीयता कहीं अंतर्राष्ट्रीयता में बाधित तो नहीं होती, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर भारत भूमि पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन की आवाज बुलंद करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उस देश के रूप में स्थापित करते हैं जो विश्व शांति की बात करता है। जिस समय भारत परतंत्र था उस समय यह बात कहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन दिनकर जी ने बात

0: जयप्रकाश नारायण रामधारी सिंह दिनकर जिसे बहुत अधिक प्रभावित थे। उस समय उनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर जी ने कुछ साम्यवादी स्वभाव की भी कविताएं लिखी और गांधी जी पर भी कविताएं लिखी उन्होंने, लेकिन खुद उन्होंने कहा ये कि मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच में झटके खाता रहा हूं, इसीलिए उजले को लाल से गुणा करने पर जो रंग बनता है वही रंग मेरी कविता का रंग है, वही रंग केसरिया रंग, वो रंग उन्होंने कहा। और स्वयं ये किसी आलोचक ने नहीं कहा, किसी दिनकर जी के पाठक ने नहीं कहा, स्वयं दिनकर जी स्वीकार करते हैं। 1965 के युद्ध के समय सैन्य शिविरों में वो कविताएं गाई जाती थी और दिनकर की अन्य अन्य कविताएं जो हैं सैनिकों के लिए शिविरों में, वहां के आम आदमी जो थे जब गांवों से सेनाएं निकलती थी तो दिनकर जी की कविताएं गा गा करके सैनिकों का उत्साह बढ़ाया जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको रश्मि रथीपुरी याद है, परशुराम की प्रतीक्षा से वो उद्धृत करते हैं, क्षमा क्षोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये कविता की लाइन ऐसी है जो आम तौर पर तब से पिछले 50, 60, 70, 80 वर्षों से लेकर के आज तक जो है लगातार उद्धृत की जाती है, मुहावरा बन गई है, अपनी बात को कहने का अंदाज बन गया है। दिनकर जी की कविताएं जो है, शानों को मिलता दूध दही, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, ये कविता की पंक्तियां ऐसी हैं जो आम आदमी के मुंह पर, आम आदमी की जुबान पर आती हैं। अपनी बात को कहने के लिए दिनकर जी की पंक्तियों का उदाहरण देकर के जिस तरीके से अपनी बात को यहां पर पुष्ट किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है, ये वास्तव में कवि दिनकर की वो सार्थकता है या वो उनकी सफलता है जो शायद हर कवि को नहीं मिलती। दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूं मैं। जब दिनकर जी इस तरीके की पंक्ति पढ़ा करते थे तो समूचा मंच जो है अनगिनत तालियों से भरा रहता था। एक लंबी उनका काव्य नाटक जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में है, सेल्यूकस का उदाहरण देते हैं वो कि सेल्यूकस आपने आकर के हमें बहुत अच्छा किया कि हमें अपने आत्मगौरव का भान करा दिया। वो लिखते हैं, भारत भूमि है एक हिमालय से आसेतु निरंतर, पश्चिम में कंबोज कपिश तक उसकी ही सीमा है, किया कौन अपराध गए जो हम अपनी सीमा तक, अनाहूत हमसे लड़ने को क्यों सेल्यूकस चढ़ आया, मदोन्नमत यूनान जानता था न मगध के बल को, समझा था वह हमें छिन्न शायद पुर के कैसा, वह कलंक का पंख आज धुल गया देश के मुख से, हम कृतज्ञ हैं सेल्यूकस ने अवसर हमें दिया है। दिखा दिया पूरे विश्व को भारत की उस आत्मगौरव का व्यक्त करने का अवसर दिया सेल्यूकस ने। वीर सिकंदर के गौरव का प्रतिभू सेल्यूकस था, आज खड़ा है वह विपन्न आहत सा मगध सभा में, उस बलिष्ठ शार्दूल सदृश निष्प्रभ हत तेज अकिंचन, पर्वत से टकराकर जिसने नखरद तोड़ लिए हों, उस भुजंग सा जिसकी मणिमस्तक से निकल गई हो। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर।
1: दिनकर राष्ट्र के हितकर। अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी की इस वार्ता के साथ ही हम अमित घोष, उमाशंकर जोशी, अजीत कुमार, महाश्वेता देवी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गोपाल दास नीरज, कुंवर बेचैन, कन्हैया लाल नंदन की स्मृति को नमन करते हुए आपसे यहीं विदा लेते हैं। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति राम अवतार पैरवाकी।

ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज रात प्रस्तुत है ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय। किराना घराना के दिग्गज कलाकार उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद वाहिद खां का हाथ थाम कर जिस सांगीतिक विरासत की शुरुआत हुई थी, उसने युगों का सफर तय किया और आज इसे आगे बढ़ाने वाले गुणी कलाकारों में पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। कोलकाता के निकट स्थित उपनगर बोशीरहाट में जन्मे और संगीत के माहौल में पले बढ़े पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय ने अपने पिता संगीताचार्य श्री अरुण कुमार चट्टोपाध्याय से महज 5 वर्ष की आयु में संगीत सीखना आरंभ किया। आगे चलकर आपने पंडित ए कानन, विदुषी मालविका कानन और उस्ताद मशकूर अली खां जैसे प्रख्यात कलाकारों से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय ने बड़ी ही छोटी उम्र में मंच पर कदम रखा। केवल 7 वर्ष की आयु में सन 1979 में कोलकाता में आयोजित सुरेश संगीत सम्मेलन में उस्ताद अमजद अली खान के साथ आपको कार्यक्रम प्रस्तुत करने का सुयोग प्राप्त हुआ। आकाशवाणी और दूर

Mama, get it, mama, mama, get it.

0: ख्याल गायन के अंतर्गत आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग यमन सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग हमीर। यह बंदिश पहले मध्य लय तीन ताल तत्पश्चात द्रुत एक ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग यमन इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही नाउ प्रेजेंट्स राग हमीर, the composition of which is set to Madhyalaya Teen Tal followed by Drut Ek Tal.

0: पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग हमीर सुन रहे थे। खयाल गायन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग वाचस्पति के साथ करेंगे। यह बंदिश मध्य लय तीन ताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग हमीर। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय कंक्लूड्स हिज खयाल रिसाइटल विथ राग वाचस्पति। The composition of the rag is set in Madhyalaya Teen Taal and Drut Teen Taal.

0: ख्याल गायन के इस कार्यक्रम में आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग वाचस्पति सुन रहे थे। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाह। और इसी के साथ आज रात संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग वाचस्पति इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय इमोन सरकार, ऑन द हारमोनियम बाय कमलाक्ष मुखोपाध्याय एंड ऑन द तानपुरा बाय कोयल साहा। And with this, we come to the end of National Program of Music Tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार

0: हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न भागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Home Minister Amit Shah called the inauguration of the new CG Semi OSAT facility and India's new leap towards self-reliance in technology. In a social media post, Mr. Shah said the new facility will further invigorate Gujarat as the country's growth engine and open vast employment opportunities for youth. Prime Minister Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand from Monday. At the invitation of Indonesia,